रखे वो भी सावधानी से, अंडरगारमेंट हो या कपड़े अपने चेंज रूम या बेडरूम में ही पहने, अंडरवियर पजामा हो या पैंट खड़े खड़े कभी नहीं पहने, हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पैचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने वरना दुर्घटना घट सकती है। कभी कभी स्मार्टनेस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। अपनी दैनिक जरूरतों की चीजों को नियत जगह पर ही रखने की आदत डाल लें, जिससे उन्हें आसानी से उठाया या तलाशा जा सके। भूलने की आदत हो तो अवश्य चीजों की लिस्ट मेज या दीवार पर लगा लें। घर से निकलते समय एक निगाह उस डाल ले, आसानी रहेगी। जो दवाएं रोजाना लेनी है उसको प्लास्टिक के प्लेनर में रखें, जिससे जुड़ी हुई डिब्बियां में हफ्ते भर की दवाई दिन बार के साथ रखी जाती है। अक्सर भ्रम हो जाता है कि दवाइयां ले ली है या भूल गए। प्लानर में से दवा रखें, उसमें भी दवा रखने न चूक हो जाए। इसमें दवाई खाने में जब वो एक बार के हिसाब से और डे के हिसाब से रहती है ना, तो उसमें याद रह देख लिया फिर गए हाँ ये तो खाली मिलते। 60 साल के ऊपर व्यक्ति हो जाता तो उसमें भूल जाता है कि मैंने ली कि नहीं ली, क्योंकि वो रोज लेते हैं और अचानक भूल हो जाती है। ध्यान रहे, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय सक्षम होने पर भी हमेशा रेलिंग का सहारा ले, खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर। ध्यान रहे, आप अपना शरीर आपके मन का ओबिडेटेड सर्वेंट नहीं रहा। जैसे पहले आपका शरीर था वैसा नहीं रहा, इसलिए उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ती आयु में कोई भी ऐसा कार्य जो आप सदैव करते रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने से संबंधित अपने कार्य स्वयं ही करें। नित्य प्रातः काल घर से बाहर निकलने पार्क में जाने की आदत न छोड़ें। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करते रहें, नहीं तो आप योग और प्राणायाम व्यायाम से दूर होते जाएंगे और शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन कम हो जाएगा। हर मौसम में कुछ योग प्राणायाम अवश्य करते रहे। अपना पानी भोजन दवाई इत्यादि स्वयं ले, जिससे शरीर में सक्रियता बनी रहे। बहुत आवश्यक होने पर ही दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे हो तो उनके साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन उनको अधिक टोका टाकी न करें। ध्यान रखें कि आपको सबके साथ एडजस्ट करना है, न कि सबको आपसे। इस एडजस्ट होने के लिए चाहे बड़ा परिवार हो, छोटा परिवार हो, या कि पति पत्नी हो, मित्र हो, पड़ोसी या समाज हो, एक मूल मंत्र सदैव उपयोग करें। नून अर्थात नमक भोजन के प्रति स्वाद पर नियंत्रण रखें। मौन कम से कम एवं आवश्यकता पर ही बोलें। कौन मसलन कौन आया, कौन गया, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, अपनी दखलदाजी कम कर दें। नून मौन कौन के मूल मंत्र को जीवन में उतारते ही वृद्धावस्था प्रभु का वरदान बन जाएगी, जिसको बहुत कम लोग ही उपयोग कर पाते। ये जो संदेश जैसे ही बहुत सारे लोगों को आस पड़ोस में जिन्होंने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुन रहे हैं, वो अपने अगल बगल वाले लोगों को भी बताएं, जिन्हें सुबह या रात में सोते समय पेशाब करना जाना पड़ता है, उनके लिए विशेष सूचना है। हर एक व्यक्ति को इसी 3.5 मिनट में सावधानी बरतनी चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यही 3.5 मिनट आकाशमार्ग होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकता है। जब जब ऐसी घटना हुई है,
परिणाम स्वरूप तंदुरुस्त व्यक्ति को, जो व्यक्ति तंदुरुस्त भी होते हैं और वो थोड़ा भी गिर गए तो उनको बड़ा दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ फ्रैक्चर हो गया।

0: इस संदेश के माध्यम से उनको और अधिक सतर्कता देखने को मिलेगी और इस चीज को बरतेंगे तो उनके लिए सरल हो जाएगा। तो यही हम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जो हमारा प्रोग्राम है ज्योति का प्रकाश, इसके माध्यम से लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं और मैं देखता हूं कि सरनाम में और हॉलैंड देश में बहुत सारे लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले हैं और इस चीज का सुनने के बाद लाभ भी उठाते हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में तार करते हैं और बीच बीच में पूछते हैं, जब भी किसी को लगे कि हमें किस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से तार करके पूछ सकते हैं। हम प्रोग्राम के द्वारा उनको पूर्ण रूप से ये सब चीजें भी और ज्यादा बता सकते हैं। तो क्यों ना संजय जी एक नगमा की ओर बढ़े और फिर कार्यक्रम आगे जारी रहेगा।
1: जरूर मास्टर जी, नगमा के ओर बढ़ने वाला हूँ मैं और वो गीत अभी तो चले वाले है, पर जो संदेश आपने रखे हैं आज, ये ख़ास करके जो 60 साल के उम्र के ओर बढ़ने वाले हैं ना,
0: हाँ,
1: और कितना महत्वपूर्ण बात है, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
2: बिल्कुल संजय जी, और धन्यवाद किया जाता है राजेंद्र जी को। और उसमें जो आपने कहा वो ट्वाइलाइट सेटिंग, तो राजेंद्र जी का मतलब ये है जो आप ट्वाइलाइट खबर अंदर्स खबोन
1: खास करके जो अभी मास्टर जी ने कहा है कि 60 साल के आयु के से पहले भी हो सकता है, जो एक कैसे बोलते हैं वांत स्टोन लगा सकते हैं आप अपने लिए, ताकि आप गिरने में और गिरने से बच सके। क्योंकि मास्टर जी ये इसमें संदेश का इसमें महत्व तो क्या है, क्योंकि हमारा 50 साल के ऊपर से हमारा हड्डी जुड़ता नहीं ना आदि।
0: हाँ, असल में क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों का शरीर उम्र ज्यादा हो जाती है तो हड्डी जुड़ने में दिक्कत हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में। तो जब हम लोगों की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डी में ज्यादा दिक्कत आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी में थोड़ा चूना डाल के उसको पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी न रहे और कैल्शियम वाली चीज ज्यादा खानी चाहिए।
1: बोले तो
0: चूना एक व्हाइट कलर का चूना जो होता है, जो लोग भारत में आपने देखा होगा तंबाकू में रगड़ कर खाते।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ, तो उसको पानी में थोड़ा मिला के एक गेहूं के दाने के बराबर मिला के खाना चाहिए पानी में, तो उससे क्या होते कि हमारी हड्डियां में हड्डियां हैं उसमें तंदुरुस्ती रहती है, हर समय कैल्शियम की कमी नहीं रहती।
1: ऐसा
0: जी,
1: तो अति सुंदर संदेश आपने रखे, बहुत सा धन्यवाद दिया जाता है कि मास्टर जी आप हम लोग के साथ भारत से जुड़ जाते हैं कि उमरिया घटती जाए रे, ये मॉडर्न इंडिया से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और मैं देख रहा हूँ शांता जी पिटारा में कुछ खोज रहा है मास्टर जी, पता नहीं क्या खोज रहा है, पर उनका पिटारा उनके साथ है।
0: शांता जी का पिटारा तो हर समय गानों से भरा ही रहता है, उसमें तो कुछ ना कुछ निकलना ही है।
1: हाँ जी, तो देखते हैं क्या सुनाने वाले हैं शांता जी हम लोग के अपना, और जिस प्रकार से आपने गाना का मांग की है तो गीत चला देते हैं मास्टर जी।
0: जी जरूर जरूर जरूर।

0: सुनने वालों, बड़ा सुंदर संदेश जो राजेंद्र हमारे मास्टर जी ने और रखे, पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं हमारा कार्यक्रम में और हर सप्ताह की तरह अनुराधा जी। और अनुराधा जी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए अनुराधा जी को कहूंगा कि अनुराधा जी, आप अपना और संदेश को हम सबको सुनाइए।
1: प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मंगलपूर्वक होंगे और सबका जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें, यही मेरी कामना है। तो संजय जी, आज मैंने सोचा क्यों ना मैं सभी सुनने वालों को थोड़ी कुछ, मैं हमेशा कहानियाँ सुनाती हूँ, तो आज कुछ मैं थोड़ी पते की बात सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि आम हमारी जो आम जन जीवन होता है, रोज का हमारे जो जीवन में, हम रोज की जिंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बोलते हैं, पर कभी कभी वो हम सही तरीके से नहीं करते हैं और हमें पता नहीं होता है कि क्या ये सही है गलत है। पर ऐसा होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारा जो व्यवहार होता है दूसरे इंसान को, उसको उसको मन में, उसके मन को चोट लग सकती है, उसको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। तो थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी होती हैं और कैसे हम रोज का जीवन हम अपना अच्छा बनाएं, अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने कुलीग्स की, किसी का हम कभी हम दिल ना दुखाएं और अपना जीवन कैसे हम अच्छा बेहतर बना सकते हैं रोज का जीवन। तो मैं ऐसा आप सभी को थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहूँगी, तो जो आप बड़े ध्यान से सुने और ये आपको हो सकता है कुछ आपके रोज के जीवन में कुछ बदलाव लाए तो बहुत ही बढ़िया। पहला तो देखिए, बहुत बार देखा जाता है कि हम कभी सोचते हैं कि चलिए बहुत दिन से हमने किसी इंसान से बात नहीं करी, चाहे हमारे दोस्त हो, परिवार वाले हों, और हमारा मन आया कि चलो इनसे फ़ोन मिलाया जाए, तो हम एकदम से ना हम वक्त देखते हैं ना समय देखते हैं कि दिन का क्या है, हम फटाफट लगा किसी को फ़ोन मिला देते हैं, मोबाइल मिला दिया। तो ये याद रखें कि लगातार दो बार से अधिक किसी को अगर आप कॉल ना करें, वे यदि आपकी कॉल नहीं उठाते हैं, तो मान लें कि उस वक्त वो जो इंसान है उनके पास कुछ और महत्वपूर्ण कार्य में वो व्यस्त हैं, तो आपकी कॉल नहीं उठा रहे। तो ऐसे में आप बार बार उनको कॉल ना करें। बेस्ट होता है, सबसे अच्छा है कि आप कोई अपना या तो मैसेज लिखकर वहाँ पर आपको उन इंसान को भेज दें, या आप वॉइस मेल में कोई मैसेज भेज दें, तो उससे यह है कि दूसरा इंसान को डिस्टर्बेंस भी नहीं होएगा और वो बुरा भी नहीं लगेगा। ये तो हुई फ़ोन की बात। ऐसे ही बहुत बार होता है कि हम पैसे लोगों से, हमें हर को होता है भाई, कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई और हमें कुछ उधार चाहिए, हमारे पास पैसे की कमी आ गई है, या हमें कुछ खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, हमें पैसे ज़रूरत है, तो हम किसी से पैसे उधार ले लेते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप ज़रूरत पड़ने पर आप अपने अपनों से पैसे उधार ले सकते हैं, परंतु याद रखिए कि जब भी आप पैसा किसी से उधार लें, वो उधार लिया धन हमेशा आप जल्द से जल्द, जब हो सके आपके पास पैसा आ गया है, तो वो उनको वापस लौटा दे और दूसरे व्यक्ति के याद दिलाने का या मांगने का इंतज़ार ना करें। और ये ना सोचें कि अभी तक तो उसने मेरे से पैसा वापस नहीं मांगा है, तो मेरे को क्या जल्दी है वापस करने की, ये ना आप इंतज़ार करें। जहाँ पैसा आपके पास आ गया है, आप जल्द से जल्द उधारी का पैसा हमेशा जल्दी से वापस लौटा देना चाहिए। यह आपकी ईमानदारी और अच्छे चरित्र को दर्शाता है। तो ये याद रखिएगा हमेशा, बहुत इससे आपके जो संबंध भी हमेशा अच्छे बने रहेंगे। एक और बात है, देखिए बहुत बार होता है कि हम किसी के साथ कभी हम प्लान बनाते हैं कि चलिए आज हम किसी के साथ सुबह का ब्रंच करेंगे या लंच या डिनर के लिए हम जाते हैं बाहर। तो बहुत बार होता है कि भाई दूसरा इंसान कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें बाहर खिलाता हूँ, तो अच्छा तो लगता है कि भाई देखिए आज हमें दूसरा इंसान हमें ट्रीट कर रहा है, हमें बाहर ले जा रहा है। तो याद रखें, ये एक तरीके से जब दूसरा इंसान आपको कभी खाने के लिए बाहर ले जाए तो हमेशा याद रखें कि जो आप मेन्यू में खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें ये ना सोचें कि भाई आज तो मेरे को पैसा इसका नहीं देना पड़ेगा तो मैं बहुत महंगी चीज़ ऑर्डर करूं। ये याद रखें, जब आपको कोई दूसरा खिला रहा हो तो आप कभी भी इतनी महंगी पकवान या खाने की चीज़ें ऑर्डर ना करें। यदि संभव हो तो जो आपको खिला रहा है उन्हीं से आप कहें कि आप ही अपनी पसंद के का ऑर्डर कर दें। तो याद रखें कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जस्ट कि दूसरा खिला रहा है तो भाई कितने भी उस इंसान के पैसे खर्च करो। तो यह याद रखने वाली बात है कि देखिए कभी भी दूसरा जो आपको अच्छे दिल से खिला रहा है ना, तो आप उसकी भी इज्जत रखिए और या तो आप कहें कि नहीं चलिए जो खर्चा आया है हम आपस में बांट लेंगे, और या ऐसा वही कह रहा है कि नहीं मैं अपने तरफ से खिलाऊंगा, तो ऐसा करें कि देखें कि ऐसा महंगी वस्तु ना ज़्यादा ऑर्डर करें कि दूसरे को एकदम से बहुत उनका बिल बहुत ज़्यादा आ जाए। तो ये थोड़ी सी जब बात होती है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। देखिए एक ये बहुत देखने में आता है, हम किसी को मिलते हैं बहुत दिनों बाद मिले और किसी के बेटा बेटी या कोई भी है, आप उनसे मिले और आपने झट से पूछ लिया ओ तो आज तुम्हारी क्या उम्र है, या किसी से कि ओ अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, ओ या आप कह कि ओ तुम तो अभी इतने साल के हो गए अभी तक तुम्हें कोई तुमने अभी तक काम नहीं करते हो, नौकरी नहीं मिली ढंग की, या आप कभी ऐसे सवाल करें ओ तो आपके क्या आपके आपके कोई आप किसी से पहली बार मिले या कोई आप नहीं जानते हो और मिले और फिर कहें क्या आपके बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे अजीबो गरीब जो हम ऐसे सवाल करते हैं ना, तो ये कभी ये बहुत ही खराब लगता है और बहुत ही मतलब ये ऐसे सवाल करने से ना किसी को ये बहुत मन को किसी के ठेस पहुंच सकती है और ये बहुत बुरा ये आपको मतलब दूसरे को मन में लग सकता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम ऐसे अजीबोगरीब किसी से डायरेक्ट ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए कि ओ भाई क्या आपने अभी तक ये घर नहीं खरीदा, या तुम्हारी ये बताओ तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे कितने पैसे कमाते हो हैं, और तुमने अभी तक गाड़ी नहीं खरीदी। तो ऐसे जो बहुत व्यक्तिगत तरीके से के जो ये सवाल होते हैं ना, हमें ऐसे देखिए जब पहले किसी से नए मिलते हैं उनसे भी नहीं पूछना चाहिए, और अपनों से कितना भी हमारे अपने हो तो हमें बड़े सोच समझ कर ऐसे प्रश्न रखने चाहिए जिससे कि दूसरे के मन को ठेस ना लगे। और ऐसे सवाल करने से बहुत बार दूरियां आ जाती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो याद रखें कि हम जब किसी से पूछें तो अगर वो खुद बताते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बताते हैं तो चुप रहिए, और ऐसे कभी डायरेक्टली या सामने मुंह में किसी से ऐसे सवाल ना करें जिससे कि उनको एकदम से सुनने में ये बुरा लगे। तो ये सब बातें थोड़ा सा दिमाग में रखनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने व्यवहार में और कैसे हम क्या बोलें कि दूसरे इंसान के को ऐसे मन में ठेस ना पहुंचे और बुरा ना लगे। तो संजय जी, आज मैं ऐसी कुछ आगे और भी बातें बताऊंगी जिससे थोड़ा सा हमारे सुनने वाले थोड़ा ध्यान रखें। तो पर क्यों ना पहले एक गीत हो जाए और फिर आगे हम बढ़ेंगे।
0: जरूर अनुराधा जी, आज संदेश में संदेश, क्योंकि आज का कुछ ध्यान देने वाले बातें जो हम सब रखने की कोशिश कर रहे हैं आज, और देखा जाए कौन सा गीत शांता जी अपने पिटारा से खोज करके रखे हुए हैं।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत चलाया गया आज का संदेश में जो अनुराधा जी संदेश रखने वाले हैं। भी और भी संदेश ना अनुराधा जी, तो आप अपना संदेश को आगे बढ़ाइए।
1: चलिए आगे बढ़ा जाए और पता करते हैं और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अक्सर देखा गया है कि हम घर में, तो चलिए घर में दरवाज़ा खोला बाहर निकले, पर कभी हम बाहर कोई बिल्डिंग में जा रहे हैं या कभी ऑफिस में ही हों या कहीं भी और दरवाज़ा जो होता है ना, हम अंदर घुसे और आगे पीछे नहीं देखते कि हमारे कोई है और बस दरवाज़ा छोड़ दिया। बहुत बार होता है कि हमारे पीछे भी कोई व्यक्ति है और ऐसे हमारे लापरवाह तरीके से अगर हमने दरवाज़ा ऐसे छोड़ दिया तो उस इंसान को चोट लग सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने पीछे आने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा दरवाज़ा खोलें। जब आपको दिखे कोई आपके पीछे है तो खोलकर हमेशा दरवाज़ा, या आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह लड़का है या लड़की है या कोई सीनियर है या जूनियर है आपसे। आप सार्वजनिक रूप से किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो इंसान को बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए ये आपने किसी के लिए दरवाज़ा खोला। ये छोटी सी बात है पर बड़े मायने रखती है कि आप किसी के लिए अगर दरवाज़ा खोलें, खोल कर रखें और दूसरे इंसान को भी अंदर जाने दें। दूसरी बात ये है कि यदि आप किसी दोस्त या अपने किसी कुलीग के साथ कभी कहीं आपको बाहर जाना होता है और आप टैक्सी एक साथ टैक्सी लेते हैं और टैक्सी लेते हैं तो वह अभी भुगतान करता है, तो याद रखें उसने अगर उस बार टैक्सी के पैसे दे दिए और आपसे कहा नहीं नहीं मैं टैक्सी के पैसे मैं दूंगा, तो याद रखें अगली बार जब आप जाएं तो आप जो टैक्सी का अगली बार जाएं तो आप उस पैसे का भुगतान करने का प्रयास करें या पैसा आधा आधा बांट लें कि टैक्सी का जो भी खर्चा आया हम आपस में बांट लेंगे। तो ये आपका बड़प्पन दिखाता है कि हमेशा याद रखें ऐसे कभी किसी के साथ हो तो कहें जी हम आपस में हम पैसे बांट लेंगे, या नहीं लेते हैं उस समय तो आप अगली बार ध्यान दें कि आप उसका पैसा भुगतान करें। देखिए विभिन्न प्रकार के विचारों का सम्मान करना चाहिए हमेशा है। तो ये देखिए बहुत बार होता है हम आपस में बात कर रहे होते हैं किसी से और ये जरूरी नहीं कि जो सामने वाला है उसके विचार और आपके विचार हमेशा एक जैसे हों। देखिए हर इंसान को वो उसको पूरी वो जो उसको सोच है वो दूसरी सोच भी रख सकता है, आपकी सोच बिल्कुल अलग हो सकती है भले ही वही आपके परिवार का हो, आपके बच्चे हो या आपके कोई दोस्त हैं, सहकर्मी हैं जो आपके साथ काम करते हैं, तो सबके विचार अलग होते हैं। तो इसलिए याद रखें कि कभी भी विचारों की हमेशा अच्छा आदान प्रदान करें पर बिना बात पर बहस एक हद तक ठीक रहती है कि आप अपने विचार दें, उनके भी विचार सुनने की आपको क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ही बस आपके ही विचार हैं जो वही सही हैं और दूसरा इंसान गलत है। तो ये याद रखें हमेशा एक तरीके से अपने विचारों का एक दूसरे के विचार सुने और दूसरे के भी सुनने की क्षमता रखें, चाहे वो आपके विचार से बिल्कुल ही मेल ना खाता हो पर हमेशा उनका सुने। और देखिए हर इंसान को अपने विचार रखने का वो व्यक्तिगत वो तरीके का वो सोच सकते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि यदि वो कह आपके लिए जो छह दिख रहा है वो सामने से आने वाले लोगों को शायद नौ दिखाई दे रहा देगा, तो वही बात हुई ना। तो आपको जो दिख रहा है दूसरे इंसान को दूसरा दिख रहा, तो सबका अपना अपना विचार होता है। तो सही यही होता है कि हर कोई स्पेस दें, ये नहीं कि अपना ही विचार किसी पर थोपे। ये भी देखिए कभी कभी लोगों को हमें सोचना चाहिए, दो लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, हम लोग को बहुत बार आदत होती है कि जहाँ तीन चार लोग मिलते हैं बस सब अपना अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, बस सब बोल पड़ते हैं, एक साथ बोल पड़ते हैं। तो क्या होता है, इस वजह से सभी बोलना चाहते हैं और कोई रुकना नहीं चाहता। क्या होता है कि ना कोई आपको समझ में आ रहा है दूसरा क्या बोल रहा है, ना आपकी बात किसी को समझ में आ रही है, ना दूसरे की आपको आ रही है, और सब एक साथ बोले जा रहे हैं। तो याद रखिए, जब कभी दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो आप इंतज़ार करिए, और जब उनका बात ख़त्म हो जाए तब अपनी बात आगे रखिए, और समय आने पर अपना विचार प्रकट करिए। और जब काफ़ी साथ लोग हैं तो सब एक एक करके थोड़ा सा धैर्य रखें और एक एक करके सबकी बात, सबको मौका दें अपनी बात बोलने का, ना कि सब एक साथ बोलें तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। जब आप तो अच्छा यही होता है कि आप एक दूसरे का सब्र से इंतज़ार करें और सबकी बातें, हर इंसान को वक्त दें अपना विचार प्रकट करने का। यदि देखिए एक और भी ये बात है, ये बहुत बात होती है कि हम जब दोस्तों के साथ होते हैं ना तो हमें लगता है ये तो हमारा बड़ा अच्छा पुराना दोस्त है, बहुत देखिए मौज मस्ती भी चलती है एक दूसरे के साथ, और कभी कभी चाहे घर वाले भी हो भाई बहन हो, और हम मजाक में कुछ, देखिए एक हद तक मजाक अच्छा लगता है, पर कभी कभी हम बिना सोचे समझे मजाक ज़्यादा ही कर देते हैं, और किसी को ज़्यादा ही जैसे मजाक में चढ़ाने लगते हैं। और इसका हमें तो बहुत आनंद आ रहा है कि देखो हम कितना मजाकिया हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि जो आपके लिए बहुत मजाकिया आपको लग रहा है वो दूसरा इंसान हो सकता है, वो उसको एक हद होती है, तो उतने तो मजाक ठीक है, उससे ज़्यादा जब कभी कभी हद हम पार कर जाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मजाक आगे वाले को पसंद आ भी रहा है या नहीं, या हम ज़्यादा हद हमने तो पार नहीं कर दी, क्योंकि ये कभी कभी किसी को इस बात का बुरा भी लग सकता है। तो कभी आप किसी को ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप को रोक लें और एक हद तक मजाक करें, उसके आगे अपने आप को रोक लें कि भाई हो सकता है आगे वाले को ये बात पसंद नहीं आ रही हो और वो उसके मन को ठेस लग जाए, और ये उसमें आपके आपस में मजाक के बदले वो पूरा माहौल ही बदल जाए। तो ये बात याद रखने वाली बात होती है कि हमें भी अपना सोच समझ कर हम एक इंसान के साथ मजाक करें एक हद में रह कर करनी चाहिए, ना कि हम हद उसको पार कर दें। और हाँ, कोई भी आपको कभी भी कोई मदद करता है तो हमेशा याद रखें, एक छोटा सा शब्द है पर वो बहुत मायने रखता है, वो है कि हम उसको धन्यवाद कहें। हम भूल जाते हैं, हम बच्चे भी हैं घर में, हम किसी को कहते हैं अच्छा ये कर दो वो कर दो, घर वालों को हम सोचते हैं ये तो हमारे घर वाले, इनको क्या हमें बोलना है। पर याद रखें, एक छोटा सा कोई आप काम भी कराते हैं उसका आप छोटा सा एक शब्द ही है जो आपको बोलना है, धन्यवाद थैंक यू, वो आप बोल दें तो दूसरा इंसान को बहुत अच्छा लगता है। और ये कोई बड़ा कोई कहीं इतनी महंगी चीज़ नहीं है, बहुत एक छोटा सा सरल सा शब्द है, पर दूसरे को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपना जो उसने करा है आप अपना आभार प्रकट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो धन्यवाद तो करिए, पर मैं इस आगे बढ़ूं क्यों ना संजय जी एक और सुंदर सा गीत हो जाए।
0: जरूर,
1: फिर मैं आगे बढ़ूं।
0: बिल्कुल, और शांता जी जो भी अपने पिटारा से कुछ रखने वाले हैं कि हमारे सूरीनामी वेस्ट इंडीज त्रिनिदाद टोबैगो के ओर से जो गाना लिखा गया जो पहले में और अब उसे बनाया गया है, कुछ कुछ काम किया गया है इंडिया में ना शांता जी? और देखा जाए कि उस पे जो संदेश आप दे रहे हैं उस पे जरूर ध्यान देते हुए ये सुंदर सा गीत हम रखने की कोशिश कर रहे हैं।

0: ये सुंदर सा गीत जो शांता जी, इस पर कुछ बताइए आप कि ये किसका गाया पहले, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये वेस्ट इंडीज सूरीनाम के गीत को
1: त्रिनिदाद मेरे ख्याल से सुंदर पोपो जी के ये गीत है,
0: सुंदर पोपो जी का गीत है, और
1: सुंदर पोपो के गीत है। और हम लोग के ये ना सोचना चाहिए कि बैठक गाना है उसका, हम बैठक गाना तो सद अरे हमारा पूर्वजों जो है वो सब भारत से लेकर आई है, और ये था एक कम्युनिकेशन करने के लिए एलकांदर से, जो भी हमारा आफ्रो सूरीनामर जो है वो भी गीत की तरह गीत से अपने आप से अपने लोग से कम्युनिकेट करता रहा, क्योंकि बात करना उस समय पे मना था, गोरे लोग के आगे बात करना एक दूसरे से मना था, तो संगीत के रूप से ये सब कम्युनिकेट करता रहा अपने भाषा में, जैसे हम यहाँ पे हैं और तू उ किनारे है, तो बात करना नहीं सब, अगर संगीत में बात करोगे संगीत गाओगे तो संगीत में वो संदेशा वो आ जाता था। तो हमारे पूर्वजों ऐसे ही सीख के, और जो भारत से भी अपना जो इंस्ट्रूमेंट भी लाए थे उनके सहारे आज तक ये जिंदा है, और सिर्फ हम लोग का सिर्फ ये अमेरिका में नहीं है, बल्कि हमारे गायक जो है बैठक गाना सांगर्स जो है त्रिनिदाद टोबैगो अमेरिका, और अब जैसे भारतीय लोग आते भारतीय सांगर्स जो है वो आकर हमारे जो सभ्यता है जो बैठक गाना उनसे भी जो सांगर है ना सूरीनाम के सांगर जो है लोकल उनको भी उसमें गाते हैं गवाते भी कि इस तरफ से गाओ, और उसी तरह से देखो ना आज किस धुन पे भाई चल चल गए बैठक गाना की तरह।
0: बिल्कुल, पर शांता जी ये इन बातों को सुनकर मुझे भी कुछ ख्याल आता है कि हमारे जब बचपन थे ना तो हम लोग घर में परिवार में पहले कहाँ फुरुतफराव होते थे, बस यानी कि जैसे यहाँ पर सौरख है बच्चे होते थे तो माँ कभी हॉस्पिटल जाता था तो कहीं घरे हो जाता था, तो
1: पहले था फुरुतफराव
0: थे, पर नहीं कहने के मतलब जो आज आज कल क्या कहा जाता है जो घर पे आते हैं
1: क्राम सौरख
0: आदि
1: वही हैगा, हम हरदम से यही कहला कि हम जब वो सब करते थे तो ये अन्य सभ्यता वाला जो है कहते कि नहीं वो ठीक नहीं बच्चे के लिए, बच्चा पैदा हो जाए तो उसका हम लोग मसाज करते ना,
0: हाँ जी
1: हाँ कसरत कराते हैं, हाँ। मसाज करते ओली लगा कर सब कुछ कर, तो गोरे लोग कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं बॉडी के लिए बच्चे के लिए ठीक नहीं, आप उसके लिए कोर्सेस जाओ करो
0: मालिश करें,
1: माताओं लोग के बुलाते हैं कोर्सेस सीखने के लिए, वही सब जो सभ्यता हमारे पर पहले के है वही सब ले लेकर देख देख कर विचार करके अब हमें ही के फिर से सिखाते हैं।
0: अब देखा जाए
1: हमारे माँ बाप जो कहते हैं अपने बिटिया से जो माँ बनते हैं ना कहते हैं मालिश करो, तो नई माता जो है ना माँ यो बनते हैं वो सब नहीं चाहते,
0: इन बातों को नहीं जानते,
1: जानते हैं पर नहीं नहीं चाहते कि उस बच्चे को मालिश कराओ
0: ऐसा,
1: हाँ जब मालिश करोगे शुरू से मालिश करो जो कसरत होगा तो उसका बॉडी जो है वो जो बॉडी बनता है
0: तो, पर ये मैं संदेश कुछ और कहना चाहता था शांता जी, पर
1: घूम के आके आते हैं सभी तो वही पे घूम के आते हैं, हमारे बैठक गाना भी ना
0: हाँ।
1: बैठक गाना देख आज कितना परिवर्तन कर गए,
0: हाँ देखो अब हम लोग का अभी हाल ही में बड़का फिल्म में एगो हम लोग का जो सूरीनाम का गायक का
1: पड़ोसी ने अपना मोर का संभालो फिल्म तूफान में अमिताभ बच्चन जो गाए
0: वो भी ना, ऐसे भी अभी हाल ही में मैंने एक बड़ा फिल्म निकला था तो कॉमेडी फिल्म है
1: हाँ।
0: तो ये चटनी वाला गाना
1: अच्छा?
0: फुलौरी बिना चटनी
1: हाँ, तो देखो।
0: वो भी उसमें चलाया गया, तो देखा जाए कि हम लोग के जो सूरीनाम में स्क्राइफर से और बहुत दिन लग गया भारत के पहुंचत पर अब तो एक एक को वो खोज करके और उसे रिमेक करते हैं,
1: हाँ जैसे हम सब भी रिमिक्स करते हैं वैसे वो सब भी रिमिक्स करते हैं, अपने धुन पे बना लेते हैं, अपना ऐसा कर लेते हैं।
0: और मैं ये कहना चाहता था शांता जी कि जो अभी कहे आपने ना कि पहले संगीत में कम्युनिकेट करते थे, तो ये बिल्कुल सही, पर झगड़ते थे भी तो संगीत में सुना देते थे, ऐसा भी मैंने सुना है।
1: हाँ, सभी।
0: कि झगड़ते थे भी संगीत में और खूब अपना महाराज या महाराजिन को सुना देते थे।
1: हाँ, वो तो है। हाँ।
0: तो सुनो वालों, अभी कार्यक्रम अभी रेडियो बाकी है, क्यों ना हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। देखा जाए कि अनुराधा जी भी अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए। अनुराधा जी, अभी हम सब आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: सुनने वालों, ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जो आपके लिए हम सफर रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से और अनुराधा चंद्र जी, जो अपना संदेश रख चुके हैं कुछ, और कुछ संदेश अभी बाकी है ना अनुराधा जी, तो जरूर अपना संदेश को हम सब के लिए और रखिए, क्योंकि अभी तो कुछ संदेश बाकी है।
1: चलिए आगे बढ़ा जाए और जानते हैं कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अक्सर हम किसी की कोई चीज पसंद आती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और अच्छा लगता है कि आप किसी को जो अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करें, पर याद रखें कि जरूरी हो तभी निजी तौर पर आलोचना करें। ऐसा नहीं कि आप देखिए, बहुत बार होता ना, हम प्रशंसा तो कर देते हैं, हम कहेंगे ओहो ये तो कैसा, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ उसके लिए, आप दिल से तो उसके लिए अच्छा चाहते हैं, पर कभी कभी आप ऐसा बोल देते हैं और वो आलोचना जैसा लगता है, क्रिटिसिज्म जैसा, तो ये सोचना चाहिए आप किसके सामने ऐसा बोल रहे हैं, और कभी कभी अपने आप को चाहते हुए भी ना रोक लेना चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कभी कभी मिलते हैं किसी से तो अच्छा ही है कि थोड़े दो शब्द अच्छी बातें ही बोले उनके हैं। और देखिए ऐसा होता है ना, कभी कभी आप किसी को मिले, अब वो इंसान को आप आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो या जानने वाला हो, और आप मजाक में कह देते हैं कि भाई उसके वजन को, किसी का वजन ज़्यादा है। देखिए कम वजन है तब तो अच्छा है लगता है इंसान को, पर आप किसी को अचानक कह दें भाई तुम तो बहुत मोटे लग रहे हो, तुमने तो बहुत वजन ज़्यादा बढ़ गया है, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये बातें किसी को मन में लग जाती हैं, और ये बातें ऐसे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान कोशिश कर रहा हो अपना वज़न घटाने का, या हो सकता है आप किसी को कहते ओ तुम तो बहुत ही कितने क्या हो गया, दुबले से लग रहे हो, हड्डी का ढांचा लग रहे हो, क्या हो गया पतले से हो गए हो, तो आप नहीं जानते, हो सकता है उनको कोई तकलीफ हो कुछ हो, तो ये सोच लेना चाहिए। और बस आप ऐसा बोलें कि देखिए, आप ऐसा बोल दें कि ओ भाई तुम तो बहुत ही आज शानदार दिख रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है ना, दूसरा इंसान को मन में ये सुनकर अच्छा लगता है। तो हर समय जरूरी नहीं कि आप सोचें हम तो सत्यवान होकर हम हर चीज़ सच बोलेंगे। देखिए सच भी कभी कभी तोल मोल कर बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए खुलकर, तो क्योंकि कभी किसी को ठेस लग सकती है दिल में, तो ये सब बातें ख्याल रखनी चाहिए कि क्या क्या बात करें। अच्छा ये तो हो गई वजन वाली बात, किसी को क्या ऐसा क्या बोले नहीं बोले, पर देखिए बहुत बार होता है ना, हम हमने फोटो ली किसी से कैमरे में मोबाइल में, और झट से हम उस इंसान का, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय मित्र क्यों ना, हम एकदम से उसका मोबाइल खींच कर कहते हैं भाई दिखाओ तुम्हारे मोबाइल में कैसे ये फोटो कैसी आई है, बताओ ये जो फोटो ली कैसी आई है, और आप वो तो फोटो देखते हैं और उसका फोन अपने हाथ में पकड़ कर दाएं और बाएं एकदम से आप स्वाइप करने लगते हैं। तो देखिए याद रखें ये बहुत ही गलत आदत है कि कभी भी हर इंसान का जो मोबाइल होता है उसका अपना निजी मोबाइल है, उसका उसमें निजी कुछ भी और तस्वीरें हो सकती हैं अपना है, तो ये अच्छा नहीं है। वो इंसान आपको खुद दिखाए तो ठीक है, पर आपको ये नहीं कि अपना दूसरे का मोबाइल पकड़ के लेफ्ट राइट आप दाएं बाएं करके स्वाइप करें और ऐसा करें, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब दिखता है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए आइंदा से, याद रखें। ये हम भूल जाते हैं पर ऐसा करना नहीं चाहिए, ये याद रखें। तो और भी ऐसे कोई बहुत बातें हैं, देखिए क्या होता है, आप कभी किसी से मिलते हैं और आपको लगता है ओ मैं तो बहुत मेरा जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को बहुत समझते हैं कि भाई देखो ये तो छोटा सा है, छोटी मोटी नौकरी करता है, मैं तो काफ़ी सीनियर हूँ, ये तो मेरा बहुत जूनियर है। तो याद रखें कि अपने से भी जो जूनियर है, नीचे काम करने वाले हैं, कोई भी ऐसे लोगों से आप अगर मिलते हैं तो उनके साथ हमेशा सम्मान के साथ व्यवहार करें, हैं, ये नहीं कि अपना अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। इंसान का आप कितने भी बड़े हों पर बड़प्पन आपका तभी है जब आप जो आपसे भी छोटे जो हैं उनका आप आदर सम्मान करें, और उसी में आपका बड़प्पन झलकता है, और आप जब दूसरे का आदर करते हैं है, और उनका सम्मान करते हैं। देखिए बहुत बार होता है ना, हम लोग ये भूल जाते हैं, कभी हम किसी के साथ बाहर जाते हैं, और ये आजकल बहुत ही आम है कि हम मोबाइल लेकर 24 घंटे बैठे रहते हैं। अब मोबाइल है तो बैठेंगे ही, चाहे ट्रेन हो इधर है, चलिए जब तक कि आप अपना खुद से बैठे हैं मोबाइल लेकर तब तो ठीक है। पर बहुत बार होता है हम कहीं बाहर खाना खाने गए हों या किसी दोस्त के साथ बाहर बैठे हों और आप आपस में वो आपसे बात कर रहा है और आप अपना बस मोबाइल लेकर बैठे हैं और अपने मोबाइल में ही आप उससे सीधे वो बात नहीं कर रहे हैं और बस अपना जो समय है बस मोबाइल में कुछ कोई आपका ये आ गया, कॉल आ गई या आपका मैसेज आ गया। ये याद रखें कभी भी आप किसी के बाहर जाते हैं तो अपना मोबाइल साइलेंट कर दें अपने, और मैसेज उस समय ना देखें, जो फ़ोन आ रहा है वो बाद में आप अटेंड कर लें। बहुत तो ये बहुत ख़राब लगता है कि आप जब उस समय आए हैं ना उस व्यक्ति के साथ अपना समय व्यतीत करें, ना कि मोबाइल में लगे बैठे। ये बहुत एक तरह का बुरा व्यवहार समझा जाता है कि जब ऐसा इंसान करता है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जिस इंसान से मिलने आए हैं उसके साथ आप टाइम अपना वक्त व्यतीत करें। तो बहुत बार होता है कि आप देखते हैं कि भाई कोई दो लोग बात कर रहे हैं या कोई देख रहा है कि वो किसी इंसान से दूसरा इंसान पूछ रहा है भाई सलाह कुछ कुछ बातें कर रहा है और आप सुने जा रहे हैं और आपको लगता है कि ओ भाई ये क्या उल्टी पुल्टी बात कर रहा है, ये तो है मैं अपनी सलाह देना चाहता हूँ। याद रखें कि जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगी जाए आप बेहतर है कि आप चुप रहें, बिन मांगे सलाह ना दें, क्योंकि जब कोई आपसे मांगे तभी आप अपनी सलाह दें, ना मांगने पर चुप ही बैठना अपने अकलमंदी का अकलमंद इंसान का वही होता है जो मांगने पर ही सलाह दे, ना मांगे तो चुप बैठे। तो ये देखिए जब किसी से लंबे समय के बाद आप मिल रहे होते हैं ना, जब तक वे इसके बारे में बात ना करें तब तक उनसे उनकी कभी भी, जैसे मैंने पहले भी बोला, उनकी उम्र और वेतन यानी कि सैलरी कभी ना पूछें। ये बहुत व्यक्तिगत एक होता है, और औरतों के साथ तो बिल्कुल भी ये बहुत, महिलाओं के साथ कभी भी उनकी उम्र का नहीं पूछना चाहिए। मजाक में आप कितना भी पता लगाना चाहें पर ये कभी मुंह के सामने ऐसा नहीं हो, अपने तरफ से कोई बताए तो ठीक है पर कभी आप ऐसे भूल ना करें कि मुंह में आप एकदम से कहें कि भाई बताओ, और अपना काम से काम रखें। देखिए जब किसी से आप बात कर रहे होते ना तो भले ही आप धूप में घूम रहे हैं और आपने धूप का चश्मा लगाया हुआ है तो सही है, क्योंकि क्यों ना लगाए, धूप है तो आपने चश्मा लगाया है, परंतु याद रखें जब आप कभी किसी से जब बात कर रहे हैं व्यक्तिगत तरीके से, आप किसी से आप बात करते हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा अपना काला चश्मा निकाल लें जब भी आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं, ये एक सम्मान की निशानी होती है। नेत्र संपर्क यानी कि आँखों से आँख में डालकर हमेशा बात करनी चाहिए, और नेत्र संपर्क आपके भाषण में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। तो आप चश्मा पहनकर करते तो हैं, पर हमेशा याद रखें जब किसी से बहुत व्यक्तिगत तरीके से बात करें तो ये एक तो चलते फिरते हो गया चश्मा पहना है, कोई बात नहीं, आपने हेलो हाय कर दिया, पर अगर आप किसी से बिल्कुल आमने सामने पास से बात करें तो हमेशा चश्मा, अपना काला चश्मा ऊपर करें और बिना चश्मे के आमने सामने बात करें। ये एक एक एक तहजीब है, एक अच्छा तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए है। तो क्यों ना संजय जी थोड़ा सा एक और सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा गीत सुना जाए, और फिर मैं आगे और बहुत सारी बातें बतानी है लोगों को, तो फिर आगे चढ़ेंगे। चलिए गीत सुनते हैं।
0: अनुराधा जी बिल्कुल, मैं एक सुंदर सा गीत को चुन करके रख लिया है, पर यहाँ शांता जी भी बैठे हुए हैं तो ये प्रश्न मैं और रख देता हूँ, क्योंकि बड़ा कुछ ज्ञान के और कुछ ध्यान के जानने वाले बात के अंतर्गत आपने और रखे हुए हैं। तो शांता जी ये अभी जैसे मैंने सुना कि महिलाओं यानी कि फ्रॉवों को उम्र उनके नहीं पूछना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: आप मेरी से सवाल पूछ रहे हो?
0: अब स्टूडियो में तो आप ही बैठे हुए हैं।
2: हाँ वो तो सही है, मैं तो बैठी हूँ आपके साथ यहाँ स्टूडियो में, क्यों नहीं पूछना चाहिए?
0: क्योंकि अभी तो हमने सुना ये बात,
2: तो अनुराधा से पूछना पड़ेगा।
0: अनुराधा जी अभी हाँ। आपके इसके बारे में कुछ और देना चाहिए और भी शायद संदेश रखना चाहिए, क्योंकि ये zijn hele bijzondere dingen die je als het ware je moet ze allemaal kennen.
2: Zeker.
0: Maar toch, het lijkt alsof wel no, soms hem aanjaan, karila ki hem aanjaan hè, un baaton pe. Jabki in sab baaton ko hamme janna chahiye. Hamme bachpan se sikhaya jata hai.
2: Ek bahut acha baat kahi hai Anuradha ji ne. कि अगर आप कोई से बात करते हो ना व्यक्ति व्यक्तिगत मैं इमातानत प्रात बैंत एन यू हैव अ सोनोब्रेल ओप हैट इज हेल नेचर्स ओम दैट फनी ओह ऑफ द सेट सो दैट यू होन द ओह कॉन्टैक्ट है बस हेल रिस्पेक्टफुल।
0: हमने देखा कि कभी एक व्यक्ति भी है जो जो कैसे बोले दांत प्रोटेज लगाते हैं ना, तो वो प्रोटोइसर अपने मुख में नहीं रखे हुए थे तो अपना हाथ आगे करके बात करता है हरदम, तो ऐसा भी कुछ देखो अब सिखाया गया है जिसे हम ओक नेचर्स है।
2: हाँ बात ऐसे भी है, हम जो मुख में जो हमारा दांत है ना तो बात करने में वो दांत जो है वो स्पीक्स जो है रोकता है, और जो दांत नहीं है तो बात करने के तरीका जो है वो अलग से हो जाता है।
0: हाँ तो आप वही बात कह रहे हैं कि जब भांग पी लो
2: हाँ।
0: तो भांग पीने से पीने के बाद, क्योंकि अभी अनुराधा जी के संदेश में ये था कि कोई छह देख रहा है अपने नजर से और दूसरा नजर से कोई नौ देख रहा है
2: हाँ,
0: उसमें अपना अपना अपना अंतर हो जाता ना।
2: हाँ बात यह है कि आप कहाँ थारा है, किस तरह किस दिशा से देखते हो,
0: किस दिशा से देखते हैं हाँ। तो एक गीत को हम चुन करके रखे हुए हैं अनुराधा जी, जरूर अब मुझे ये पता नहीं कि आपको अच्छा लगेगा कि ये जोजा सूस फिल्म से निकाला गया कि दुनिया बड़ी खराब है, उस पे उस ओर बढ़ते।

बदौलत कितने लोग मौत से पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो सोचो जरा समझो समझो जरा संभल।

0: मुझे बता दे, और ये सुंदर सा गीत जिसमें अशोक कुमार ने काम किया है, नेहतीन पुराना फिल्म है, मेरे ख्याल से उससे भी आगे की फिल्म है। पर अनुराधा जी, अभी आपका संदेश कुछ बाकी रहा तो विनय है आपसे, आप अपना संदेश को हम सब के लिए आगे ले जाइए।
1: चले आगे बढ़ा जाए और जानते हैं कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अक्सर हम किसी की कोई चीज़ पसंद आती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और अच्छा लगता है कि आप किसी को जो अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करें। पर याद रखें कि जरूरी हो तभी निजी तौर पर आलोचना करें। ऐसा नहीं कि आप देखिए, बहुत बार होता ना, हम प्रशंसा तो कर देते हैं, हम कहेंगे ओहो ये तो कैसा, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो मैं कुछ उसके लिए, आप दिल से तो उसके लिए अच्छा चाहते हैं पर कभी कभी आप ऐसा बोल देते हैं और वो आलोचना जैसा लगता है, क्रिटिसिज्म जैसा। तो ये चलिए संजय जी, आगे मैं भरती हूँ अपनी थोड़ी, जो मैं सुनने वालों को अपनी बातें बताना चाह रही थी कि क्या हमें रोज की मर्रा ज़िंदगी में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम देखिए क्या होता है ना, हम लोग जीवन तो हम बड़ा सरल है पर कभी कभी हम रोज़ के जीवन में बिना सोचे समझे बहुत सारी ऐसे हम चीज़ें कर देते हैं और बिना सोचे समझे किसी का दिल दुखा देते हैं। तो हमें बड़ा समझ कर हम क्या बोलते हैं, क्या हम व्यवहार करते हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी कुछ और भी थोड़ी सी बातें हैं जो मैं हर इंसान के पास, हम लोग कमाते हैं, सबके पास पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, और ये अच्छी बात है कि बहुत लोग कभी मेहनत करके बहुत पैसा कमाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो जो साथ के हैं वो इतने हमारे जैसे इतना शायद उन्होंने धन नहीं कमाया है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम बात करते समय अपने पैसों के बारे में अपनी हम शो ऑफ नहीं करें। किसी से बात करते समय हम अपनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपने बारे में ना बताएं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारे पास इतना धन है और हम तो रोज़ यहाँ हम विदेश घूमने जाते हैं और हमारे पास ऐसी गाड़ी है, हम इतना खर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है ना, बहुत बार हम भूल जाते हैं कि जो हमारे हम जिससे बात कर रहे हैं वो हो सकता है उनकी स्थिति पैसे में वो इतना उनके पास वो ना कमाते हों और आर्थिक फाइनेंशली वो इतने वेल ऑफ नहीं हैं। तो ये जो हम ऐसे बात करते हैं ना बढ़ा चढ़ा के, हो सकता है आपके पास है पर अच्छा इंसान का बड़प्पन उसी में होता है कि आप पैसों की बातें अपने आप जानते हुए अपना थोड़ा सा किसी के सामने ना करें, वो सुनने में बुरा लगता है। और आप दूसरे के बारे में पूछें हमेशा कि वो कैसा कर रहा है जीवन में हैं, और किसी को मदद हो तो आप उसकी मदद करिए, पर ये नहीं कि अपने बारे में ही आप बोलते रहें कि मैं ये करता हूँ पैसा कमाता हूँ और दूसरे को नीचा दिखाने के। आपका हो सकता है कि आप ये नहीं, आपके मन में ये विचार नहीं है पर ऐसा करने पर बोलने पर दूसरे को यह महसूस हो सकता है कि देखो ये तो बहुत अपना पैसा करे जा रहा है और मेरे को, मैं इतना नहीं कमाता हूँ तो मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मन में, दूसरे इंसान के मन में ये बात आ सकती है। तो ये बहुत हमें हमेशा ध्यान रखकर ये बातें बात करनी चाहिए और किसी के सामने अपने धन की बात नहीं। कभी बात करनी चाहिए। देखिए आजकल का क्या ज़माना है ना, मोबाइल हमेशा हमारे 24 घंटे मोबाइल रहता है। और जितना अच्छी बात है कि देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का हम जीवन चल रहा है, पर हमें उसको इतना भी मोबाइल को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना चाहिए कि हम उसके बिना रह ना सकें, क्योंकि हमारा ऐसा होने लगा है कि हम मोबाइल हर जगह अपने साथ ले जाते हैं, 24 घंटे मोबाइल चाहिए। तो हमें ऐसा है कि एक थोड़ा सा हमें को मोबाइल को उतना ही उपयोग करें जितना ज़रूरी है, और थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना चाहिए कि एक ऐसा हमें एक समय बांध लेना चाहिए कि जिस समय कि हम मोबाइल को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उससे क्या है, वो आपका निर्धारित, जैसे आप खाना खा रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो वो एक समय निर्धारित करें कि हम उस समय मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो हमारा पूरा पारिवारिक समय है, हम जो परिवार के साथ हैं वो बिल्कुल हम उसमें मोबाइल सब अपना अपना रख देंगे बंद करके, हम वो नहीं देखेंगे। जब आप परिवार के साथ बैठे हुए हैं तो ऐसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल अलग रख दें, तो ऐसा निर्धारित है। या आप जब आपस में जब अपना आप टाइम बिता रहे हैं तो मोबाइल को ऐसा समय बांधें कि मोबाइल जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, हर समय मोबाइल का लत ना लगाएं, ना आदत डालें। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप सुबह पूरा दिन भर मोबाइल में इतने लगे कि आपने तो अपने बच्चों की ना अपने बीवी घर वालों की तो शक्ल भी नहीं देखी, ना आपको पता है कि उनने क्या कपड़े पहने, क्या उन्होंने घर में, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा एक निर्धारित समय बांधें जितना आप मोबाइल उसको इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि यदि आप अपने कोई सहकर्मी, जैसे होता है ना कि आप जो आपके साथ काम करता है वो कभी ऐसा मिला जिसे कि जैसे आप कभी अस्पताल पहुंच गए, आप कहीं डॉक्टर के पास गए हैं और आप तो गए अपने काम से अपने आप को दिखाने, वहाँ आपको कोई अपना कोई जानने वाला मिल गया या कोई कुलीग मिल गया और आप वो भी डॉक्टर के आए हैं, तो याद रखें उस इंसान से ये ना पूछें वह वहाँ किस लिए आया है, क्यों मिलने आया है, किस डॉक्टर से मिलने आया है, उसको क्या तकलीफ़ है। देखिए ऐसे समय में ना हर को आप थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दें, प्राइवेसी दें। ये अच्छा नहीं लगता कि आप उस इंसान से उससे पूछें कि वो क्यों आया है, हो सकता है वो आपसे आपको नहीं बताना चाहे कि वो किस डॉक्टर से मिलना है, उसको क्या तकलीफ़ है। तो ये बातें जो होती हैं ऐसा ना बोलें, और अगर मिले तो आप बस आप ये कह सकते हैं मुझे आशा है कि आप ठीक हैं, और बस ना वो आपसे पूछेगा, और अगर वो आपसे पूछता है तो आप भी अपना बताने की ज़रूरत ना रखें और ना किसी से पूछें। अपनी व्यक्तिगत जो बीमारी होती है ना, बताने के लिए उन्हें ऐसा स्थिति में ना डालें कि उनको बड़ा अजीब लगे कि आपको बता वो आप उनके पीछे पड़ जाएं कि बताओ, फिर सबको आप इतना उनकी इज्जत करें कि ना आप उनसे पूछें और उनको ऐसी स्थिति में ना डालें जिससे उनको बुरा लगे कि ये बताना पड़े। देखिए हर को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है और वो लोग अच्छा नहीं लगता कि आप सबके बताना चाहें। तो याद रखें कि ये कभी ये बहुत व्यक्तिगत सवाल ऐसे ना ही नहीं करने चाहिए। तो देखिए आज तो बहुत बातें हो गई, एक आखिरी चीज़, कोशिश हमेशा ये करें कि प्रतिदिन, देखिए हमारे जीवन में बहुत कुछ हम लोग उतार चढ़ाव रहता है रोज का, तो हंसी मजाक चलता है, दुख भी चलता है, देखिए हर पल आते हैं, पर और माहौल भी ऐसा है कि कभी कभी बहुत सुनने में बहुत चीज़ें खराब आती हैं सुनने में, तो मन थोड़ा सा थोड़ा दुखी हो जाता है, तो हमेशा याद रखें कि कोशिश करें प्रतिदिन रोज कोई ना कोई ऐसा एक काम जरूर करें कि दिल खुश हो जाए। अच्छी कि जब सुबह उठे तो हमेशा कोई चीज़, देखिए नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें तो बहुत सुनने में आती हैं, पर कोई ऐसे सकारात्मक कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ पढ़ें या किसी के साथ शेयर करें, जिससे कि आपने जो कुछ सीखा है उससे दूसरों को भी सीखने में मदद मिले और अपने भावी पीढ़ी को कोई जो है तो आप किसी को शिक्षा दे सकें। तो हमेशा याद रखें कोई रोज़ एक बात कुछ अच्छी सबसे बात करके कुछ शेयर करें तो थोड़ा दिल होता है ना वो खुश हो जाता है कि देखिए दुनिया में जहाँ दुख है तो अच्छा भी है। तो इस भाव से लेकर रोज़ अपना जीवन जिए कि खुशियाँ बांटें और अच्छी जो बातें हैं वो सबके साथ खुश रहें, मिलजुल कर रहें। और देखिए एक अच्छे चरित्र निर्माण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप खुद भी खुश रहें और आसपास भी सब में खुशियां बांटें। तो आज मैंने बहुत सारी बातें आप सबको कही हैं, आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में कोई ना बात ये इनमें से कोई ना कोई बात अपने जीवन में जरूर ढालेंगे और ख्याल रखेंगे कि आइंदा से कि ऐसा ऐसी बात ना कहें कभी किसी को जिससे दूसरे। और आशा करती हूँ आप सभी खुद सब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहें और हंसते रहें, खुशी बांटें, खुद भी खुश रहें खुशी बांटें। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ये सब बातें मेरी सुनी। और संजय जी चलिए एक और अच्छा सा एक गाना हो जाए और आप भी सबका दिल खुश कर दें, चलिए गाना सुनते हैं।
0: जरूर अनुराग भाई, एक सुंदर सा गीत हमने चुन करके रखे हुए है और ख़ास करके वो गीत जो हमारे अपना अनाउंसर साथी के मुकाम से आप सुनेंगे, तो ज़रूर पहले उस गीत को और बढ़ेंगे फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: ये सुंदर सा आवाज आपने सुने हमारे कोई खास साथी शांता खेमाई जी की आवाज में। ये शांता जी, इसमें मैं सुन रहा था दो तीन गाना का मिलावट है ना?
1: जी संजय जी, इसको कहते हैं मैथिली।
0: मैथिली कहते हैं इसे।
1: हाँ, तीन चार गीत जो उसमें रेफरेन के साथ कुपलेट जोड़ दिया जाता है तो उसको मैथिली कहते हैं। मैथिली एक कहेगा और एक है मैशअप है, एक है कॉफर।
0: ऐसा
1: ये सब तरीका हैगा जो गाना ऐसे गाते हैं।
0: और इस पे जब देखा जाए कि या अब गायक लोग ना, आप लोग गायक हो तो इस पे
1: है।
0: मुझे तो इसके कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी ये इतना सुंदर लगता है कि किस प्रकार से आप ये और कितने गाना को मिला करके एक में और जोड़ देते हैं।
1: और ये भी एक अच्छा बात है ना कि अब जैसे कराओके भी निकल गया है, कितने सालों से कराओके है, तो हमारा बुजुर्ग भी जो है वो उसको भी कैसे कहते हैं, मनोरंजन करने के लिए भी जो अपने यौंग यार में सब जो गीत गाते थे सुनते थे, तो कराओके भी एक मोहलक है दे दिया है कि वो सब है जो अपना दिल के बाद जो है गीत के रूप में भी वो बता देते हैं।
0: गीत के रूप में बता देते हैं।
1: हाँ, अच्छा लगता है भी सुनने के लिए। और जो ना गाते हैं तो सुन सुनकर भी आंसू भर आते हैं उन सब की आंखों में।

बहुत बहुत धन्यवाद फौन हिंदुस्तानी रेडियो वाले जो श्रोता हैं, अपना समय निकाल कर, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जो ज्ञान मिलता है अपने आप में उतारते, अपने लाइफ में उसको उतारते हैं, एडजस्ट करते हैं और उनको भी फायदा होता है और दूसरों को भी होता है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हो, जय जय।

और अंत में मैं ये बोलना चाहूंगी कि रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों ही भर जाते हैं। इंसान जन्म के बाद 2 वर्ष के बाद ही बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उसका पूरा जीवन लग जाता है। इन्हीं विचारों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

0: नहीं मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारे अनाउंसर साथी के साथ मैं भी आपसे आज के लिए इजाज़त ले रही हूँ। आपने साथ दी है उसके लिए धन्यवाद किया जाता है, और स्वीकार कीजिए बहुत प्यार के साथ शांता जी के प्यार भरे नमस्कार।
1: सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना।
2: सुनने वालों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए शांता खेमाई जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में थे, भाई राधे ग्लेन जी जो हमारा सहयोग दिए, और भारत से राजेंद्र सिंह जी, और हमारा संदेश लेकर और अनुराधा चंदर जी जो अपने ओर से संदेश को रखे। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे और जरूर अच्छा लगते होंगे। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और आपसे विदा ले रहे हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया वो गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उसी संदेश को मैं एक छोटी सी भाग इस रचना में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

जग की रचना रचने वाली तेरे हाथ हजार, इस भवसागर में है तेरे नाम से बेड़ा पार, फिर भी तेरे द्वार से मैया खाली कोई न जाए।

मैया जिसकी घर के दिए में तेल नहीं, वहां ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं

इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चले जाते हैं। आज जिसका शोक कर रहे हैं उसे तो नया जीवन भी मिल गया हो, यही रीत है ये संसार की।

दोस्तों, भविष्य की तैयारी के लिए अतीत का उपयोग करें, लेकिन अपने अतीत को कभी भी अपना भविष्य निर्धारित न करने दें। अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख लेंगे मित्रों, तो आप जीवन में ज़्यादा खुश रहेंगे। अपने आप से प्यार करें और हमेशा स्वतंत्र रहे। और मित्रों, ताकत और पैसा महान संसाधन है, यदि वे आपके दिमाग में प्रवेश करते हैं तो भयानक अहंकारी बन सकते हैं आप। तो इससे थोड़ा बच के रहें मित्रों, बच के रहें।

अपनी गलतियों को देखने के लिए विनम्र बने मित्रों, उन्हें स्वीकार करने के लिए साहसी और उन्हें सुधारने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान बने। और रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है, नहीं होती है। किसी और की खुशी के लिए आपको अपना दिल दुखाना ही पड़ेगा मित्रों। इसके लिए वास्तव में आपके पास एक साफ दिल होना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद भी होना चाहिए।

सज्जनों, जैसे दिन और रात बदलते हैं और परिस्थितियां अपने आप बदल जाती है, मौसम बदल जाता है और उसके साथ ही कांटे और फूल भी अपने आप बदल जाते हैं, तो अब आप थोड़ा समझदार हो गई हैं और देखते हैं कि मौत आपके सामने खड़ी है। दोस्तों, इस दुनिया में समय के साथ सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है और बदल जाता है। जो डाली आज खाली है उनमें कल फूल लगेंगे। जीवन एक बहती नदी की तरह है मित्रों, जिसके अच्छे और बुरे दो किनारे हैं, दो किनारे हैं।

मित्रों, यदि आप जानबूझकर या अनजाने में किसी शराबी या ऊंच पद के व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो क्या आप प्रभावित होंगे या नहीं? मिट्टी के तेल से भरा डब्बा जिसका ढक्कन खुला हो और भले ही आप पास जाकर आगे न बैठे हों उसके साथ में, फिर भी तुम्हें तीखी गंध आती है या नहीं? मित्रों, और इसी तरह सिद्ध भक्तों के मामले में भी, सही व्यक्ति के मामलों में भी, यदि कोई ऐसे लोगों के संपर्क में जुड़ते हैं तो क्या उनके अच्छे प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा ना, जरूर पड़ेगा, और इसका फल अवश्य भी मिलेगा। कुत्ते और बिल्ली से प्रेम करते हैं लोग, तो क्या आप भगवान से प्रेम कर नहीं सकते हैं? भगवान से जुड़ नहीं सकते हो? सोचो जरा, सोचो।

सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं और ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, हम आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। अपने देश अपने सूरीनाम का कुछ कलाकारों के साथ, कुछ भजनों के साथ

एक भजन जो हमारे स्वर्गीय हरि शिव बालक जी ने हम सबके लिए गाकर छोड़ गए। एक ऐसा कलाकार जिन्होंने और अपने जीवन में कितने सारे गीतों और भजन से हम सबके लिए और बनाए, और एक कलाकार जो इतना सुंदर सुंदर गीतों को और सजाए, अपने लिखे हुए और औरों के लिखा हुआ भी उन्होंने अपने आवास में और रखे।

जीवन में कई बार हम बड़े बड़े परेशानियों से निकल जाते हैं, मानो कोई साथ दे रहा है। इसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहा जाता है।

सुनने वालों, श्री विष्णु संगीत समाज हमारे अपना ही देश का जो इस गीत को और गाने वाले थे श्रीमान केशव प्रसाद महावीर, हारमोनियम पे जो अंगद भोला सिंह, अनिल भोला सिंह जो ढोल मास्टर थे, डंटाल पर द्रौपदी भोला सिंह और इस गीत का लिखने वाला रमेश शंकर महावीर और जगदीश प्रसाद महावीर जो अथविशोर थे, चंद्रिका प्रसाद महावीर अथविशोर और इस सुंदर सा भजन जो उन्होंने जा कर के और लिखे, एक कलाकार जो सूरीनाम में जो ऐसा सुंदर सुंदर गीतों को लिखे। सुनने वालों, द स्क्राइफर्स फन जो पहले हमारे सूरीनाम देश में जा कर के और इतने सुंदर सुंदर गीतों को लिखे, हालांकि शायद आजकल ऐसा और लेखक नहीं आपको मिलेंगे, फिर भी ये सुंदर सुंदर गीतों के साथ हम सबके लिए और बना कर छोड़ गए।

से बढ़कर कोई दान नहीं और गुरु से बढ़कर कोई दानी नहीं।

हरी शिव बालक जी, आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि शायद हमें अवसर मिला ऐसा और कलाकार के साथ बैठने के, और भाई महेंद्र गुदर जी के चलते हम सब साथ में मिल कर के और कितने बातचीत किए एक इतना बड़ा कलाकार, और जो आज हमारे साथ नहीं है फिर भी हम सब के लिए इतने सुंदर सुंदर और भजनों तथा गीतों को छोड़कर चले गए।

जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही बड़ा दान है।

अपने आप को भी खुश रखिए। अपने आप को भी खुश रखिए, जब आप खुश रहेंगे तभी खुशियों बांट पाएंगे।

कलाकारों में एक कलाकार सनातन जी भी थे। जिनका जन्म डिस्ट्रिक्ट निकेरी में हुआ, डिस्ट्रिक्ट निकेरी में हुआ और कुछ 15 साल के आयु में वो अपना सांगर यानी कि जो अपना करियर था वहाँ शुरू हो गया था। उन्होंने क्लासिक्स हिंदी म्यूज़िक और मॉडर्न पॉप म्यूज़िक भी गाए हैं। हमारे लिए इतने ढेर सारे और गीतों भजन आदि को और गा करके गए हैं।

परेशानियां दो जरूरतों की वजह से है। पहला कि वो तकदीर से ज़्यादा चाहते हैं, और दूसरा कि वो वक्त से पहले चाहते हैं।

कहते हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करो, हमेशा दूसरे के मदद करो, पता नहीं ये पुण्य जिंदगी में कब आपका साथ दे जाए।

सुनने वाले कुछ भजनों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहे। ये फाहून हिंदुस्तानी रेडियो है।

एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता था। पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता खिलाता और थक जाने पर उसी के छाया में सो जाया करता था। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोते रहते थे। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपने तरफ आते देखा और पास आने पर कहा कि तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुम्हें याद किया करता था। यानी कि वो पेड़ आम का जो ये वृतांत उसमें लिखा गया है कि मैं रोज तुम्हें याद किया करता था, चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। पर बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरे खेलने की उम्र नहीं, मुझे पढ़ना है, लिखना है, मेरे पास फीस भरने के पैसा नहीं है। तभी पेड़ ने कहा, तू मेरे सारी आम लेकर बाजार में बेच दो, इससे जो पैसा मिले अपने फीस भर दो ना। उस बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिया और उन सब आमों को लेकर वहां से चले गए। इससे जो पैसा मिले अपने फीस भर देना, आम के पेड़ ने कहा था। और वही होता है कि बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिया और उन सब आमों को लेकर वहां से चले गया। उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहा। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा कि अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरा अपना घर बनाना है और इसके लिए मेरे पास अब पैसा नहीं है। आम के पेड़ ने कहा कि तू मेरे सभी डालियों को काट कर और ले जा, उसे अपना घर बना लेना। पेड़ ने कहा कि मेरे सभी डालियों को काट कर ले जा और उसे अपना घर बना लेना। उस जवान ने पेड़ की सभी डालियों काट ली और लेके चले गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं था, वो बिल्कुल बंजार हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब वो बालक जो जवान हो गया था उसके पास फिर आएगा ये उम्मीद ही छोड़ दिए थी। फिर ऐसा एक दिन होता है, अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर भी मेरी मदद करते थे।
आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृक्ष के आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आज तो मैं इतना कि मुझे आपके साथ जी भर कर खेलना है, आपके गोद में सर रख कर के सो जाना है। और इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ में सुखी हुई और डालियों फिर से अंकुरित हो उठी। वो आम के पेड़ कोई और नहीं है, हमारे माता पिता होते हैं दोस्तों। जब हम छोटे थे तो उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, और जैसे जैसे बड़े होते चले गए, उससे दूर होते गए, पास तभी आए जब कोई जरूरत पड़ती थी, कोई समस्या खड़ा हो जाता था। आज इसी प्रकार से कई माँ बाप उस अवबंजार पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहा है, जाकर उससे और लिपट जाइए, तभी आप देखेंगे कि उनके और गले लगाइए, फिर देखना कि वो वृद्ध अवस्था में उनका और जीवन फिर से अंकुरित हो उठेंगे।

मुरली ने पूछा चांद से कि चांदनी को देखा है या नहीं, तो चांद ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं।

आज एक ऐसा दिन बनाइए जहां पर आप अपने दोस्तों तथा जो अपने मित्र है उनसे जरूर उनके बारे में थोड़ा से सोचिए। मैं एक गीत प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं, अपना चॉइस है, पर इस गीत को हम सब बहुत बार सुने हैं। पर मन कभी नहीं भरा,

दोस्ती मेरा प्यार एक ऐसा सुंदर गीत है जिसे अपना पुराने समय अपना दोस्तों का जो ये ख्याल रखवा देते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी जरूरत नहीं बल्कि आप पर उसका विश्वास होता है। इस बात से हम थोड़ा से और धुन बदल देते हैं कार्यक्रम में जो सुंदर गीत की ओर और हम बढ़ रहे हैं। हमारा सुबह जो प्रारंभ हो गया है एक अच्छा दिवस और खूब रंगीला दिवस हो और हम एक सुंदर से गीत की ओर

A beautiful film of Dilip Kumar and Vijayanti Mala ji. ये सुंदर सा गीत जो क्लासिक्स बॉलीवुड से निकाला गया. जब गलत पासवर्ड से

अखियां परदेशियों से अखियां ना मिलाना। हमारे देश में जहां जहां से भी लोग आए हैं फकांसी से, तो आपको सभी को स्वागत किया जाता है। और ये संगीत जो सुंदर रूप से सुनाया गया कि परदेशियों से कभी अखियां ना मिलाना, और मिल भी गया तो कौन सा गाना उसके लिए खोज कर रखा हूं मैं, अभी आपके लिए रखने वाले हैं।

तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, एक फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन जी और जीनत अमन ने काम किया, गाना जो किशोर कुमार और आशा भोसले ने और अपने आवाज से दिए। ये एक सुंदर सा गीत जो चलाया गया और अगले गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं, पर ये बात हो जाता है दोस्तों, जैसे कि अभी ये सुंदर से गीत को हम सब सुने कि तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, उस अंतर्गत में जरूर एक छोटा सा संदेश रखना चाहता हूं कि उम्र गुजर गई खुशियां बिटोरते बिटोरते, उम्र गुजर गई खुशियां बिटोरते बिटोरते, फिर पता चला कि खुशी तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। दोस्तों जो अभी जुड़े हुए हैं रेडियो से, आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है अनफैन दाख तू खवेंस, एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुंदर सा गीत जो हम सब सुने दोस्ती के अंतर्गत, और ये गीत जो जिसमें हमें शायद वो ख्याल दिलाते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय ने काम किए थे। एक ऐसा दोस्ती का संदेश कुछ लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ते निभाते हैं, शायद वही लोग जिंदगी में दोस्त कहलाते हैं। जिंदगी एक सफर है, उस ओर ले चलते हैं। यहां दनहाग शहर से यूरोप के एक सुंदर देश हॉलैंड से जिसमें कुछ 18 मिलियन लोग रहते हैं,

सुनने वालों, यहां तक जो सुबह के कार्यक्रम में हम आपके साथ जुड़े रहे, आशा ये रखता हूं कि कुछ ना कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके लिए रखा गया। हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। सभी को अभी से एक शुभ दिवस।

हाँ, सबसे बड़ा रुपया, रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में, उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य जरूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल स्पेशल मांग किया गया है।

मेरा बालम इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने कंटेन 1-5 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज में।

प्यार की हो गई जीत फिल्म जादू से, यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, हम मंजिल पे ना पहुंचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते मेरे दोस्त। जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं। कल कोई मुझे याद करे, क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे, क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायद।

से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी की आवाज में।

सुरैया जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

शमशाद बेगम जी की आवाज में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे सबसे ज्यादा रुलाता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना जिंदगी में ये बात कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आए ना मेरा दोस्त। और कहते हैं कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है। जब बुरा वक्त चलता है तभी तभी हम तन्हा हैं। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा में आप तन्हा जब होते हैं तो आपको सोचने का वक्त भी मिलता है और वहीं से आप बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं।

शमशाद बेगम मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन, नेखन तीन नेखन फेफ तक ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दिस गोल्स इसमें आप सुनते होंगे कि यह साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है वे सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बारे आपके लिए फिल्म आर पार से निकलती फिल्म फैफ तक के शमशाद बेगम जी की आवाज में

हाँ, हिमेश रेशम मिया की आवाज में श्रवण की है और कहते हैं, और क्या कहते हैं, रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, कि रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, नजरों से नहीं दिल से बस बात करे, हर पल में प्यार है। जी हाँ, हर पल में प्यार है मेरे दोस्तों, हर लम्हे में खुशी है, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, कह दो तो यादें हैं, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है मेरे दोस्त।

खुशी है जब हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और आप मैं भी अपने सपने अपने लक्ष्य के पाछे जरूर से दौड़ रहे हैं। हम जरूर से कामयाब होंगे कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लो मेरे दोस्त। हाँ, कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लो, यही आदत तुम्हें हर दिन खुश रखेगा। गिर कर भी जो उठ जाए वही सिकंदर

वहां गिर कर भी जो उठ जाए तो समझना आप सफलता को जरूर से छू लेंगे। मुस्कुराओ तो सही, मुस्कुराओ तो सही, बेवजह कभी क्या पता ये भी आदत बन जाए। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे दोस्त कि तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन है, मुस्कुरा कर तो देखो, हाँ वही मुस्कुरा कर तो देखो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिख

0: हाँ, रेगिस्तान में आप सुने गरीब हूँ, उसके बाद सुनेंगे सुख खुश होना किसका।
1: फिर भी दिल से कहता हूँ,
0: फिर भी दिल से कहता है और क्या कहता है, चले हम यहाँ से श्रवण करें उससे बात। उससे पहले ये आपसे बता दे कि जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। हाँ, जिसमें जीने की चाहत बस होनी चाहिए। गम जो है ना, खुद ही खुशी में बदल जाएगी, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए बस। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है।

आप जो गौर करें मेरे दोस्तों, तो अलहदा है और बहुत इसमें हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी वो खुशी हो मेरे दोस्त कि तुम मेरी वो खुशी हो जिसके बिना मुझे मेरी सारी खुशी अधूरी लगती है। तो आप सोचो आप कितना खुश नसीब हैं और मैं भी कितना खुश नसीब हूँ आप जैसा दोस्त है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है मेरे दोस्त कि जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है। दर्द में अकेले है दर्द में अकेले थे अकेले है और खुशी में जमाना है। लगे हाथ ये बता दे हूँ यह सेल्फ फॉरसेकन कंसर्न हूँ यू सेल्फ फॉरसेकन कंसर्न एंड दैट इज आल्स नंबर 1 सेट योर सेल्फ अप नंबर 1 वंट यू बेंट बलांगरेक। सुख नीत नार खुदकेरिंग ऑफ बफेस्टिंग फन अंदरन गिव योर सेल्फ आंदाग इन प्लास वन आंदाग द सुकन बाय अंदरन। Stop met jezelf te bewijzen. Wees niet bang om nieuwe dingen te proberen. Omarm verandering. Respecteer jezelf. Durf nee te zeggen. Vertel altijd de waarheid. Durf je kwetsbaar op te stellen. Denk positief. Loop weg als je slecht behandeld wordt. Zorg goed voor jezelf, mijn lieve mensen. Zorg goed voor jezelf. Ben trots op jezelf. Vier je successen. Jij bent genoeg, precies zoals je bent. Geloof in jezelf, elke dag opnieuw. En dit zijn een paar tools hoe je zelfverzekerd

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हरी राय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मुझसे पहले आप सभी की सेवा की है भाई श्याम पूरन जी, उसे मैं हार्दिक से धन्यवाद कहती हूँ।

आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, ओपनिंग सिलेक्शन तो अभी आप सुन चुके हैं और चलिए एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे राम राम भज राम राम, और ये तो सच्चे सुनने वालों, राम से बड़ा है राम का नाम। मोहम्मद रफ़ी साहब आपको एक सुंदर सा गीत सुनाने वाले हैं, और इसमें बहुत रस है सुनने वालों।

किस पर करे गुमान बंदे किस पर करे गुमान, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी साहब जी आपको सुनाने वाले थे। और ये तो सच्चाई है सुनने वालों कि हम किस पर गुमान करें, आज हम हैं कल नहीं है और कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। और गुमान करके न कभी किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा सुनने वालों। और जीवन में भी कभी कभी इतनी कठिनाइयाँ आते हैं, कभी कभी इतनी मुश्किलात आते हैं कि लोग भटक जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, और कभी कभी तो लोग भी खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे करने से

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों जीवन से न हार और जीने वाले। और जैसा मैंने अभी कहा है कि अगर हर एक मुश्किलात या जिस हालात में जितनी कठिनाइयां में आप है, अगर उसका हल यही होता कि लोग खुदकुशी कर लेते और अपने आप को हानि पहुंचाते, तो सभी को ये ऐसा करता। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि न कभी वक्त ठहरता है और न कभी ज़िंदगी ठहरती है। तो ये जब जब ये दोनों चीज़ आगे बढ़ते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों ना कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए। सुनने वालों, एक और सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी साहब आपको सुनाने वाले हैं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से। और ये गीत हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी इज्जत से। चलिए।

सुनने वालों, अभी अभी एक तार आया है हमारे प्रोग्राम में और माता जी ने तार किए थे और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा से बात किया और अपनी समस्या सामने लाई और उसका रिएक्शन जो थी, यानी उसकी रिएक्शन जो थी वो बहुत बढ़िया था और ये हम लोगों को एक पुश देता है, ताकत देती है कि हम लोग आगे बढ़े अपने प्रोग्राम से और अपने ज़िंदगी में भी। और हम माता जी को हार्दिक से धन्यवाद कहते हैं। क्यों हम इस व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं? क्योंकि उनमें, यानी उसे मुझ पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने मुझे तार किया और अपने दिल की बात कह दी। थैंक यू वेरी मच, यानी धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और एक गीत, यानी ये भी मुझे बेहद पसंद है। चलिए ये गीत मिलकर सुनते हैं, फ्रॉम द मूवी प्यार की कहानी। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सुनने वालों, एक पते की बात बताओ, सुन मेरे हमजोली, सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब से एक पते की बात बताओ सुन मेरे हम जोली, सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली। ये तो सच है सुनने वालों, अगर आप कड़वा बोली बोलेंगे तो भी आपने सुने हैं ना, वो लगते हैं जैसे एक बंदूक की गोली और उसे कुछ नहीं हासिल होगा। फ्रॉम द मूवी यानी फ्रॉम द मूवी प्यार की कहानी से हमने ये गीत चलाए हैं। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आया सावन, झूम के।

किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झुमके। इसी फिल्म से हमने पेश की है। और किसी को बुरा कहने से और बुरा सुनने से हम लोगों को क्या हासिल होगा? इशारों इशारों में दिल लेने वाले हैं।

इशारों इशारों में दिल लेने वाले फ्रॉम द मूवी कश्मीर की गली से भी आपने सुने हैं। सुनने वालों, मोहम्मद रफी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

खाना मुझसे नहीं संभर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, मोहब्बत तो इसी को कहते हैं।

0: बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं भी। आप सुन रहे थे जी सुनने वालों, सुन रहे थे जी सुनने वालों।
1: इट्स पी ऑन द ट्रैक।

0: अधिकार उनका तौर आने दराम सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahol.
4: Digitale radio, fahol.fm.nl.
5: Dit is het Fahol Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd en is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer.
2: En tot zover het nieuws op Fahol Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahol Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai. Aur aaj songs bhi chalenge jo aapko pasand hai. सबको हमारा राम राम नमस्कार अदाए बरसो। मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो अब से लेकर 3 बजे तक हम आपके साथ देंगे। जहां तक ये आवाज़ पहुंचे, ढेर सारा दुलार पहुंचे, पैगाम पहुंचे, मोहब्बत भी पहुंचे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं दूर दूर से इस प्रोग्राम को सुनते। काफ़ी ऐप आ चुका मुझे, हर एक को एक बार फिर से हमारा सलाम नमस्कार पहुंचे। आज का प्रोग्राम मैं आप लोग के बताना चाहता हूं, अब से लेकर 12 बजे तक हम चलेंगे कुछ डांस नंबर लेकर। उसके बाद हम चलेंगे 12 बजे से 1 बजे तक कुछ हॉलैंड देश और सुरिनाम देश के जो कलाकार हैं उनके गाने हम आप लोगों को सुनाएंगे। 1 बजे से हमारा जो प्रोग्राम है, जो सवाल हमने किया था उसका फरमाइश मुझे बजाना है, जो सवाल पे हल सही हल को दिया है उसे उसका फरमाइशें मुझको सुनाना है। 1 बजे से काफ़ी हलफ दरी तलक ये प्रोग्राम चलेंगे और हलफ दरी से 3 बजे तक कुछ गाने चलेंगे जो हम आप लोग के लिए चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे चलते, आप सब जानते हैं ये है द एवरग्रीन लव, द लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे हम सब चून है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है दिनहा शहर से, जहाँ पे देखा जाए ये मौसम कितनी अच्छे मौसम है। हम यहाँ से बाहर भी ताकते हैं, सरसराहत हवा चलते है, पानी के किनारे है, जहाँ पे ढेर सारे बोट है, एक मिलकर लव बोट भी है, काफ़ी बोट भी है और काफ़ी लोग जो इस वक्त कटिया को लगा रहे हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा मछली सब पकड़ रहे हैं, अच्छा लगते है देखने के लिए। जिस दिनहा शहर से हम सब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। जी दोस्तों, मैं बताना भी चाहता हूँ कि आज फ्रेडा के फिलन त्यून तक यूनी है, आधा साल से ज़्यादा गुजर चुकी है, कुछ महीने बाकी है, फिर हम चला जाएंगे 2027 में। तो ठीक है दोस्तों, हम सब चून है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, हम आप लोग के लिए चलते हैं कुछ डांस नंबर पे, और डांस का दूसरा नाम है आप सब जानते हैं चुनमुन करो। घर पे अगर आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं, किचन में हो या कॉफ़ी पी रहे हैं या जो भी चीज़ आप घर से कर रहे हैं, गाना सुनिए, चुनमुन कीजिए। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, हर एक जगह पे जहाँ दुख है, प्रॉब्लम है, मातम है, हमारा पूरा टीम आपके दुख में शामिल है। नमस्कार, फाहुन रेडियो से हम आप सबको, आप सबके साथ है, और यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग की सहन शक्ति दे भगवान, सभी कुछ सही निकलिए। जहाँ पे खुशी भी है वहाँ भी हम साथ है, अपना खुशी बच के मनाना, जो भी डाम पे है, काम पे के, नौकरी पे, बच के करना दोस्तों, बस के अपना काम को करना, बचा के करना, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, सभी कुछ बच के करना। आज जुमा भी है, हर एक को, हर एक हमारा मुस्लिम भाई बहन जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं, जुमा मुबारक हो। अगले हफ्ते फ्रेडा से हमारा जुमा का प्रोग्राम चलेगा, एक घंटे का मैं जुमा का प्रोग्राम चलाऊंगा अगले हफ्ते, फ्रेडा से इन तत्व जुमा का प्रोग्राम रहेगा। तब तक के लिए हम चलते हैं कुछ चुनमुन वाली गाना पर चलते हैं। काफ़ी लोग हैं जो मुझे ऐप कर चुका है, मेरा सवाल था ये भी मैं बताना, पूछना ज़रूरी चाहता हूँ एक बार फिर से, अगर आप सही जवाब को जानते हैं, काफ़ी लोग हैं जो सही जवाब को दिया है। मेरा सवाल था, एक चीज़ है जिसमें ढेर सारा सा होल है, फिल फिल खातन, तो भी उसमें पानी रुक जाता है, जहाँ पे ढेर अभी को छन्ना में पानी भर दिए, पानी चुई जाए सब, मई एक ऐसा चीज़ है जिसमें पानी रुक जाए, कौन सी बा सही जवाब है, बहुत ढेर सही जवाब है। अगर आप मुझे ऐप करना चाहता है तब हलफ इन से ऐप खुल जाएगा, आप मुझे अब भी ऐप कर सकते, लेकिन हलफ इन से हमारा ऐप खुलेगा, और मेरा तार का नंबर है 9643 8 0 8 3 3 2। हमारा डायरेक्टर जो है कुमार घेरा, उसे भी हम राम राम कहते हैं, हमारा जितना मेंबर है, जितना पूरा टीम को हम राम राम कहते हैं। और आज हम चलाएंगे कुछ गाने, हमारा टीम के जो लोग हैं कुछ गाने अभी गाते हैं, जैसे भाई बिरबल है उनके गाने हम चलाएंगे, इरविन अब्दुल के गाने हम चलाएंगे, आज मैं खुद अपना गाना कुछ चलाऊंगा, और बॉबी जेकब के गाना हम चलाऊंगा, जिसे जिसका म्यूजिक बजाया है अशोक अयोध्या ने, जो तुनेस्ती का तुच्छनेस रहा, और उससे वो काफ़ी अच्छे कंपोजर है, म्यूजिक को बजाते हैं। और हम आप चले चलते आप लोग के कुछ चुनमुन गाने पे, और प्रोग्राम चलेगा अभी, लोग जो फरमाइशें मांगेगा वो भी पुराना गाना हो सकता है, नया गाना हो सकता है, ये मैं भी बताना ज़रूरी समझता हूँ। तब तक के लिए हम ले चलते चुनमुन चुनमुन, ठल्ले ठल्ले चुनमुन करना, डांस के दूसरा नाम है चुनमुन।

जी हाँ दोस्तों, चिकनी चमेली चुनमुन किया, चुनमुन हुआ इस गाने पे यार, क्या डांस किया है ऋतिक रोशन, संजय दत्त और लोग। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं चिकनी चमेली। हम आपको ले चलते हैं दिलबर।

जी हाँ दोस्तों, नागिन हाथ से नचना। अभी आप सुन रहे थे चकनी चकनी चकनी चमी चकनी चमली के गाने। आप सुन रहे थे डांस डांस डांस नॉन स्टॉप, एक घंटा डांस चलेगा हमारे प्यारे सुनने वाले। और हम चलाते ही दफली वाले कुछ डांस दूसरी अंदाज में हम आपको ले चलते ही। वादा के मुताबिक हम वादा जरूर पूरा करेंगे, नॉन स्टॉप डांस चलेगा।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, बोले मैं नाचू तो चुनमुन करा, ठीक है दफली वाले आप सब चुने दफाहुन फाहुन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे द एफगी लाफ लाफ लाफ। चलो अंत ले चलते हैं नॉन स्टॉप डांस नंबर।
1: आजा

जी हाँ दोस्तों, करीना कपूर ने धमाका चकनी चमली हिल के हिला करके दिखाया है। इस क्लिप में चुनमुन करके दिखाया है, धमाका धमाकेदार गाना है और धमाकेदार डांस है। इससे कहते हैं चुनमुन चुनमुन हलकट जवानी। चलो हम ले चलते अगले गाने की तरफ।

वाह वाह वाह वाह रे गाना, वाह रे डांस, वाह रे क्लिप, जिस क्लिप में जिस बाप रे क्या चुनमुन हुआ यार। ठीक है, आप सब चुने द एफगिन लाफन हिंदुस्तानी रेडियो पे, और घड़ी की तरफ देखा जाए तो हालफ तोलफ हो चुका है और आज फ्राइडा है, फ्राइडा फिर अंतिम तक यूली हो चुका है दोस्तों। सुरीनाम में देखा जाए तसरे छाओ बच चुका है। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और घर पे भी आप चुनमुन कर सकते हैं, बैठे बैठे लेटे लेटे ठल्ले ठल्ले चुनमुन कर सकते हैं दोस्तों।

अरे कहते हैं ससुरी बीरी चरैली चकनी चमली, धमाकेदार गाने हैं और क्या दाम से यार, क्या चुनमुन है। हम काफी ज्यादा वक्त नहीं लेंगे कि तुम चलते, आप जैसा कोई नहीं, न्यू स्टाइल में

जी हाँ, हमारे दोस्तों भी आप सुन रहे थे, आप जैसा कोई नहीं, न्यू न्यू न्यू स्टाइल में आप सुन रहे थे। अभी हम तो चलते हैं आपको द डांस फ्लोर, धमाकेदार गाने हैं और चकनी चमली धमाकेदार है और चुनमुन वाले गाना है, सिर्फ चुनमुन वाला गाना हम चलाते हैं नॉन स्टॉप। अभी आधे घंटा और चलेगा नॉन स्टॉप, उसके बाद हम चलाएंगे डांस और सूरीनाम के डांस, हॉलैंड के जो लोग गाना गाया है, और जोल रहेगा, लॉस्टर म्यूजिक रहेगा, डांस भी रहेगा, एक घंटे का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम चलेगा जो सवाल मैंने किया था कि कौन सा ऐसा चीज है जिसमें ढेर सारे होल है, हिल फिल खत्म मार तो भी उसमें पानी रुक जाता है। एक से दो बजे तक, एक से हाफ दिन तक वो प्रोग्राम चलेगा, उसमें रहेगा हव और अव चलेगा ना, और कुछ पुराने गाने लोग मांगेंगे, जो भी आप मांगेंगे वही हम चलाएंगे, क्योंकि सही जवाब पे सही गाना मांगना आपका काम है। वादे के हम वादा करके नहीं मुड़ेंगे, वादा करके हम खूब जानते हैं वादा निभाने, और हम चलेंगे हव अव में, ले चलते चुनमुन वाला गाना, धमाका चकनी चमली।

जी हाँ दोस्तों, सुन रहे थे अभी आप लोगों, आप लोग किप सुनाते कुछ चुनमुन चुनमुन गाना, चकनी चमली ले चलते शाकी शाकी न्यू सिस्टम में न्यू न्यू में न्यू न्यू न्यू, न्यू।

जी हाँ दोस्तों, ओ साखी साखी, न्यू स्टाइल में, न्यू ढंग में और न्यू कपड़ा दे दिया गया है, क्या अंदाज में गाया है, क्या डांस हुआ इस गाने पे, आप देख सकते हैं क्लिप। ओ साथी साथी, ओ साखी साखी, न्यू स्टाइल में, क्या अंदाज में, क्या ढंग में सब डांस किया है, चुनमुन क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपसे, प्रोग्राम कैसे रहेगा, अभी अभी क्वतफुर तौलब हो चुका है, न्यूज बयान के बाद हम चलेंगे कुछ हॉलैंड का, कुछ सूरीनाम के कलाकारों को लेकर, डांस रहेगा, लस्टर म्यूजिक रहेगा, हर एक चीज रहेगा जो हम सूरीनाम के कलाकार जो हॉलैंड में रहते उस सूरीनाम में रहते। एक घंटा का प्रोग्राम रहेगा, वो भी 12 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से हाफ द्री तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। फरमाइश से हम चलाएंगे जो सही जवाब को दिया है, सही सवाल पे, कौन सा चीज है, एक ऐसा चीज है जिसमें ढेर सारे होल है, हील फील खातन तो भी पानी रुक जाता है। ऐसे देखिए, एक सेफ में छन्ना में पानी रख दिए 1 लीटर, तो पनिए ना रे सब चो यही ना, और इसमें पानी रुक जाता है, कौन सी बा। काफ़ी सही जवाब पाया है और हम ना सोच लो कि हम सब के फरमाइश आज पूरा कर पाएंगे। दिन्स दाह के मंगलवार के पी रहेंगे हम, उनका फरमाइश दिन्स दाह के पूरा करेंगे। और अगली सवाल तैयार हो चुका है, अभी मैं वो सवाल भी पूछूंगा, तब तक के लिए हम चलाते हैं चुनमुन वाले गाना, चकनी चमली धमकेदार गाना।

0: जी हाँ, हमारे प्यारे सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे चिकनी चमली से धमाकेदार गाने। हम आप लोग के लिए चलते हैं इसी, आप चलेंगे हम सब कुछ न्यूज और कुछ रेख लामा की तरफ, कार्य की तरफ देखा जाए। सेस फोर ट्वेल्व हो चुका है दोस्तों, और प्रोग्राम तो मैंने आप लोग को सजा करके बता चुका हूँ आज का प्रोग्राम कैसे रहेगा, आप सब जानते हैं। अब हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे, उसके बाद एक 12 बजे से 1 बजे तक हम चलाएंगे कुछ गाने सुरीनाम और हॉलैंड देश का जो कलाकार ने गाया है, उसमें लवस्टर म्यूजिक रहेगा, कुछ सोल रहेगा, कुछ चटनी रहेगा। और उसके बाद 1 बजे से हाफ देर तक हम चलाएंगे फरमाई से, काफ़ी लोग हैं जो सही जवाब को दिया है। तब तक के लिए हम आप लोग के लिए चलते हैं न्यूज़ और रेखलामा की तरफ।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16 piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht komt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Jee haan, dosto, abhi aap sun rahe the news aur kuch reklame. Hum aap log ke waade ke nuba, jaise maine waada kiya tha, waise main kaam bhi karunga, program ko chalaunga. Dosto, hum chalate hain, kaafi log puch rahe the अपना गाना सुनाओ, एडविन के गाना। ठीक है दोस्तों, हम सुनाएंगे हम लोगों ने जो गाया है सुरीनाम के, हम यहाँ से शुरू करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे गाना है जो हम लोगों ने सुरीनाम के कलाकार ने जो गाया है। हॉलैंड में रहता है और सुरीनाम में जो रहता है। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के चलाते हैं, हम चलते हैं लेकर देखा जाए इन हवाओं में। और चाहे आज मुझे ना पसंद करो, आवाज़ है मेरा, आवाज़ है और एडविन अब्दुल, हम आपको सुनाते हैं। म्यूजिक कंपोजर है अशोक जुदिया, मिलके सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ये है कुछ सुरीनाम कुछ होलैंड का जो कलाकार है, ये अभी हम मेरावास है और इरविन अब्दुल का आवाज़ है। दोस्तों लोग कहते हैं अनिल क्यों नहीं अपना गाना सुनाते, ये मखेंता के है जो लोग, वो मैं जानता हूँ वो कौन है, वो मेरा दोस्त है सुरीनाम में, काफ़ी दोस्ती थी हमसे उसे और काफ़ी दिन मुलाकात नहीं हुआ था। ठीक है दोस्त, आप मखेंता से प्रोग्राम को सुनते, बहुत बहुत धन्यवाद है यारा, प्रोग्राम सुनते हैं, गाने को मांगा है, हम ले चलते हमारा जुरिन भगवान दिन। सुरेन भगवान दिन ने सुनाया, इन सब गाने पर भी आप चुनमुन कर सकते हैं। कमला अब तू ना होगी जवान, जितना कमला है बुरा मत मानना, क्योंकि सुरेन भाई गाने के लिए तैयार है।

जी हाँ हमारे दोस्तों, ये था सुरेन भगवान दीन और यही बलवंत। क्या कहा, क्या गाना गाया कमला, अब तू ना हुई जवान। सच में कहा, अगर जब कमला 75 साल के हो गया तो कैसे जवान होगा फिर यार। सुरेन भाई आप प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, और सुरेन भाई भी हमारा फहों रेडियो का एक बहुत ही बढ़िया अमरूपर है और बहुत ही बढ़िया कलाकार है। क्या आवाज, क्या अंदाज में गाया यार कमला, अब तू ना हुई जवान, वाह वाह वाह। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। देखो, देखा जाए तो मैंने कहा था मैं बॉबी जेकब जो पाकिस्तान के होलैंड में रहता है और क्या बढ़िया गाना को गाया है, हम आप लोग को सुनाते हैं। बॉबी जे के प्रोग्राम को सुनते बॉबी, अस्सलाम वालेकुम, राम राम यार, नमस्कार, सब ठीक ठाक है बॉबी घर पे? ठीक है दोस्त, आपका गाना हम सुनाते हैं लोग के, और हम जानते हैं काफी पसंद करेंगे, काफी अच्छा कलाकार है हमारा भाई बॉबी जे के।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, अभी आप सुन रहे थे बॉबी जैकब से, क्या अंदाज में क्या आवाज में इस गाने को गाया है बॉबी, बहुत बढ़िया गाया। एक बहुत ही बड़ा कलाकार है जो हॉलैंड देश में रहते ही हमारा दोस्त है, हमारा भाई समान है, हम लोगों भाई भाई के नाता है, हम लोगों की दोस्ती बहुत बड़ा है। भाई बॉबी प्रोग्राम को सुनते हैं बहुत बॉबी, ठीक है यार, आपके गाना आपका कला भी मैं और सुनाऊंगा आपके कुछ गाने ही। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं और मत भूल जाना आप सब चुन है प्रकाश से द एफएम लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्राम को सुनते ही हमें फॉलो करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, ऐसे ही हमारा रेडियो को सुनते रहना फाहुन को। चलो हम आपको ले चलते हैं इरविन अब्दुल को ही सागर दिल को, क्या अंदाज में क्या आवाज में इरविन भाई ने इस गाने को गाया है। वो भी हमारा भाई है, हम लोग एक को लिखा है भाई है, जितने लोग के गाना मैं अभी सुनाऊंगा हम सब एक भाई की नाता है, भाई जैसा है। और इसका जो कंपोज किया गया है म्यूजिक वो और कोई नहीं है अशोक अयोध्या है, जो कुछ साल पहले आशनी के साथ तुनस्ती में, ज्वाला के साथ जो तुनस्ती का तुत्स बजाते थे, तुत्सनेस थे, आज वो एक बड़ा कंपोजर हो चुका है। वो भी प्रोग्राम के सुनते हैं, जल्द से जल्द उसे हम स्टूडियो में बुलाएंगे और कुछ बातें करेंगे उससे, आप लोग भी कुछ बातें उससे सुनेंगे। इरविन अब्दुल भी आएगा जल्द से जल्द हमारा स्टूडियो में, हम उससे कुछ सवाल करेंगे, बॉबी भी आएंगे। और इसके बाद हम सुधीर जबीले के तरफ चलेंगे, उसके गाना भी मेरे पास, हर एक को गाना हम आप लोग को सुनाएंगे। अच्छे अच्छे कलाकार है जो सुरीनाम से है, जो हॉलैंड देश में रहते हैं, मिलकर सुनते हैं कोही सागर दिल को इरविन अब्दुल।

जी हाँ हमारे दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा भाई इरविन अब्दुल कावास को ही सागर लहराए, और उसका जो कंपोज किया गया है म्यूजिक वो और कोई नहीं है दोस्तों, अशोक अयोध्या है। काफी अच्छा म्यूजिक को बजाया है, क्या आवाज में गाया है, क्या म्यूजिक को बजाया है, आप सब जानते हैं दोस्तों। भी सुन रहे थे इसे आवाज और म्यूजिक में क्या क्या प्यार है, प्यार भरा म्यूजिक है, दिल में चोट लग जाता है अगर जी म्यूजिक सुनते हैं और आवाज को सुनते हैं तो। क्या वाह भाई इरविन, आप परवान को सुनते हैं, काफी अच्छे गाया है। और हमारा जो म्यूजिक कंपोजर है अशोक अयोध्या भी प्रोग्राम को सुनते हैं, हमारा नाता भाई से बड़ा नाता है और ऐसे हम लोग के रहना चाहिए। कल हम जाएंगे भाई अशोक के पास, हम लोग जाएंगे भाई बीरबल में रहेंगे, कल एक क्लिप बनेगा भाई बीरबल का और काफ़ी अच्छे गाना है, हेमंत दादा का गाना है, काफ़ी गाना अच्छी गाने को गाया है और अच्छा क्लिप कल बनेगा, हम भी उस क्लिप में रहेंगे और कल हम भाई अशोक के साथ रहेंगे, रोटरडम में क्लिप बनेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे, आप सब चुन है द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे, और भूल मत जाना हम चलते हैं, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, सुदेश जबीले का आवाज, इस गाने का कंपोजर है अशोक अयोध्या, हम सब सुनेंगे मिलके, हम जरूर मिलके सुनेंगे क्योंकि क्या अच्छे ढंग स्टाइल में इस गाने को गाया है सुदेश जबीले।

जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये था सुधीर जबीले और म्यूजिक कंपोजर अशोक अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, ये था सुधीर जबीले का आवाज। क्या अंदाज में गाया, क्या डांस पे गाया है यार, उस पे भी आप चुनमुन चुनमुन कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, फिर से चलते सुरिन भगवान दिन के तरफ, फूलों के हार ले ले, डांस चुनमुन चुनमुन।

इसमें हमारा भाई बीरबल खुद ही कहाँ है, ले लो भाई बीरबल का प्यार, अब जो कर प्यार न लिए तो कब लिए, गा करके सुनाया है दोस्तों। काफी अंदाज में गाया है, काफी अच्छी आवाज में गाया है और काफी अच्छा क्लिप ही इसका। जितने गीत हम इस घंटे में बजा रहा हूँ सबका अगर आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और गाने उन सबको, तो जाइए यूट्यूब पे पूरा क्लिप, ढेर सारी क्लिप है, आप सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। एक ऐप आया है फिर से मखेंता का, मुझसे कहा है अनिल एक गाना सुना दे अपना, क्योंकि एक दो गाना मैंने सेहस आत्मा को गाया है और वो सुनना चाहता है। ठीक है भाई मखेंता, उसका नाम रखा गया भाई मखेंता, गाना आ रहा है, मैं सुना रहा हूँ। एक आत्मा का गाना मैंने गाया है और वो काफ़ी अच्छे लगते हैं उसे, हम सुनाते हैं। कहने को बहुत कुछ था, मैंने कहा था कुछ सोल रहेगा, कुछ लवस्टर म्यूजिक रहेगा, एक घंटे का प्रोग्राम है हमारा, तो चलिए भाई मखेंता आपका गाना आ रहा है।

हमारे सुनने वाला, ये गाना जो मखेंता का हमारा दोस्त थे उसने मांग किया था। चलो ठीक है भाई मखेंता, मैंने अपना गाना आपको सुना दिया। दोस्तों वादा के मुताबिक हम चलते ही, और ये जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं इरविन भाई का, इरविन अब्दुल, अनिल सारजू, सुरेन भगवान दीन, बॉबी जैकेप और भाई सुरेश जबीले, और एक गाना मैं अभी चलाऊंगा, ये नाम लिख लेना और यूट्यूब पे ढेर सारे गाने आप सुन सकते हैं। जाइए यूट्यूब पे, हर एक नाम को लिखिए और उसका गाना आ जाते हैं। चलो दोस्तों हम ढेर टाइम नहीं, काफ़ी हम नहीं बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सुदेश हीरा एक गाना को गाया है और कंपोजर है अशोक अयोध्या। हम सुनते हैं अपना बनाया हुआ गाना है जो सुदेश हीरा ने इस गाने को बजाया है, और क्या गाना लिखा है, क्या अंदाज में इस गाने को गाकर सुनाया है, गाकर हमारे आगे लाया है, हमारे कम तक पहुंचाया है। भाई सुदेश हीरा इस प्रोग्राम को सुनते हैं, आप एक बहुत बढ़िया कलाकार है ये मैं बताना चाहता हूँ आपसे। जहाँ भी हमारा फाहून रेडियो का आपका सलाम पहुँचे, दुआ पहुँचे और हर एक चीज़ पहुँचे जो आप हम लोग के साथ बांटते हैं। ऐसे ही हमारा प्रोग्राम सुनना, आपका गाना को हम लोगों तक सुनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और सुदेश हीरा क्या अंदाज में इस गाने को गाया है, मिलके हम सुनेंगे, मिलके हम सुनाएंगे, जहां तक ये आवाज़ पहुंचे, जहां तक हमारा ये गाना पहुंचे रेडियो फाहून का, वहां तक आप लग इस गाने को सुनिए और यूट्यूब पे जाइए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्लिप बना के रखा है। आप है तो हम है, हम है तो आप है। अभी हमारा प्रोग्राम चलेगा 1 बजे से हल्दी तक, सिर्फ फरमाइश ही फरमाइश, सही जवाब, सही जवाब, सवाल पे सही जवाब काफ़ी ज़्यादा है, हर एक सही जवाब को दिया है, कोई गलत जवाब नहीं दिया है आज। चलो हम सुनाते हैं सुदेश हीरा।

जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे से आजा हमार गोरिया। अभी आप सुनते सुदेश हीरा की आवाज, कंपोज किया गया है अशोक अयोध्या ने, जो इस गाने को बजाया है। ये एक म्यूजिक है, एक टेक्स है सुदेश हीरा का, और म्यूजिक है अशोक अयोध्या। चलो दोस्तों, हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं एक बार फिर से बॉबी जैकब को। हम सुनाते हैं क्या आवाज में, क्या अंदाज में इस गाने को ये गाया है। रोज रोज आंखें, रोज रोज देखो बॉबी, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, मैं सच में दिल से कहता हूँ, अंदाज में गाया, क्या आवाज में गाया है। हम सब सुनाएंगे, हम सब मिलकर सुनेंगे। आज एक घंटे का प्रोग्राम था हमारे सुरीनाम और कुछ पाकिस्तान के, और जो इस देश में रहता है बॉबी भाई जैसा है, भाई से बड़ा हमारा दोस्त है, हमदर्द है जी, हमारा दोस्त है दोस्तों। हम मिलकर सुनते हैं बॉबी की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, इसका जो म्यूजिक बजाया है इरफान जबीर और अशोक अयोध्या ने, अभी आप सुने थे बॉबी जैकब। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, वक्त कम है, घंटा हो बैना हो रहा है घंटा, हम आप लोग चलते ही इरविन अब्दुल के लेकर, उसका वास लेकर और कंपोज किया गया है अशोक अयोध्या ने और खितार खुद ही इरविन ने बजाया है। हम सब आपके सुनाते हैं

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सुनने वालों अभी आप सुन रहे थे इरविन अब्दुल का आवाज और कंपोज किया गया है अशोक अयोध्या से। ठीक है दोस्तों, वक्त नहीं, एक गाना हम और चलाएंगे, उसके बाद चलेंगे न्यूज और रेखलामा की तरफ। और सुदेश जबीले गाने के लिए तैयार है, मैंने पूछा चांद से।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ न्यूज़ था और कुछ रेखलाम। चलो दोस्तों, हम आप लोग के ले चलते हैं जैसे हमने वादा किया था कि एक बजे से इन ऊपर इन हो चुका है। एक बजे से हल्फ देर तक हम प्रोग्राम को चलाएंगे जो सही जवाब को दिया है। मेरा सवाल था, ऐसा एक चीज हैगा दुनिया में, हमें घर घर में है ये चीज, घर घर में वो चीज है कि इतना ढेर हो ले हील फील खतन मर तो भी पानी पकड़ लेता है, उसमें पानी बच जाता है। अब एगो सेफ लिए छन्ना लिए उसमें पानी रखिए 5 लीटर तो डायरेक्ट चुह जाई बाहरे। मैं एगो चीज बा जो उनमें से पानी ना चुहे बाकी बहुत ढेर होल बा। काफ़ी लोग है जो सही जवाब को दिया है उन और सही गाने को मांगा है। ये प्रोग्राम हैगा हव अव ऑल दिस गॉड, इसमें काफ़ी लोग जो पुराने गाने को मांगते ही और मांग किया है भी। हम चलते हैं पहला फरमाइश, हम ले चलते हैं सही जवाब को। जो सही जवाब दिया है वो है रॉय मंगली, जो प्रोग्राम को सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, हमारा कलाकार भी, हमारे कारो को ग्रुप के एक बहुत अच्छा कलाकार है, और उसने सही जवाब को दिया है और खव अवो मांग किया है। मांग किया है फिर वो दिल लाए हो, नेकंती द्रियन सेस्तक के गाना है, जोहर जोहर मुखर्जी और आशा परेख ने इस गाने को एक किया है। देखा जाए तो खव अव है ना, इसलिए हम आप लोग के ले चलते हैं रॉय मंगली, इस गाने को मांग किया है और उसका फरमाइश हम आप तक पहुंचाते हैं रॉय।

0: दिल लाया।
1: जी हाँ दोस्तों, फिर वही दिल लाया हूँ। जौहर मुखर्जी और आशा परेख ने इस गाने को फिल्म में लाया है, डांस किया है और इस गाने को एक किया है। जी हाँ दोस्तों, ये था रॉय मंगली जो सही जवाब को दिया था। और रॉय मंगली हमेशा इस प्रोग्राम को सुनते हैं, फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते हैं, काफ़ी पसंद भी करते हैं। रॉय बहुत बहुत धन्यवाद हो यार कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद करते हैं और सदा सही जवाब को दिया है। ठीक है दोस्तों, हम प्रोग्राम ले चलते हैं आगे। चांदनी रात, ये नूर जहां ने इस गाने को गाया है और सही जवाब में भाई अंद्रे मिस्टर अंद्रे जो प्रोग्राम को हमेशा सुनते हैं, सही जवाब को देते हैं और हमेशा कुछ ऐसे पुराने गाने मांगते हैं। अच्छा, इतने अच्छे सा गाना मांगते हैं भाई अंद्रे, आप प्रोग्राम को सुनते हैं हमेशा की तरह, आज भी आप सुनते हैं और काफ़ी अच्छे गाना को मांगा है। नूर जहां ने इस गाने को गाया है और भाई मिस्टर अंद्रे आपके नाम, ये भी काफ़ी अच्छा कलाकार है, हमारे साथ गाने को गाते हैं और क्या ढंग में गाते, अंदाज में गाते हैं भाई अंद्रे। और आप टिकटॉक पे देख सकते हैं मिस्टर अंद्रे को, क्या क्या चुनमुन करके गाना गाते, डांस करके गाना गाते हैं, इसका जो स्टाइल है गाना गाने के बहुत अच्छे है यार। ठीक है, आपके नाम हम इस गाने को करते हैं क्योंकि आपने भी सही जवाब को दिया है। स्पॉन्स आएगा जो ढेर सारे होल है और पानी रोक लेते हैं, वो है स्पॉन्स। भाई ने सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांगा है नूर जहां।

जी हाँ प्यारे दोस्तों, नूर जहां की आवाज अभी आप सुन रहे थे अंदाज में भाई अंधरी, मिस्टर अंधरी। इस गाने को मांग किया है, सही जवाब को दिया था, बोले स्पॉन्स यार हर एक के घर में है स्पॉन्स है, स्पॉन्स में पानी इतना डेढ़ होल है लेकिन पानी रुक जाते हैं। सही जवाब को दिया भाई अंधरी, बड़ा भाई बड़का भैया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को सुनते हैं हम लोग एतवार के मिलेंगे, हमारा कारो को सोमदाग के होता है इलम पास्त्रा पे। इन इज वेलकम इलम पास्त्रा हेसबेक प्ले नंबर 5/5 तक पे आप आ सकते हैं, जहाँ पे निफू पे कारो का होते हैं, जिसे गाने हैं जो गाना गाते हैं या

तरफ जहां से शांता सरजू भी प्रोग्राम को सुनते, हमारा बहन है और बहुत पसंद करते हैं प्रोग्राम को, काफी अच्छे लगते हैं, हर शुक्रवार मंगलवार को ये प्रोग्राम को सुनते हैं और सिर्फ सुख और सैंचर नहीं सुनते हैं, वो रेडियो फाहन को बहुत लाइक करते हैं, स्टाइल में बोलते बहुत स्टाइल में ही अच्छा अच्छा प्रोग्राम हम लोग करते हैं, ऐसे ही आप लोग सुनते रहना, अगर आप है तो हम हैं, हम हैं तो आप है, और सही जवाब को दिया है उसमें लिखा है स्पंज से अनिल, ठीक है बहन जी दीदी, ठीक है आपने सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांग किया है, देखा जाए हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, सॉन्ग्स यही है और मूवी भी है एक मुट्ठी आसमान, सिंगर है किशोर कुमार, म्यूजिक मदन मोहन और जो हाथ और कलम चलाया गया है सिहाइश लिखा गया है इंदिवर है, चलो हमसे मिलकर सुनते हैं सही जवाब पे सही सवाल पे सही जवाब को दिया है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे फरमाइश। फर्स्ट कोटन की तरफ चला गया था, जहाँ पे शांता सार जो प्रोग्राम को सुनते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो को। जी हाँ दोस्तों, वक्त वक्त वक्त ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो सही जवाब को दिया है और गाने को मांग किया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नई मेका की तरफ, जहाँ पे क्रिस भाई, क्रिस सार जो प्रोग्राम को सुनते हैं, भौजी भी है और पूरा लाइक करते हैं प्रोग्राम को। मैंने सही कहा ना भाई, नई मेका? ठीक है, और सही जवाब को दिया है स्पॉन्स और मांग किया है, दिल तुझे दिया था रखने को, वो है मूवी मनहर के निकाला हुआ गाना है। और इस वक्त हम यही गाना सुनाने वाले थे आप लोग की, क्योंकि हमारा भाई इस गाने को मांग किया है। ठीक है, सही जवाब और सही गाने को मांग किया है। मैंने कहा था खव अव, पुराने गाने ढेर चलेंगे इस वक्त, हम जानते हैं सही जवाब पे लोग ढेर सारे पुराने गानों को यूज करते हैं, मांगते हैं। ठीक है भाई क्रिस, आपके कानों तक हम पहुंचाते, घर तक पहुंचाते इस गाने को, मिल के सुनते हैं। दविंदर पूरन की आवाज में

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, दिल तुझे दिया था रखने को, फिल्म मनहर से निकाला हुआ गाना है और हमारा बड़ा भाई है क्रिश सर जो नई मेकर से प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया था और मांग किया था दिल तुझे दिया था रखने को। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को सुनते, धन्यवाद कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते, हमारा भौजी भी प्रोग्राम को सुनते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं और सही जवाब को दिया था स्पॉन्स, इसलिए जो सही जवाब देगा हक बनते एक गाना को मांगने के लिए। अगले सवाल तैयार हो चुका है दोस्तों, आप लोग ऐप कर सकते हैं, मंगलवार से आप सब ऐप कर सकते हैं। सही जवाब एक सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, जो भी सही जवाब देगा गाने को यूज कर सकते हैं, मांग सकते हैं, यही प्रोग्राम है मेरा। मुझ से इस सवाल के सुनिए, ध्यान से सुनिए, कान लगाए के सुनिए, तब इस सवाल के अंतर दे सके है। गटाई है मुड़ी ना है, हाथ है अमली ना है, कौन सी बा? एक ऐसा चीज है जिसके गटाई बा बाकी मुड़ी ना है, हाथ है अमली ना बा, एक अंतर दे हमें ऐप कर सके हैगा, ऐप कर सके है, हम आप ऐप देख सके, लेकिन देंस दाग से ऐप कर सके है, ध्यान से ऐप कर सके, क्योंकि देंस दाग के इसका फरमाइश हम चलाएंगे, जो इस जो ई जवाब था कि कितना होल है पानी, वन इतना तेम नहीं बहुत ज़्यादा है, मैंने सबकी फरमाइश तो हम ना सुनाई पावे क्योंकि तीन बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा, हालत देर तक हम फरमाइश सुनाएंगे, आधे घंटे हम कुछ गाने सुनाएंगे अपनी तरफ से और मंगर के हम देशदा के हम आगे इस सवाल के फरमाइश हम पूरा करेंगे और चलते हैं दोस्तों, हम आगे चलते हैं तो देखते हैं जर्मनी से ममता सारजू भी प्रोग्राम को सुनते हैं, दुसलदोर्फ से नॉइस से प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग किया है बंहों के दरमियान आल का यग्नि, इस गाने को गाया है और देखा जाए हरी हरन के साथ इस गाने को गाया है। चलो ममता के फरमाइश और कहते हैं स्पॉन्स स्पॉन्स, ठीक है सही जवाब है ममता, प्रोग्राम को सुनते हैं एकदम जर्मनी से दूसरा दारो पर नॉइस से सुनते हैं प्रोग्राम को, बाहों के दरमियान आपके नाम हम करते हैं।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, बहू की दरमियान चला गया था जर्मन की तरफ, जहाँ से ममता सारजी प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, हर हफ्ते प्रोग्राम को सुनते हैं। ऐसे सुनते रहना ममता, और ऐसे आप लोग के अच्छे लगते हैं हर एक जो प्रोग्राम को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हो आप लोग प्रोग्राम को सुनते, फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के आप लोग सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे। देखा जाए तो रुदी सारजू जो और भाऊजी हमारा बड़ा भाई है, लेडीज़ से प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग किया है, दिल जो भी कहेगा मांगेगा। मुकेश का आवाज में हम आप लोग को सुनाते हैं, दिल दिल ही तो है, राजकुमार जिसमें काम किया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही एक बार कहते हैं भाई कैसे, राम राम यार, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, लेडीज़ से तुमसे प्रोग्राम को सुनते हैं, और कहते ही बहुत अच्छा है अनिल, प्रोग्राम सुनने में बहुत मजा लेते हैं, ऐसे ही मजा लेना। और सही जवाब को दिया है स्पॉन्स है, दिल जो भी कहेगा मांगेगी दुनिया में, हमारा मुकेश का आवाज है। और चला जाते हैं लेडीज तरफ, लेडीज तात की तरफ।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, दिल जो भी कहेगा मांगेगी दुनिया में हमारा। ये मुकेश की आवाज थे दोस्तों, और चला गया था लीलिस्तार की तरफ, जहाँ से रिधि सार जो हमारा बड़ा भाई है और बड़ा भौजी जो प्रोग्राम को पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं, और सही जवाब को दिया है कहते हैं स्पॉन से, और सही जवाब पे सही गाने को मांगा है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोग्राम को सुनते ऐसे सुनते रहना, अगले सवाल को तैयार हो जाइए। जे जे मोई अंतवरदे सही जवाब को देगा, जो इस सवाल के हल देगा आपको हक बनते गाना मांगने के लिए। बोले गटाई बा मूड़ी ना बा, हाथ है अमूरी ना बा, कुंची बा। ठीक है, ठीक बात दोस्तों। हम चला जाते हैं एक बार विन से फोर्स कोउतन के तरफ से, जहाँ पे रेमन कोहाबीर भी प्रोग्राम को सुनते ही और मांग किया सही जवाब को दिया है, और मांग किया है कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना।

जी हाँ दोस्तों, कभी किसी की खुशियाँ को ही लूटे ना जिंदगी और ख्वाब मूवी। ठीक है दोस्तों, ये चला गया था फोर्स कोतन, जहाँ से रीमन को हबीर प्रोग्राम को सुनते ही और इस गाने को मांग किया था, सही जवाब को दिया था, कहते स्पून से। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ। हमारा भाई जो क्रिस सार्जू प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, कहते हैं एक बार मेरे लिए इस गाने को फिर से बजा देना, दिल तुझे दिया था रखने को हक बनते हैं, हम ज़रूर सुनाएंगे। एक गाने के बाद हम इस गाने को फिर से दोहराएंगे स्पेशल फॉर भौजी और क्रिस भाई के लिए। ठीक है भाई, एक गाने के बाद हम आपका फरमाइश जरूर सुनाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं सुरीनाम की तरफ, जहां से काशीराम इस प्रोग्राम को सुनते हैं। वेलका दख से इस्त्रात से प्रोग्राम को सुनते, सही जवाब को दिया है और मांग भी किया है। बहुत बहुत अच्छी गाना गाए, बहुत अच्छे गीत को मांगा है। फिल्म मोहब्बत के कहते ही जेह जोनवाल अनिल एगो सुना दे, और आप जानते हैं वो अपना वहाँ पे बार कटा सकते, बार को बना सकते हैं, एक जो भी कलर चाहते हैं वहाँ पे आप करवा सकते हैं। गीता कसीराम सही जवाब को दिया है, स्पॉन्स सुरीनाम वेलखदाख सही से प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, हमने इस गीत को रख दिया है मफरो कसीराम से, उस कहते हैं आपके गाने मैंने रख दिया है, मिल के सुनते हैं। आपने कहा जो भी गाना आप हमें चाहता रखे कथिन, बोले जो तू मांगे रख देनी, लेकिन मूवी मोहब्बत की

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, हमको हमको हमी से चुरा लो। मूवी मोहब्बतें, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय इस फिल्म में काम किया, लता मंगेशकर उदित नारायण का आवाज थे। जी हाँ दोस्तों, हम ये था कासीराम सुरीनाम से, गीता कासीराम जो वेलखादाग से ही में रहता है और बाल के कारोबार करते हैं, पेडिक्योर है, बार बनाते हैं, बार को काटते हैं और हर एक कलर में कर देते हैं। जहां सही जवाब को दिया था मफरो कासीराम, आपका नाम इस गाना मैंने कर दिया था, हमको तुम्हीं से चुरा लिया। ठीक है, हम चलते हैं प्रोग्राम में, ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना कासीराम, और पसंद भी करते हैं ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना। हम चलते हैं हमारा भाई क्रिस सार्जू जो इस गाने को मांग किया है, एक बार फिर से सुनना चाहते हैं, क्योंकि भौजी भी है, ये सब मिल के इस सही जवाब को दिया है और हाथ बनते हैं, दो जने हैं, दो गाने को मांगा है और दोनों बार दिल तुझे दिया था रखने को। ठीक है भाई क्रिस, हम आपके नाम करते हैं दिल तुझे दिया था रखने को। मूवी मनहर से निकाला हुआ गाना है, मुकेश की, मुकेश ने इस गाने को गाया है, लेकिन अब हम सुनाते आप लोग के देवेंद्र पूरन की आवाज़, जो अमेरिका में रहते हैं उसके आवाज़ में हम आप लोग को सुनाते हैं।

0: 22, 23 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Ja, ja, dat is op je nieuws of reclame uitgangsagenda bhi hai. Raymond met full band. Theek hai dosto, hum chalte hai program ko leke chalte hai. Aap jante hai program chalenge jaise program ko banaya gaya hai. Jaise program hai, waise hum program ko chalate hai. Ja, dosto, Sunita बुदाई भी प्रोग्राम को सुनते हैं और हर हफ्ते पसंद भी करते हैं और सही जवाब को दिया है. कहते हैं स्पॉन्स से अनिल दुई दफे लिखी स्पॉन्स हम भाई ठीक है तो दुई गाना ना पाइए एक गाना पाइए. सुनीता प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग भी किया है एक बहुत बहुत अच्छा गाना गाए मांगी से कुमार शानू गाय से बरसात के मौसम में तन्हाई की आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया. सही जवाब पे सही गाने को मांग किया है. सुनीता नंदा आपके गाना आ रहा है बुधाई आपके घर तक आपके दरवाजे तक. देखिए बेगी ने बसोरक करी अनबेल हुई देखिए अब अनबेल हुई तो घर देखिए

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, कुमार शानू और रूप कुमार राठौर की आवाज अभी आप सुन रहे थे। और मांग किया था सुनीता बुधाई ने, जो देनाक शहर सैद पारक के है, सैद पारक लेकर रहते हैं, और सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांगा है, मांग किया है। ठीक है सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम को सुनते हैं और ऐसे ही सुनते रहना हमारा एफ़ग्रिल्ला हिंदुस्तानी रेडियो के चून है, और आप सब सुनते हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम चलते हैं एक बार फिर से शीला सारजू जो प्रोग्राम को सुनते वो भी इतरेक से है और सही जवाब को दिया है और मांग किया है, रात निकली हुई बात बिखरी हुई मूवी हम हिंदुस्तानी रसील हुआ है, ये फिल्म निकला है दिखा जाए, ओ ये गाने निकचाए टेम पे, और सुनील दत्त इस फिल्म में काम किया है। लीजिए आपके नाम सही जवाब को दिया था स्पॉन्स स्पॉन्स, सब कोई तो सही जवाब दे चाहे कोई ना कि ना क्लब हो चा सबके अंतर क्लब भैल है। और एक बात फिर से हम पूछ लो कि आप लोग ऐप कर सकते हैं, अगर आप सही जवाब को जानते तो मुझे ऐप कीजिए, मेरा तार का नंबर है 9 10 4 3 8 0 8 3 3 2। और सवाल ये है, गटाई बा मूरी ना है, हाथ है अमूरी ना है, कौन सी बा? सही जवाब दिए तो सही गाने को मांग सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं फिर से एक बार लेडीज साथ।

जी हाँ दोस्तों, रात निकली हुई बात बिखरी हुई। अब आप सुने थे मुकेश की आवाज़ और गाने को मांग किया था शीला भौजी ने, जो लिलिस्तात में रहते और सही जवाब को दिया था और सही गाने को मांगा है। बहुत बहुत शुक्रिया भौजी के प्रोग्राम को सुनते ही, और भाई पसंद भी किया है कि क्या अच्छा प्रोग्राम है। आप जानते हैं चुन भी है और ब्रॉडकास्ट हो रहा है द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से दिनहा शहर से हम लोग करते ही। अगर आप लोग के जो भी करवाना है या एक फरमाइश दिवाना है या समझते एक भजन बजवा लेते एक रोज कि एक भजन हम आकर बजा दे या और भतवान के कुछ गाने बजाना है, मोती का खबर हो, जो भी है आप कॉल कीजिए हम लोग के 0 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
चैनल ज़ीफ़ ज़ीफ़ सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 9 बजे सुबह से 5 बजे तक हमारा कंट्रोल खुला है, स्टूडियो का दरवाजा भी खुला है, आप कॉल कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, बढ़ते हैं। देखा जाए तो ब्रेदा से हमारा बहन बिश्ना दीदी प्रोग्राम को सुनते और जोनो भी प्रोग्राम को सुनते ही सही जवाब को दिया है और मांग किया है, मुझे ऐसा मिला मोती पिघलाते आसमान मूवी शशि कपूर राखी ने इसमें काम किया, लता मंगेशकर की आवाज है। सुनने वालों चलो हम ले चलते हैं ब्रेदा की तरफ, जहां से बिश्ना दीदी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को भी दिया है।

जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा मिला मोती पिघलाता आसमान, शशि कपूर, राखी और लता मंगेशकर की आवाज़, और चला गया था बरीदा की तरफ, जहाँ हमारा बहन बिस्ना और सोनो सौगरी प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, सही जवाब को दिया है और सही जवाब पे सही गाने को मांग किया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। ऐसा है लोग जो नाम नहीं देना चाहते हैं, सही जवाब को दिया लेकिन अनोनिम रहना चाहते हैं, ये भी ठीक है। अनोनिम के खातिर हम गाने को चलाते हैं और बहुत अच्छा गाना मांग किया है और कहते हैं ये फिल्म माई लव के गाना है और जिक्र होता है जब कयामत का। क्या गाना है? मुकेश का गाना है, मुकेश की आवाज़ है और मूवी My love, my love.

जी हाँ दोस्तों, जिक्र होता है जब कयामत का मूवी माई लव और चला गया था। अनोनिम है दोस्तों, ये भी मुमकिन है अनोनिम भी गाने को मांग सकते हैं और चला गया है अनोनिम के नाम। ठीक है दोस्तों, देखा जाए सुरीनाम तितली फोक कनाल से रीता गौरी भी प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और सही सही जवाब को दिया है और मांग किया है फिल्म देखा जाए रोटी कपड़ा और मकान के सीना तमन ने और मनोज कुमार ने काम किया है और देखा जाए लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। हम आप लोग को सुनाते हैं मिल के सुनेंगे यार, मिल के सुनेंगे सही जवाब दिया था, कहते हैं स्पॉन्स से, स्पॉन्स से। ठीक है मिल के सुनेंगे और मत भूलना हम सब चून है द एफरग्रीन लव द लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे हम सब चून है दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, हाय हाय, ये मजबूरी मूवी रोटी कपड़ा मकान और जीना तमन ने इसमें काम किया। मनोज कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ थे। सही जवाब को दिया था तितली फूकना से रीता गौरी ने, सही जवाब को दिया स्पॉन्स और सही गाने को मांग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रीता, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, ऐसे ही सुनते रहना। ठीक है, हम चलते हैं मारे तहत फिर से जहां से मिला सार्जवी प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद कहते हैं। सही जवाब को दिया है स्पॉन्स और मांग किया है, हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे। मेरा बहन है, बड़ा बहन है, दीदी मिला मौसी मिला तो मेरा बहन है, वो भी सार जो है हमारा दादा का बेटी है और मारित्र तो फिर में रहता है और मांग किया है इस गाने को। बहुत बहुत धन्यवाद हो दीदी कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। आपके नाम इस गाने में करता हूँ।

जी हाँ दोस्तों, हमारी तरह तो फिर से मिला सारजू पर गांव को सुनते ही सही जवाब को दिया था और मांग किया था, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। ठीक है, हर एक को हम धन्यवाद कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं प्रोग्राम को सुनते हैं। मैंने कहा था कि हालफ देर तक हम चलाएंगे फरमाइश से, एक आखिरी फरमाइश हम चलाएंगे क्योंकि मैंने तुझे भूल गया था, वो सही जवाब को दिया था सवित्री भोला सिंह जिसे हम दीदी कहते हैं और हमारे साथ करोक में गाना गाते हैं। वो मांग किया था दफली वाले दफली बजा और सही जवाब को दिया था। दीदी हम तो कहना भूल गए, बड़ी सवित्री दीदी हम आपके गाने जरूर आपके तक पहुंचाएंगे। चलो हम आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर, पद्मश्री, मोहम्मद रफी, शशि कपूर, जया प्रदा ने इस पे काम किया है सरगम। चलो देखते हैं नईखन तीन, नईखन से ईफन तक में ई फिल्म बनल हैगा, ई फिल्म बनल है मूवी सरगम। ठीक है, हम चलाते हैं सवित्री भोला सिंह के नाम जो सही जवाब को दिया था स्पॉन्स।

जी हाँ दोस्तों, दफली वाले, दफली वजह सवित्री भोला सिंह के नाम चला गया। सही जवाब को दिया है तनहक शहर से। प्रोग्राम को सुनते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं, कहते अनिल भाई ये गाना लिखी से कि गाना हम आकर बजा दिया, और सही जवाब को दिया था सवित्री दीदी, सवित्री दीदी गाना आपके नाम चला गया है। और प्रोग्राम यहाँ से मैंने कहा था हालत दरीक्षा बैना 24 देरी हो चुका है, घर की तरफ अगर देखेंगे तो 24 देरी हो चुका है। काफ़ी फरमाइश है, अभी देखा जाए तो कमला है, काफ़ी लोग है जिसका फरमाइश से हम पूरा करेंगे देंसदाह के मंगलवार के। सभी को फरमाइश जो बचा है हम ज़रूर पूरा करेंगे। चलो दोस्तों, मैंने सवाल एक नया सवाल को पूछा था, एक बार मैं फिर से सवाल को पूछता हूँ कि गटाईबा मुड़ी ना बा, गटाई बा मुड़ी ना बा, हाथ है अमरी ना बा, कौन ची बा जी बताई जे हम ऐप करेगा। हमार ऐप का नंबर है 9 3 8 0 8 3 3 3। और जो भी आपको करवाना चाहते हैं या एक रेखलामा करवाना चाहते हैं या सोचते को फरमाइश मांगी लो, एक फरमाइश भी मौक रखाई को फरमाइश मंगे बजवावे मंगर के हम रही लो ओ पे टेलीफोन पे। अरे तार आ रहा था हम रेडियो पर, रही लो सवेर 8 बजे से 9 बजे तक। अगर आप सोचते हैं एक भजन बजवाई बे अपन नाम पे या सबके लिए, वो भी मौक रखे एक भजन अभी आप बजवा सकते हैं। कॉल कीजिए, तार कीजिए, सब कुछ मौक रखे फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, हर एक के मौका मिलते हैं और सब कुछ आप करवा सकते हैं। भतवान है या जन्मदिन है या मौत खबर है, मातम है, आप भी कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 9 0 3 0 0 0। एक बार मैं फिर से आपसे कहते हैं 9 0 3 0 0 0। और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुलल है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। तब तक के लिए हम चलते हैं, 2-3 गाने और हम आप लोग को सुनाएंगे। हम अपनी तरफ से कुछ गाने आप लोग को सुनाना चाहते हैं, वो भी खव अव है ऑल्ट इस गोल्ट, अखीर ऑल्ट गाना चल रहा है पुराने गाने, तो हम पुराने गाने से ख़त्म भी करेंगे आज का प्रोग्राम। काफ़ी लोग थे हमारा आज रेडियो पे और काफ़ी लोग जो रेडियो को सुना है, पसंद किया है, अभी काफ़ी लोग है जो मंगलवार के हम सभी के फरमाइश पूरा करेंगे। सभी को हम धन्यवाद कहते हैं, सभी को धन्यवाद कहते हैं ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना। हम 20 मिनट और रहेंगे आपके साथ, फिर रहेंगे अलविदा कहेंगे। मंगलवार तक मुझे ज़रूर इजाज़त दीजिए क्योंकि मुझे भी आने और जाने के लिए कुछ वक्त भी लेते हैं, टाइम हो गया। हमारा प्रोग्राम यहीं तक था, 3 बजे तक हम आपके साथ है, आप हमारे साथ है। हम आप लोग के लिए चलते हैं तौबा ये मतवाली चाल सॉन्ग्स मुकेश, आप लोग मिलकर सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, तौबा ये हिम्मत वाली चाल, द मिलियंस ऑफ अर्थ, मुकेश की आवाज़ से भी आप सुन रहे थे करोड़ों का दिल जीतने वाला। ठीक है दोस्तों, एक आखिरी नगमा हम चलाएंगे, उसके बाद न्यूज़ और कुछ रिक्लामों की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम आप लोग से ज़रूर विदाई लेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोग के लिए चलता हूँ, तूने पुकारा और मैं चला आए, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, और इस फिल्म में काम किया है शमी कपूर, साधना राजकुमार ने। देखा जाए मूवी राजकुमार ने कहीं फिर शस्तक, तूने बुलाया और मैं चला आया, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी सुल्तान कल्याणपुरी की आवाज़, और देखा जाए म्यूजिक जो सजा करके बजाया गए शंकर जय किशन, लायरिक्स जो कलम हाथ और सिहाई से चलाया गया है वो और कोई नहीं हसत जयपुरी, इस पे काम किया शमी कपूर, साधना प्राण ओम प्रकाश। ये एक आखिरी गाना हम आप लोग को सुनाते हैं, और यहाँ से न्यूज़, इसके बाद न्यूज़ और कुछ रिक्लाम होंगी, तब हम अपना विदाई लेंगे। तब तक के लिए इस गाने को हम सुनते हैं।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ हमारे दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ न्यूज़ और कुछ रेखलाम। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था हमारा तुम्हारा साथ 3 बजे तक रहेगा, 24 देरी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ फैन वीकेंड इधरिन, जो भी हमारा प्रोग्राम हमको सुना है, हर एक को फैन वीकेंड, वीकेंड में बचा के रहना, अपने आप को संभाल के रखना, बच के रहना, हर एक चीज़ से बच के रहना, हर एक दुख से बच के रहना, और जहाँ भी दुख है जहाँ पे हम सब आपके साथ है। नमस्ते लतीम फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के हम आप लोग का कहते हैं शुभ वीकेंड। एक बहुत बढ़िया वीकेंड है और मेरा प्रोग्राम ध्यान ख़त्म हो चुका है और मेरा हिस्से का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और मंगलवार के हम रहेंगे। काफ़ी लोग के जो फरमाइश अभी मुझे चलाना है, ढेर लोग के टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम नहीं है। 4 घंटे का प्रोग्राम थे और मेरे पास वही थे 4 घंटा। मंगलवार के आप लोग के फरमाइश से पूरा करेंगे। ये भी मैं आप लोग के बता देना चाहता हूँ, जो भी सवाल पे जवाब जानते हैं मुझे ऐप कर सकते हैं। मेरी ऐप का नंबर है 9 0 4 3 8 0 8 3 3 2। बोले गटाई है मूड़ी ना है, हाथ है अमली ना है, जे एकर अंतर जाने हम में ऐप कर सके भाई निश्चित हम सजा करके प्रोग्राम को बना करके मंगलवार के आप लोग के पेश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, राम राम नमस्कार और अदाए बरसो, फिर मिलेंगे मंगलवार को।

अभी आपने सुने हैं कि मोहब्बत क्या होता है। मोहब्बत इबादत, मोहब्बत है पूजा, मोहब्बत से बढ़ के नहीं धर्म दूजा। सुनने वालों, कल हमने एक प्रोग्राम देखा है टीवी पर, शायद आप लोगों भी ने देखे हुए होंगे। और कभी कभी तो उस प्रोग्राम में ऐसा चीज़ होता है कि दिल छू जाता है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी भीगी पल के, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। और ये गीत जो है वो आखिरी गीत था राज बब्बर और स्मिता पटेल जी का एक साथ में। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी भीगी पलके। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये गीत एक आखिरी गीत यानी एक अंतिम गीत था स्मिता पटेल और राज बब्बर का, और ये गीत भी मेरे दिल के बहुत करीब है। निकाह है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बीते हुए लम्हों की कसक।
1: भी अलविदा मत कहो।

बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी निकाह से हमने ये गीत पेश किए हैं। मोहब्बत इबादत अभी आपने सुने हैं और एक फिल्म का नाम है मोहब्बत के दुश्मन। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ जानू मेरी जान भी तू है।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मोहब्बत के दुश्मन से, मोहब्बत इबादत यानी ओ जानो मेरी जान भी तू है, जान तो क्या ईमान भी तू है। पले खान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत के बदले मैं आ गई। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों वारिस, जी हाँ वारिस एफएम क्राम, लता जी के साथ में सुरेश वड़कर जी आपको सुनाने वाले हैं घटा छा गई है।

फ्रॉम द मूवी वारिस से हमने पेश की है सुनने वालों लता जी के साथ में सुरेश वाडकर जी आपको सुनाने वाले थे घटा छा गई है बहार आ गई है ऐ हवा मेरे संग संग चलो। फ्रॉम द मूवी बाबू से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते

हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई है हलचल। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे,

छोड़ो भैया नखरा करो प्यार हमसे, आया है मौसम मस्ती का झूम के अभी। चलिए एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। नहीं नहीं, मैंने गलत कहा सुनने वालों, एक खास व्यक्ति के वास्ते जिनकर कल 45वां जन्मदिन जो है, तो सभी परिवार खुश होकर के उनके लिए ये गीत को मांग किए है। और वो यानी वो खुश नसीब कौन है, वो कोई और नहीं, मेरा भाई है। और प्रदीप नाथू का जबकि कल 45वां जन्मदिन जो है, तो धर्म पत्नी जो होते हैं अंशला भुलाई नाथू, अपने प्यारा प्यारा पति, दो बच्चे अलीशा और प्रियांशु अपने प्यारा प्यारा पिता के वास्ते ये गीत को मांग किए हैं। और सभी परिवार घेराव, सभी परिवार नाथू के तरफ से प्रदीप घेर यानी प्रदीप नाथू को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद अभी से पेश किया जाता है।

0: स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार भी आप सुन रहे थे और ये गीत हमने पेश किया है प्रदीप नाथू जी के वास्ते जिनकर कल 45वां जन्मदिन है। तो उनकी पत्नी जो है अंशला भुलाई नाथू, दो बच्चे अलीशा और प्रियांशु के तरफ से अपना प्यारा प्यारा पिता और सभी परिवार नाथू, सभी परिवार घिराव के तरफ से प्रदीप को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद मिले। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, ये गीत हम पेश करते हैं प्रदीप जी के वास्ते जिनका कर 45वां जन्मदिन है। तो सभी बहन जैसे मैं, सीता, मालिनी और रेशमा खुश हो करके अपने भैया जी को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश कर रहे हैं ये सुंदर गीत के साथ।
1: तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और

मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने सी कोई चीज ना लूं। और ये गीत हमने पेश किया है प्रदीप नाथू जी के वास्ते, जिनकर का 45वां जन्मदिन जो है। तो सभी बहन खुश होकर के, जैसे मैं सीता मालिनी और रेशमा के तरफ से अपना प्यारा प्यारा भाई को ढेर सारे बधाइयां, शुभकामना, आशीर्वाद पेश किया गया। सरस और प्रोग्राम को जारी करते हुए ये गीत हम पेश करते हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारे प्यार भरिए राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टिल नेक्स्ट टाइम।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए। हम यार है तुम्हारा अगर यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ। दोस्तों हम यार है तुम्हारे।

यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बात है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में, तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था, लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों, बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलीला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गए रहा। तो इसी कारण मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

जा रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। बप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 66 तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जो देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, heb je steeds een vaar van hun stang radio op zo'n program Gito Ka Sangam Rajan ke saath. Duniya mein logo ko dhoka kabhi ho jata hai. Main sochta hu duniya mein har ek insaan ko dhoka jo ek baar hoga. Ji haan dosto, har ek insaan dhoka duniya mein jaroor ek baar khaya hoga. To Ardi Burman ka song hai, Rajesh Khanna Mumtaz film mein kaam kiya aur aap jante hain superstar Rajesh Khanna. दोनों में एक रजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़का से यहाँ पर फिल्म पेश करते थे. अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता, लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था. सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं, एक दूसरे अलहदा तरह के फिल्म है. फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्टिंग से भी थी उन दिनों में. रजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था.

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाज़ों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, यह पागल रखा पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों, फिल्म दीदारी यार। फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया, और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया। फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फीट दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को। तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया। जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा, जाओ किशोरदा से बातचीत करो, कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्र से कहा, जितेंद्र 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया, और फिर 20,000 दिया, जाओ इन्हें राफी साहब के दो दे। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया, तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे, और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते हैं किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर तुई माल जैसे तो चाहता है एंकल तुई माल फिर दर्शन आँख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों की आवाज़ में आप सुनेंगे।

यहाँ से आप सुनेंगे सितारों का सफ़र। आज का प्रोग्राम है सितारों का सफ़र, में मैं गज़ल का गायक या गज़ल का फनकार पंकज उदास के बारे में कुछ बातचीत करूँगा। पंकज उदास पैदा हुआ सीफिक मई निगरी इन फैतक राजखत में, परिवार बॉम्बे से बॉम्बे चला आया और म्यूजिक अकादमी में तबला बजाने को सीखा पंकज ने। पंकज को बचपन से गाने का बहुत से शौक था। मास्टर नवरंग से ये संगीत सीखा। उषा खन्ना ने पंकज को फिल्म कामना में गाना गाने का एक मौका दिया, लेकिन ये फिल्म कामयाब नहीं हुआ तो पंकज ने फैसला किया कि वो फिल्मों में बहुत कम काम करेगा और पंकज शुरुआत किया गज़ल गाने में और उर्दू भी सीखा। बड़ा भाई ने कहा पंकज से कि अगर गज़ल में कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो तो मेहंदी साहेब और बेगम अख्तर को सुनो। पंकज जी ने बहुत से गज़ल पेश किया है, तो बहुत से गज़ल गाया है और सभी गज़ल में से एक गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, तेरी निगाहों से, पंकज उदास की आवाज़ में।

गजल का फंकार पंकज उदास कनाडा को चली गई और वहाँ जाकर उन्हें महसूस हुई कि यहाँ के लोग को हिंदुस्तानी म्यूजिक कितना पसंद है। फिर पंकज ने मन बना लिया कि ये अपना देश में अपना नाम करेंगे और काफ़ी टाइम गजल सीखने के बाद ये वेसन में काफ़ी गजल की कॉन्टेस्ट किए नीखतिन तख तक और नीखतिन तख तक में अपने पहला गजल के आलबम तैयार की जिसका नाम था आहट। फिर उसके बाद फिर उसके बाद वो एक गाना तैयार की एक गजल और वो था चिट्ठी आई है। इस गाने से ये तुरंत पॉपुलर हो गया दोस्तों। एक बार पंकज उदास एक वेनिला से फ्लिक था तो एक शो देकर घर जा रहा था और जो फ्लिक थे जब प्लेन में बैठा तो राज कपूर जी वहाँ प्लेन में बैठा था तो राज कपूर के जाकर उनका पाँव पकड़ लिया पंकज। तो राज कपूर ने कहा नहीं नहीं पंकज जी ऐसे ही मत करो आप एक बड़ा गायक हो। तब पंकज ने कहा नहीं नहीं मैं कोशिश करता। तो राज कपूर ने कहा आपका गीत जो है चिट्ठी आई है वो एक हिट एक बड़ा सॉन्ग हो गया है। तो वहाँ पर जाकर पंकज उदास को महसूस हुआ कि कितना तारीफ किया जा रहा है मेरा ये गीत पर। और ये गीत दोस्तों मैं सोचता हूँ ये गीत हमेशा पॉपुलर रहेगा। इसलिए गीत में जो बातें हैं मैं गीत को सेलेक्ट करके रखा लेकिन आज नहीं पेश करूँ इसलिए कि गीत बहुत लंबा चौड़ा है। एक दूसरा गजल मैं आपके लिए चुन के रखा हूँ और मैं भी पेश करूँगा। तो चिट्ठी आई एक पॉपुलर हिट हुआ। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ गजल गाया जाता था वहाँ वहाँ पंकज उदास हमेशा उपस्थित होते थे और उनका गाना भी हमेशा चलता था। पंकज उदास की आवाज़ में एक दूसरा गजल आप सुनेंगे। पंकज उदास दोस्तों आप जानते हैं वो सुरीनामदेश भी अपन शो दिया है और हॉलैंडेश में भी आकर अपन शो कितने कई बार मैं सोचता हूँ दो बार वो सुरीनामदेश गया है।

तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। गसल का फंकार पंकज उदास को पद्मश्री का पद्दी मिला दिया। तुई जैसन शस्त्र में पद्मश्री का ऑनर्स कैरिंग और पंकज उदास का पिता का नाम, उसका पिता का नाम थे खुशीदास उदास और माँ का नाम थी झूठी झीटी झीटी बन। पंकज को दो भाई है जिन्हें जिनका नाम है मनहर उदास, वो भी एक गायक है, और दूसरा भाई का नाम है निर्मल उदास, एक गजल गायक, और बीबी का नाम है फरीदा उदास। इन दोनों को दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम है नयाब उदास और रेवा उदास। दोस्तों दुख की बात यह है कि 26 फरवरी 2024 को 72 साल के उम्र में पंकज उदास की मृत्यु हो गया, दुनिया को छोड़ चल गए, और बहुत दुख की बात है दोस्तों। पंकज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम जब लिया जाएगा बड़ी गर्व से लिया जाएगा। उसका दाह संस्कार परिवार रिश्तेदार के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के तमाम भी सितारे मशहूर थे वहाँ पर।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। महेंद्र कपूर का लाइव सॉन्ग आप सुनेंगे।

महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में बदल जाए अगर माली। दोस्तों, जॉय मुखर्जी सायरा बानो के साथ फिल्म शागिर्द में काम किया। आप ये फिल्म देखे होंगे, तो इस फिल्म एक बहुत जोक फिल्म था दोस्तों, इसमें बहुत हंसी था। और जॉय मुखर्जी और सायरा बानो अच्छी तरह से इस फिल्म में काम किया। और इसी फिल्म का एक सॉन्ग है नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनेंगे।

0: जी और आशा पर सायरा बानू दोस्तों दिलीप कुमार का बीवी सायरा बानू के साथ फिल्म शागिर्द का ये सॉन्ग अभी आपने सुना। धर्मेंद्रा दोस्तों धर्मेंद्रा और अपन दूसरा बीवी, जी हाँ लोग कहते हैं दूसरी बीवी, तो मैं कहा दूसरा बीवी, अपन दूसरा बीवी हेमा के साथ वो काम किया फिल्म चरस में। अभी गीत के बाद मैं कुछ धर्मेंद्रा के बारे में आपसे बताऊँगा।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा।

0: दोस्तों धर्मेंद्र, आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र का तबीयत जो बिगड़ा, तो धर्मेंद्र अपना दयाद जो है, जितना धन दौलत है, वो अपन दो बीबियों के अंडर बात दिया दोस्तों। तो एलक है, एलक मीन्स दोनों बीबियों का पूरा बात दिया। और धर्मेंद्र का दौलत जो है 560 करोड़ रुपए। तो धर्मेंद्र अपना पहला पत्नी और हेमा मालिनी को दोनों को 200 करोड़ दिए। तो हेमा मालिनी को 200 और अपने पहले पत्नी को भी 200 करोड़। और अपनी चार बेटियां, धर्मेंद्र को चार बेटियां है, दो हेमा के साथ और दो बेटी है प्रकाश कौर के साथ। तो चारों बेटियों को 107 करोड़ दे दिए और 60 करोड़ रुपये। और अपना फार्म जो है, अपना फार्म हाउस जो है, वो दोनों अपने ये अपने दोनों पतियों में बांट दिए, ये लगा। और बच्चे सोनी दियोल और बॉबी दियोल दोनों को अपना प्रोडक्शन हाउस दे दिया। और धर्मेंद्र को कई शहरों में रेस्टोरेंट है, उसका कीमत लगभग 5 करोड़ है। और दोनों भाई के हिस्से में ये ये सभी रेस्टोरेंट जो है, ये दोनों भाई के हिस्से में आया। और धर्मेंद्र को 4 बड़े बड़े बंगले है जो अपने दो बीबियों को बात दिए है दोस्तों। तो देखिए धर्मेंद्र अपन दो बीबियों को कितने प्यार करते हैं कि लड़कन को कम दिया है और अपन बीबी को ज़्यादा दिया है। इसलिए कि बीबी से तो लड़का होता है ना, जब बीबी नहीं है तो लड़का कैसे होगा। जॉनी तू क्या सोचे है, सही बात है कि नहीं
1: भैया? जो मसीह है ना, वो तो कैसे चले।
0: वही बात है जॉनी, थैंक यू।

APK Happy Station Fa Hon Hindustani Radio. काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, कॉन्टैक्ट कीजिए फा और हिंदुस्तानी रेडियो से. हे अपना बनाने की कसम खाई है मिस्टर सानू एंड अनुराधा पाउडर दोनों के आवाज़ों में आप गीत को सुनेंगे.

एलम सजग का सॉन्ग तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। संजय दत्त और पूजा भट्ट फिल्म में काम किया। संजय दत्त दोस्तों बीते हुए दिनों में ये आदमी जेल यात्रा, इसे मैं अच्छा कहा जेल यात्रा या जेल कातिल कोई बात नहीं, ये जेल गया और ये फिर वापन खफालक था। तो कई महीना ये जेल, लगभग 8 महीना ये जेल काटा। लेकिन उन दिनों में सलमान खान इनका बहुत मदद किया, संजय दत्त का मदद उन दिनों में सलमान खान बहुत किया। अब की बार धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मिस्टर सानू वंस अगेन, लेकिन अब की बार नहीं नहीं एक बार फिर अनुराधा पौडवाल के साथ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।

रुलाना हर किसी को आता है, रुलाना हर किसी को आता है और हंसाना भी हर किसी को आता है, मगर रुला के जो मना ले वो बाप होता है, और रुला के जो खुद रो पड़े वो सिर्फ माँ होता है। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए।

इतनी उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए, साथी किस तरह से मिलेगा दोस्तों। हम लोग के तो हिंदुस्तानी लोग को यहाँ पर रईस पिरो है, फ्लेश वेंकल है, तरकारी दुकान है, कपड़ा दुकान है, लेकिन हिलक्स बिरो मुझे पता नहीं है या नहीं। अगर होगा दोस्तों तो आप फाउन हिंदुस्तानी से कॉन्टैक्ट करके और प्रचार कीजिए, ये हिलक्स बिरो के जरिए साथी ज़रूर मिल जाएगा आपके करीब। आपके करीब हम रहते हैं।

रोमांटिक सॉन्ग साजन की बाहों में से मैं निकाल कर आपके लिए पेश किया दोस्तों। ऋषि कपूर एंड टब्बू इस फिल्म में काम किया। कभी ये चांद सितारे जमीन पर रहते हैं। आपको मालूम है कि ये जमीन पर कितने चांद सितारे रहते हैं? अगर मालूम नहीं दोस्तों तो खोज कीजिए, यकीन कीजिए, देख लीजिए, तो आपको चांद सितारे जरूर नजर आएगा। जिंदगी को प्यार बिना।

दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी बड़े जतन से कमाई है। इसमें रफ्तार तो भरपूर है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर ना ठहराव ना गहराई है।

वास्तव में जब दिल लेना है तो दिल फिर देना पड़ेगा। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बात में सोचता हूँ कि ये सही होगे, लेकिन जो गीत मैं पेश करूँगा वो है ये आंखें है आईना मेरी जिंदगी का।

कोई मेरे दिल में है, मुझे तो ये एहसास नहीं होता है कि आपको एहसास है कि कोई आपका दिल में है। मैं सोचता हूँ अगर होगे तो आपको जरूर एहसास होगे। कोई मेरे दिल में है, अनुराधा पॉल वॉल एंड मिस्टर्स

0: oosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
3: हमारे दोस्तों आंचम कुछ और यानी कि जोंग सुनाएंगे और यानी कि वो होगा हेमंत कुमार दादा हेमंत कुमार का गीत हम आज आप लोग को सुनाएंगे और यानी कि महेंद्र कपूर का कुछ गीत आज आप लोग को हम सुनाएंगे और उसको आप सुनते रहना और कहते हैं पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है आंखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है तो हम चलते हैं पर यानी कि दादा हेमन और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है मूवी के नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 991

और नीनना मुझको आए दादा हेमंत कुमार और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। तो कहते हैं महकती हुई जिस्म तेरी गुलाब जैसा है, महकती हुई जिस्म तेरी गुलाब जैसा, तेरी गुलाब जैसा है। महकती हुई जिस्म तेरी गुलाब जैसा है, नींद के सफर में तू एक ख्वाब जैसा है। दो घूंट पे लेने दे आंखों प्याले है, दो घूंट पी लेने आंखों प्यासी है, नशा तेरी आंखों में शराब जैसी है। तो दोस्तों हेमंत कुमार के बाद हम जाते हैं महेंद्र कपूर की ओर। फिल्म के नाम है हमराज, पुराना हमराज है दोस्तों, ये नया हमराज नहीं है, पुराना हमराज है। आओ सुना जाए।

0: और तुम अगर साथ देने को वादा करो तो क्या होगा। और ये फिल्म का नाम है हमराज महेंद्र कपूर का ये जोंग है। तो हम भीग जाते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर। फिल्म के नाम है 20 साल बाद।
1: जरा नजरों से कह दो जी

और ये है दादा हेमन कुमार का फिल्म के नाम है 20 साल बाद यारो। जालिम जुदाई ना होती, काश ये जालिम जुदाई ना होती, ऐ खुदा तूने ये चीज बनाई ना होती। हम ना हम उनसे मिलते ना प्यार होता, अपनी जिंदगी फिर पराई नहीं होता। तो दोस्तों अब हम चलते हैं और ये है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग। और किसी पत्थर की मूरत से और क्या क्या है आओ सुना जाए। फिल्म के नाम है तुम अगर साथ देने का वादा के बाद। फ्रॉम

और किसी पत्थर की मूरत से प्यार करने का इरादा है। और महेंद्र कपूर ने आप लोग को सुनाई है दोस्तों, और हम और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर चलते हैं कि आज हम आपको कुछ महेंद्र कपूर का गाना और कुछ दादा हेमंत कुमार का गीत आपको सुनाएगा। तो दिल के बाज कहते हैं तो कहते हैं, मानता ही नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मानता ही नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने के। मैं हाथ जोड़ता हूं तो ये गले पड़ जाते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ तो ये गले पर जाते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, दादा हेमंत कुमार का ये सॉन्ग ही, फिल्म के नाम है बिन बादल बरसात की ओर हम जाते हैं। और ये है दादा हेमंत कुमार, नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है, जिस फिल्म में आशा परीख ने काम किया है।

एक बार जरा फिर कहिरो मुझे शर्मा की तुम दीवाना। दादा हेमंत कुमार नैतिक लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है बिन बादल बरसात। तो हम कहते हैं दोस्तों, इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब है, दास्तां भी बड़ी अजीब है, बड़ी मुश्किल से इसकी खुशी खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर किस खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं और दादा हेमंत कुमार के बात में और महेंद्र कपूर की ओर, जिस फिल्म में सुनील दत्त काम किया है और माल्हा जीना ने काम किया है, मूवी के नाम है गुमराह।

और इन हवाओं में यानी कि इन घटाओं में, और आज हम आप लोग को हमारे यारो आज आप लोग को हम महेंद्र कुमार और दादा हेमंत कुमार का गीत कुछ सुनाएंगे। ये मूवी का नाम था गुमराह, और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। कहते हैं दोस्तों, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, मेरी आगे मोहब्बत है और तेरे आगे क्या है, तेरे आगे जमाना है। तो इसके बाद हम चलते हैं और वो है मूवी का नाम है कोहरा। नाइटिंगेल लता जी और दादा हेमंत कुमार का ये जो है

और बेकरारी दिल, और बेकरारी दिल के बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाएंगे हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं कि कहते हैं कि देखकर तुमको अस्कर, देखकर तुमको अक्सर हमें ऐ एहसान होता है, कभी कभी गम देने वाला भी कितना खास होता है हमारे यारो। तो उसके बाद हम चलते हैं और वो है महेंद्र कपूर नाइटिंगेल लता जी के जोंग की ओर।

और इंतजार करना तो चाहिए आई दिन बहार की, और यानी कि इस ओल्डेस्ट गोल्ड का सॉन्ग है दोस्तों ए? और जो गीत अब की बार है वो है एक रोमांटिक सॉन्ग है, और जिसमें महेंद्र कपूर ने गाया है आशा जी के साथ में।

हम जब भी सिमत के आम की फिल्म के नाम है वक्त नहीं खती होंदत एन वेवसेस का ये गाया हुआ जोंग है और ये गीत जो है वो है आशा जी और महेंद्र कपूर का गाया हुआ सॉन्ग है फिल्म के नाम है वक्त

और दिन है बहार की, तेरे मेरे इकरार की। फिल्म के नाम है वक्त दोस्तों, और वक्त की बात तो हम, और ये गीत है हेमंत कुमार का, ये सॉन्ग है जिसमें शमी कपूर ने काम किया है, मूवी के नाम है ब्लफ मास्टर।

और दोस्तों जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्त में जो ज्यादा बहार जोंग है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक गीत आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों। और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

पसंद आए हमारे दोस्तों। तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं और प्यार के मूड में आए हैं, तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए। और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बाबुल सुब्रमण्यन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के और, वो भी आज प्यार के मूड में है, कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार,
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम
1: बहुत।

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेख सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं। अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत अतिश वेलन हील अवलीची फन 1975 और फिल्म के नाम बा भाभी और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और बनवारी लाल मूवी का नाम ही मेरे यारो। और आज आपको हम कुछ पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग सुनाएंगे हम। और अगर ये अगले गीत के ओर जाते हैं और वो क्या है शमी कपूर आज बनवा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ ये सॉन्ग है।

0: और एक प्यारी का नगमा है और मजों की और कहानी है, फलंतैन यानी कि लवली सॉन्ग हम चलाते हैं।
1: झूठा ही सही
0: और झूठा ही सही
1: के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही
0: सच्चे कहना
1: दो दिल

और दोस्तों आपको हम और वैलेंटाइन के कुछ और कुछ प्यार भरी गीत से आज आप लोग को हम सेवा करते हैं। ओनली फॉर द लवर वैलेंटाइन सॉन्ग।

कंठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो वाहन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ। और कौन आएंगे? महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तू पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत के ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन नहीं खतीन द्रियन तख्त का ये फिल्म है दोस्तों, और ये मौफी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है कि जोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 20 तक सेफ नफेटा फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का एहसास हर रोज़ होना चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर प्रोग्राम लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान।

आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी राशि, लगन तथा स्वप्न के बारे में। तो हम पहले बढ़ते हैं लगन के बारे में। मनुष्य प्रायः पहले चार सुखों के बारे में ही स्वप्न देखता है, क्योंकि वह इन्हें कर्मानुसार पसंद करता है। ये चार सुख इस प्रकार हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हम सब देखते हैं कि किस लगन वालों के लिए किस किस ग्रहों के योग से ये सभी स्वप्न साकार होते हैं। पहला है मेष लगन। इस लगन के जातकों के चारों सपने इस प्रकार साकार होते हैं। यदि लग्नेश मंगल बलवान शुभ ग्रहों के द्वारा देखा गया हो या शुभ ग्रह लगन में हो तो स्वास्थ्य दीर्घ आयु का सपना साकार होता है। लक्ष्मी साकार स्वप्न के लिए चंद्र केंद्र त्रिकोण स्थिति के 2 व 12 के स्थान पर गुरु शुक्र हो तो जातक पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा हो जाती है। केम ध्रुव प्रयोग हो या लगन 2/8 पाप ग्रह हो तो लक्ष्मी का स्वप्न अधूरा रह जाता है।

हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दूसरा है वृष लगन। इस लगन वालों के चारों स्वप्न इस प्रकार साकार होते हैं। स्वास्थ्य दीर्घ आयु का स्वप्न तब साकार होता है जब लग्नेश शुक्र बलवान हो, शुभ ग्रह देखते हो या शुभ ग्रह लगन को देखते हो। निर्बल होने से शरीर के स्वप्न को निर्बल कर देते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब बुध बलवान शुभ ग्रह धन लाभ स्थान में स्थित हो या इन स्थानों को देखते हो। बुध निर्बल हो तथा केमद्रुप योग होने से स्वप्न निराधार हो जाएगा। सुनने वालों अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन लगन की ओर। इस लगन वालों के स्वप्न इस प्रकार है। बुध गुरु केंद्राधिपति दोष से युक्त होने या निर्मल होने पर यह स्वप्न शून्य मात्र रह जाते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब धनेश चंद्र लाभेश मंगल बलवान को शुभ ग्रह देखते हैं। चंद्र बलवान के दोनों ओर शुभ ग्रह हो इसके विपरीत होने पर निराधार हो जाएगा। सुखी ग्रह जीवन का सपना तभी साकार हो पाएगा जबकि सप्तमेश गुरु बलवान हो। गुरु केंद्राधिपति दोष होने से स्वप्न बिगड़ जाता है। संतान सुख का सपना तभी साकार होगा जब पंचमेश शुक्र बलवान हो। इसके प्रतिकूल होने पर जातक संतान की ओर से दुखी रहेगा।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क लगन की ओर। कर्क लगन स्वास्थ्य दीर्घायु का सपना तब साकार होगा जब लगनेश चंद्र बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, या लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो या वहाँ स्थित हो। निर्मल होने पर या केंद्र त्रिकाण में कोई शुभ ग्रह ना होने पर स्वप्न निराधार हो जाएगा। लक्ष्मी स्वप्न कर्क लगन वालों का जब साकार होता है तब चंद्र बलवान के दोनों ओर शुभ ग्रह धन लाभ भाव में स्थित हो या इन स्थानों को देख रहे हो। निर्मल रहने पर स्वप्न अधूरा रहकर जीवन को अशांत कर देता है। स्त्री स्वप्न साकार करने के लिए शांति बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह बलवान सातवें भाव में स्थित हो या उस स्थान को देख रहे हो, यदि सातवां भाव निर्बल हो, सप्तमेश निर्बल हो, शांति निर्बल हो, तो ग्रह ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है। संतान स्वप्न सुखी होने के लिए पांचवां स्थान या पंचमेश बलवान हो, मंगल बलवान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, इन योगों के निर्बल होने पर स्वप्न भी निर्बल हो जाएगा।

और कि सिंह राशि में सिंह लगन कैसे स्वप्न साकार करते हैं। सिंह लगन, इनको स्वास्थ्य शरीर का सपना साकार होने के लिए लग्नेश सूर्य बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह लगन में हो या इनको देख रहे हो, इसके विपरीत शरीर में कष्ट होता है। अर्थ संबंध में बुध को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह धन भाव में स्थित हो या उन्हें देख रहे हो तो लक्ष्मी स्वप्न साकार हो जाता है, अन्यथा दरिद्र रहते हैं। इस लगन वालों को का सुलक्षणा स्त्री का स्वप्न तभी साकार होता है जब शनि बलवान हो, इसके विपरीत यह सपना अधूरा रह जाता है। योग्य संतान का चौथा स्वप्न फलीभूत होने के लिए पंचमेश बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह पांचवें स्थान पर बैठे हो, अन्यथा यह स्वप्न व्यर्थ हो जाता है।

आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, यानी कन्या लगन। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए बलवान गुरु केंद्राधिपति दोष रहित हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या सातवें बलवान ग्रह हो या इस प्रकार इनकी दृष्टि हो, मनुष्य संतान सुख तभी प्राप्त करेगा जब बलवान शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या पांचवें बलवान शुभ ग्रह स्थित हो या इनकी दृष्टि हो। इसके विपरीत जातक संतान की ओर से दुखी ही रहता है।

सुनने वालों, स्वप्न तो हम सब देखते हैं और सपनों का कुछ अर्थ भी होता है और उनके कुछ फल भी देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ स्वप्न और उनके फल, यानी जो लोग हम सपना देखते हैं उनके फल क्या निकलता है। जैसे अनाज भरना, तो उसका फल निकलता है धन लाभ। अगर सपने में हम अनाज देखते हैं तो उससे हमें धन का लाभ होता है। मरण होना, अगर हम मरने का सपना देखते हैं तो हमारी दीर्घायु यानी हमारी आयु लंबी होती है। आंधी देखना, यानी सपने में अगर आंधी तूफान देखते हैं तो उसका मतलब है संकट चिंता।

सुनने वालों, हम जैसे सपने देखते हैं और सपनों का मतलब भी होता है, और अभी मैंने आप सबको बताया कि उसके फल भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इमारत देखना। सपने में हम लोग इमारत का मतलब कि कोई बिल्डिंग देखे या कोई बड़ा मकान देखे तो उसका फल हमें मिलता है लाभ। तो हमें किसी भी चीज़ का लाभ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि खाली पैसे का लाभ हो, और भी किसी वस्तु का लाभ मिल सकता है। ऊंचाई से गिरना, अगर हम सपने में ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो उसका मान हानि या हमें हानि होती है। कुत्ते का काटना, अगर सपने में हमें कुत्ता काटता है तो उसका फल है शत्रु भय, कि हमें अपने शत्रु से भय है या किसी भी चीज़ से हम डर सकते हैं।

सुनने वालों, अगर हम सपने नाव देखते हैं यानी बोट को देखते हैं तो परेशानी फल मिलता है कि उससे हमें परेशानी कोई भी मिल सकती है। चित्र देखना कि सपने में हम किसी भी तरह का चित्र देखें तो उससे हमें राज्य लाभ कि हमें लाभ की प्राप्ति होती है। जहान देखना उससे हमें होता है स्त्री क्लेश

सुनने वालों, अगर हम सपने में जवाहरात, हीरे जवाहरात देखते हैं तो कार्य सफल, तो उसका फल मिलता है कि हमारे जो भी कार्य हैं सब सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

सपने में हम सुनने वालों, अगर तख्त पर बैठे हुए हैं तो उसका मतलब है इज्जत पाना। तख्त मीन्स किसी ऊंचाई पर बैठे हैं या किसी सिंहासन पर बैठे हैं या ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं तो हमें इज्जत मिलती है। तालाब स्नान, अगर हम तालाब में स्नान करते हैं तो उससे भी इज्जत मिलती है। दरिया में नहाना, उससे हमें रोग नाश होता है।

सुनने वालों, ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। अब मैं आपके लिए थोड़ी और ज्ञान की बातें लेकर आई हूँ कि ध्यान रखने योग्य बातें। हमें कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिसको ध्यान में रख के हम थोड़ा सा अपना काम सुधार सकते हैं। सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, उसे अच्छी तरह जियो। खाली ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, उसे अच्छी तरह जीना भी चाहिए। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो कि हमें कुछ चीज़ें सिर्फ छूनी नहीं चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन उसे ध्यान से गौर से देखना ज़रूर चाहिए। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, उन बातों को जीवन में भी उतारना चाहिए। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। हम कहीं भी जाते हैं, किसी की बातें सुनते हैं और कभी अनसुनी कर देते हैं, लेकिन उन बातों को थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, हो सकता है कि बेहतर काम करने के लिए कोई आपकी तारीफ ना करे, पर यह जान ले कि बढ़िया काम करने का एहसास ही खुद में एक बड़ा पुरस्कार होता है। कार्य के प्रति लापरवाही या देर से अथवा ना करने की प्रवृत्ति स्वयं अपने आप को धोखा देना होता है। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, किसी भी दिन का अफसोस मत कीजिए, अच्छे दिन हमेशा खुशी देंगे और बुरे दिन अनुभव देंगे, इसलिए हर क्षण का आनंद उठाने की ठान लीजिए। अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो पाए तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा क्यों? क्योंकि यही ईश्वर की मर्जी है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठी रखो, फिर आपसे कोई नाराज़ हो तो कहना। सच बोलती हूँ तो टूटते हैं रिश्ते, चुप रहती हूँ तो खुद टूट जाती हूँ। दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। इम्पॉसिबल को गौर से देखिए, वह खुद कहता है आई एम पॉसिबल।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। कालवास, प्रत्येक वार को काल का निवास अलग अलग दिशाओं में होता है। रविवार उत्तर की ओर, सोमवार वायव्य, मंगलवार पश्चिम, बुधवार नेतृत्व, गुरुवार दक्षिण, शुक्रवार अग्निकोण, शनिवार पूर्व। इसलिए किसी में शुभ कार्य के लिए इन दिनों में संबंधित दिशाओं में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार को उत्तर में वज्र से शुरू करके एंटी क्लॉक वाइज चले। संबंधित वार को संबंधित दिशाओं की तरफ से विषैली किरणों का अंश आता जाता है और वह अपना क्रम बदलती रहती हैं। यह क्रम ठीक उसी क्रम में बदलता रहता है जिस क्रम को भारतीय ऋषि महर्षियों ने काल दिशा निर्धारित की है। इन दिनों में इन दिशाओं की यात्रा में शारीरिक रूप से विषैली किरणों का सामना करना पड़ता है और कार्य सफलता में भी बाधाएं आती हैं। उस पर ऐसी किरणों का प्रभाव होने से जब वह सामने वाले व्यक्ति के पास जाती हैं तो उसके शरीर से एक ऐसी गंध प्रवाहित होती है जो सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित करती है। काल निवास की गणना नंबर वार घड़ी के विपरीत दिशा में चलकर करनी होती है।

वालों अब आगे चलते हैं। छिपकली गिरने तथा गिरगिट चढ़ने का फल। छिपकली तो आप सब लोग जानते हैं और गिरगिट होती है कैमलियन, और अगर हम सपने में इन दोनों को देखें और उसका क्या फल प्राप्त होता है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ सुनने वालों। रोते हुए अगर हमें छिपकली या गिरगिट रोते हुए मिले तो उसका हमें फल मिलता है मनोरथ सिद्धि। हंसते हुए अगर हमें सपने में ये दोनों हंसते हुए मिले तो उनका फल मिलता है भयानक घटना। सोते हुए अगर ये दोनों हमें सोते हुए मिले तो उसका फल मिलता है देर से फल प्राप्त होता है, यानी उसका फल हमें जल्दी नहीं प्राप्त होता। जागृत अवस्था अगर हम इन दोनों को सपने में जागते हुए देखें तो तत्काल फल प्राप्त होता है, तो हमें तुरंत ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। सुनने वालों, भोजन करते समय कुछ भी फल ना हो, अगर ये दोनों हमें भोजन करते हुए दिखाई दिए सपने में तो उससे हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता।

विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: मेरी दोस्ती मेरा प्यार, ये सुंदर सा गीत रखा गया अभी, इसका कोई वजह भी होगा। बबली जी, आपके क्या कुछ पता है इसका वजह क्या है?
1: हाँ जी, इस गीत में दोस्ती है। तो
0: दोस्ती, फिल्म का नाम ही दोस्ती था।
1: हाँ जी, ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है। एक लंगड़ा होता है और एक अंधा होता है, उनकी दोस्ती के बारे में है।
0: और खास करके मोहम्मद रफी का एक हिट्स सॉन्ग जो है, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस गीत को कंपोज किए। पर दोस्तों, अभी इसके बारे में जरूर कुछ और बताया जाएगा। कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो एक कार्यक्रम है जिसमें विषय के बारे में बातचीत किया जाता है, और विषय जो रखा गया है तो आज का विषय में कुछ छोटा और जोड़ दिया गया है, क्योंकि आज अभी हाल ही से वो भी आया और हम सब सोचे कि ना इसे आज जोड़ दिया जाए। हमारी खोजी सेना ने तो विषय अभी आज से जब शुरू किया जाए रोज और बनाने के कार्यक्रम, तो लगभग 5 साल लग जाएगा और हम सब अपना विषय से और पूर्ण नहीं हो पाएंगे। पर कुछ कुछ नए चीजें आ जाते हैं और रख दिया जाते हैं। तो बबली जी, आज का विषय का पहला भाग में, क्योंकि अभी दूसरा भाग में हम सब जो हमारा नाम होता है, जो हमारा जिस नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं उससे जुड़ा हुआ और कुछ संदेश रखा जाएगा। पर अभी उस ओर बढ़ने से पहले क्यों ना हम एक छोटा सा झलक जो आप रखने वाले हैं, कि जैसे आपने कहे कि खट क्या है ना?
1: हाँ जी, क्या आपको पता है संजय जी खाट क्या है?
0: खाट क्या है?
1: खाट भी कहते हैं, खटिया भी कहते हैं, और तो पंजाबी में मंजी भी कहते हैं।
0: मंजी कहते हैं। तो दोस्तों सुनने वालों, जैसे कि आप सुन ही लिए हैं कि खटिया क्या है, और उसके बारे में कुछ हम सबको बबली जी संदेश रखने वाले हैं। तो बबली जी, ऐसा कीजिए, आपके ये बताइए कि आपके घर से और खटिया था इंडिया में कि नहीं?
1: उस और बढ़ने से पहले थोड़ी उसकी रूपरेखा बता दे कि खटिया है क्या।
0: जरूर, आप अवश्य रूपरेखा और सुनाइए।
1: हाँ जी, खटिया वो है जिसके चार पैर होते हैं और बीच में से उसको एक सन कहते हैं, एक तरह सा वो रस्सी, तो उससे उसकी बुनाई होती है।
0: खटिया यानी कि रस्सी से भी बनाया जाता है ना?
1: हाँ जी, लेकिन वो आम रस्सी नहीं होती, मजबूत सन की रस्सी कहते हैं उसको।
0: सन की रस्सी से बनाया जाता है?
1: हाँ जी,
0: ऐसा।
1: हाँ जी, और काफी मजबूत उसके पांव होते हैं, चार पांव होते हैं।
0: चार पांव होते हैं, हाँ, उसी कारण उसका नाम चारपाई भी कहा
1: जाता है। हाँ जी, हाँ जी, चारपाई भी कहते हैं। बहुत बहुत सारे नाम हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा, अपने अपने नाम। तो सोने के लिए खाट हमारे पूर्वजों की सर्वोत्तम खोज है। हमारे पूर्वजों को क्या लकड़ी को चीरना नहीं जानते थे? वह भी लकड़ी चीर कर उसकी पट्टियां बनाकर डबल बेड बना सकते थे। डबल बेड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लकड़ी की पट्टियों में कीले ही ठोकनी होती हैं। चारपाई भी भले कोई साइंस नहीं है, लेकिन एक समझदारी है कि कैसे शरीर को अधिक आराम मिल सके। चारपाई बनाना एक कला है, उसे रस्सी से बुनना पड़ता है और उसमें दिमाग और श्रम लगता है।
0: तो ये बात हो जाता है बबली जी कि उसे, जैसे कि क्योंकि मैंने भी एक बार एक व्हाट्सएप पर में हमने देख रहा था, तो उसमें भेजा गया था कि किस प्रकार से उसे बनाया जाता है।
1: हाँ जी, जब हम छोटे थे तो जैसे चारपाई टूट गई तो दोबारा से फिर बनाने वाले जैसे कारीगर होते हैं, तो हमारी गली में चक्कर लगाते रहते थे कि चारपाई किसी ने बनानी है, तो जिसकी टूटी होती थी वो आवाज़ लगाते, आओ भैया इधर आओ, हमारी चारपाई बना दो।
0: और वो आ करके फटाफट बना देते थे?
1: हाँ जी, बनाते थे, यानी फटाफट भी नहीं, कई बार एक घंटा दो घंटे लग जाते थे।
0: ऐसा, तो वो बन जाता था।
1: हाँ जी, और हम सब भी चारपाई पे सोते थे भारत में, और सबसे बड़ी चारपाई मेरे पापा की थी।
0: तो चारपाई, वैसे तो चारपाई डबल परसोन, जैसे हम लोग यहाँ एंकल परसोन, डबल परसोन ऐसे भी कहते हैं।
1: हाँ जी, मेरे पापा की चारपाई आप समझ लो डबल परसोन ही थी।
0: ऐसा, क्योंकि ऐसा उन्होंने क्यों लिया?
1: वो मैं भी नहीं जानती, हम बचपन से ही देखते थे कि वो उसी पे सोते थे और बाकी सबकी छोटी चारपाई होते हैं।
0: तो दोस्तों, चारपाई के बारे में भी संदेश तो हो ही रहा है, पर कुछ और संदेश अभी हम सब, आज का विषय, जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन से आपका जो, जैसे कि आप रविवार का जन्म हुआ है तो रविवार से क्या संबंध है, और ये जो नक्षत्रों में जन्म लिया जाता है, क्योंकि नक्षत्र जो हमें, जिसे हमारा नाम संस्कार भी रखा जाता है, तो उस ओर अभी संदेश हम सब रखने वाले। पर बबली जी, ऐसा क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत के, क्योंकि आज का जो तेमा है दोस्ती,
1: हाँ जी,
0: उस ओर क्यों ना एक और सुंदर सा गीत चला देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते
1: हैं। हाँ जी, जरूर।
0: तो दोस्तों, ये गीत तो हम सभी जानते हैं और ये फिल्म भी हम सब देखे होंगे, क्यों ना हम ये गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: हाँ।

0: ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया फिल्म शोले से, जो 1975 में बनाया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी अपना कला से प्रदर्शन दिए। तो बबली जी, ये सुंदर आज का जो आज का जितना गीते हैं सब दोस्ती के बारे में है, और कुछ न कुछ संदेश जरूर उसके पीछे छुपा होगा। पर अभी आप हम सब के जो खटिया, उसके बारे में और कुछ सुनाने वाले।
1: हाँ जी जरूर। क्या आप जानते हैं संजय जी, जब हम सोते हैं तब सिर और पांव के मुकाबले पेट को अधिक खून की जरूरत होती है।
0: नहीं, ये बात तो मैं सो जाता हूँ तो इसके बारे में कोई चिंता भी नहीं करता हूँ।
1: हाँ जी, क्योंकि रात हो या दोपहर में लोग अक्सर खाने के बाद ही सोते हैं। पेट को पाचन क्रिया के लिए अधिक खून की जरूरत होती है, इसलिए सोते समय चारपाई की झोली ही इस स्वास्थ्य का लाभ पहुंचा सकती है। क्योंकि जो चारपाई होती है उसके बीच में एक थोड़ी गहराई सी होती है, उसे झोली कहते हैं। तो
0: जो खटिया में ऐसे जो रस्सी से, पर वो मैं तो हर बार सोचा कि वो सोते सोते ऐसे झोली की तरह बन गया।
1: नहीं नहीं, उसको ऐसे बनाते हैं कि झोली दिखाई देती है।
0: ऐसा?
1: हाँ जी, दुनिया में जितने भी आराम कुर्सियां देख लें, सभी में चारपाई की तरह झोली बनाई जाती है। बच्चों का पुराना पलना सिर्फ कपड़े की झोली का था, लकड़ी का स्पाट बनाकर उसे भी बिगाड़ दिया गया। चारपाई पर सोने से कमर और पीठ का दर्द कभी नहीं होता। दर्द होने पर चारपाई पर सोने की सलाह दी जाती है।
0: यानी कि दोस्तों, जैसे ये भी आप सुन रहे हैं कि चारपाई, क्योंकि कितने लोग हैं जो हर बार कहते हैं कि मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है और सारा शरीर में पीड़ा हो रहा है, तो ये चारपाई एक उपाय है।
1: हाँ जी,
0: कि जिसे लोग उस पे सोने से वो पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं।
1: पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं और अरे आराम भी मिलता है। जो खून की, जो हम खाना खाते हो पाचन क्रिया, खाने को पचाने के लिए खून की जरूरत होती है। जब हम चारपाई पर सोएंगे तो उससे स्वास्थ्य पर का लाभ होगा। तो
0: ऐसा, तो दोस्तों जैसे कि इस बातों को, ये संदेश जो हमारे लिए रखा जा रहा है आज की चारपाई, जिसे हम खटिया से जानते थे, पर यहाँ तो हम लोगों ने हवांत में ये तो मैं वैसे तो मैं देखा हूँ एक गोरे के घर पे एक खटिया।
1: हाँ,
0: पर सबके घर में तो वो नॉर्मल बेथ होता, कोई के घर में इकेया बेथ, तो कोई के घर में बॉक्स स्प्रिंग, तो कोई के घर में वाटर बेथ, तो अलग अलग प्रकार के महा महा बेथ है। तो इसमें ये जो आप कह रहे खटिया का,
1: हाँ जी,
0: क्या संदेश?

0: यही संदेश है कि खटिया अपने जमाने में बहुत अच्छी, अभी भी अच्छी गांव में देखने को मिलती है खटिया। आजकल भारत में भी जाओ शहरों में नहीं है खटिया, चारपाई बहुत कमती है। आजकल क्या है, डबल बेड आ गए, लोग उस पर सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, कमती जगह घेरता है और उसमें कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। और चारपाई वैसे होती है उसमें कुछ भी नहीं रखा जाता, सिर्फ सोया जाता है, इसलिए शायद लोग समझते हैं कि चारपाई अब कमती कर दो।
1: जरूर, क्योंकि अभी समय के अनुसार लोग को बदलना भी चाहिए ना।
0: हाँ,
1: वहाँ भी एक भारत में मैंने देखा है कि एक बेड होता है जिसके अंदर से और बहुत सामान लोग,
0: हाँ उसी की बात करें, दीवान, उसको दीवान कहते हैं। हाँ जी,
1: तो उसी में सब ठंडी के समय आते तो सब ठंडी के गर्मी के कपड़े रख दिया जाता है, और ठंडी आते तो फिर गर्मी, यानी कि अदलाव बदलाव किया जाता है।
0: हाँ, जब गर्मी आई तो सर्दी के रजाई वगैरह कम्बल वगैरह सब उसी में रख दिए, और जब गर्मी आई तो सर्दी के कपड़े उसी में रख दिए, ऐसे करते हैं। लेकिन एक बात है, डबल बेड के नीचे अंधेरा होता है लेकिन चारपाई के नीचे अंधेरा नहीं होता,
1: यानी कि उजाला ही उजाला।
0: हाँ, क्योंकि चारपाई ऊंची होती है, इसीलिए जैसे टेबल होता है ना, टेबल तो ज्यादा ऊंचा हो गया, इतनी, हाँ इतनी होती है।
1: तो दोस्तों, हम अभी और आज का संदेश, जो आज का विषय है, अभी उस ओर बढ़ने वाले हैं। पहले हम एक और सुंदर सा गीत चला देते हैं, और गीत के बाद में फिर ये कार्यक्रम को, जो चारपाई के बारे में अभी बबली जी संदेश सुनाने वाले हैं और सुना रहे हैं, तो आगे बढ़ाया जाएगा। पहले ये गीत जो राही मनवा दुख की चिंता, इस गीत को हम कितने बार सुन चुके हैं, पर आज फिर क्यों ना हम सब थोड़ा से ध्यान देते हैं कि गीत का बोल में संदेश क्या है।
2: जब सदा संग रहे ना कोई

0: सुख दुख कौन आपके साथी है ये तो मुझे नहीं पता। बबली जी आपको पता कि सुख है साथी कि दुख है साथी?
1: देखा जाए तो दुख ज्यादा मिलता है और सुख कमती, तो दुख को ही अपना साथी समझना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग सुख को अपना साथी समझते हैं।
0: राही मनवा, दुख की चिंता सताती है कि सुख की चिंता?
1: गाने के बोल थे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: दुख तो अपना साथी है। दोस्तों ये सुंदर सा गीत एक स्वार्थवित फिल्म, जो काफी पुराना फिल्म है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिसका और कंपोजर रफी जी ने इस गीत को गाए है। पर बबली जी मैं देख रहा हूँ संदेशों में संदेश लेकर आप फिर तैयार हो गए हैं हम सबको सुनाने के लिए।
1: हाँ जी।
0: तो संदेश क्या सुनाने वाले आप?
1: संदेश है कि विजय कैसे प्राप्त करें।
0: विजय?
1: हाँ जी।
0: विजय कौन? विजय वो उसकी पति?
1: नहीं, विजय की।
0: विजय यानी कि ये संदेश मुझे भी पता है, समझ गया मैं कि अत जो हमें कुछ ही किसी चीज का और विजय प्राप्त करना है।
1: हाँ जी, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए
0: और
1: कुछ
0: खास
1: कार्य किया जाए।
0: बबली जी बात में बात ये है कि मैंने ये प्रश्न इसलिए रख दिया क्योंकि नाम के ऊपर हम सबका कभी कभी स्वभाव भी पड़ता है ना।
1: जरूर।
0: आज का तेमा जो है अभी हम सबके और रखने वाले हैं कि हमारे नाम से जुड़े हुए,
1: क्योंकि जैसा नाम कहते वैसा काम, और इसीलिए कहते हैं माँ बाप को भी बच्चों के नाम अच्छे और सोच समझ कर रखने चाहिए कि क्या नाम रखें।
0: पर आजकल माता पिता शायद इस पे ध्यान नहीं देते होंगे दोस्तों। तो जरूर अगर आप इस बात को सुन करके और कम से कम कहीं और कुछ ऐसा वैसा नाम रखने वाले हैं तो उस पे परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि आज जो विषय है अभी उसके बारे में हम सब रखने वाले हैं। और नाम से जुड़ा हुआ आपका जो खलुक होता है, आपके जो भोग होता है, तो उस पे और ध्यान दिया जाएगा अभी का आगे का कार्यक्रम।
1: हाँ,
0: पर विजय कैसे प्राप्त हो सकता?
1: हाँ,
0: है बबली जी ये आप सुनाने।
1: हाँ जी, जो उस और बनने से पहले मैं ये कहने लगी थी कि अब जैसे पुराने जमाने में लोग बच्चों के नाम कल्लू ऐसे रख देते थे और बच्चा होता था सफेद,
0: तो कल्लू क्यों रखा?
1: कि नजर ना लगे,
0: ऐसा।
1: हाँ जी, इसलिए कल्लू नाम रख दिया, कालिया रख दिया।
0: नहीं, पर ज्यादा तादाद में देखा जाए कि सूरीनाम में जैसे भल ना, सूरीनाम में जैसे कि पहला बेटा होता था तो उसका नाम मुन्ना रख दिया जाता।
1: हाँ,
0: था
1: आदि पुराने जमाने में गुड्डी, भारत में तो गुड्डी और मुन्ना बहुत चलता था,
0: मुन्ना। हाँ, ऐसे रख दिया जाता।
1: हाँ,
0: था। पर वो तो एक रूप नाम होता था ना।
1: हाँ,
0: वो नक्षत्र से वो जुड़ा नहीं,
1: और नहीं,
0: तो
1: नहीं,
0: वो पंडित द्वारा नहीं रखा जाता।
1: नहीं, वो तो अपने वैसे माँ बाप ने रख दिया
0: प्यार से।
1: हाँ जी, प्यार से। हाँ जी, और जैसे गोरा तो गोरे नाम रख दिया,
0: ऐसा।
1: हाँ जी, गोरे काले ऐसे था।
0: तो पर जो विषय आप रखने वाले हैं कि विजय कैसे प्राप्त हो सकता है, तो विजय के बारे में हमें जरूर कुछ जानकारी दीजिए।
1: हाँ जी जरूर। एक समय की बात है, एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। मेंढक आप जानते हैं?
0: मेंढक बोले तो
1: कीकर।
0: कीकर यानी कि मेघा।
1: हाँ जी। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना खंबा भी लगा हुआ था। खंबा बहुत ऊंचा था और उसकी सतह भी चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक प्रतियोगिता करवाई जाए। इसमें भाग लेने वाले को खंबे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने प्रतियोगिता का दिन फिक्स कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आया, खंबे के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के इलाकों से सभी कई मेंढकों इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आए।
0: यानी कि मेंढकों का और सभा लगा।
1: हाँ जी, सभा लगी कि किस दिन रेस की वो प्रतियोगिता होनी है, और उन्होंने उसकी घोषणा भी कर दी और आसपास के तालाब में से सब में से मेंढक वहाँ पहुँच गए।
0: तो दोस्तों ये मेंढक का समस्या थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आज का तेमा जो है कि दोस्ती और जो गीतों का है, तो क्यों ना एक और गीत और चला देते हैं। तो ये मेंढक का कार्यक्रम तो कुछ लंबा चौड़ा लग रहा है ना बबली जी?
1: हाँ जी, लगता तो है।

0: ये सुंदर गीत निकाला गया फिल्म का नाम जो है याराना, और फिल्म याराना से ये सुंदर गीत को निकाला गया जो किशोर कुमार ने अपने आवाज़ से और ये रखे। बबली जी, जो मेंढक का और सभा लगा है, मेंढक का सभा में क्या होने वाला है ये तो भला हम सब के सुनाइए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है और संदेश क्या है, क्योंकि हमें जिसका विषय आपने कहा कि विजय कैसे प्राप्त करते
1: हैं। हाँ जी, मैडम की सभा लग गई, उन्होंने घोषणा कर दी कि किस दिन रेस होगी प्रतियोगिता, और सब मैडम इकट्ठे भी हो गए उस दिन, और सब वहाँ बैठ के अब इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रतियोगिता शुरू हो।
0: प्रतियोगिता यानी कि अभी जो आप कह रहे हैं तो उसे हिंदी में कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तरह मुश्किल शब्द है ना।
1: हिंदी में प्रतियोगिता ही कहते हैं कि किसी चीज में भाग लेना,
0: जैसे हाँ
1: जी हिस्सा लेना, उसे प्रतियोगिता। हाँ जी, प्रतियोगिता कहते हैं। माहौल में सर गर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था, प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में से किसी भी मेंढक को यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक इस खंबे के ऊपर पहुंच पाएगा। चारों ओर यही शोर हो रहा था, अरे यह बहुत कठिन है, वो कभी भी इसे नहीं जीत पाएंगे, ऊपर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इतने चिकने खंबे पर नहीं चढ़ा जा सकता। और यह भी हो रहा था कि जो भी मेंढक कोशिश करते वो थोड़ा ऊपर जाकर फिसलने के कारण नीचे गिर जाते।
0: तो बबली जी, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि चिकने एक शब्द है जिसे शायद हम लोगों के लिए थोड़ा से मुश्किल हो सकता है। चिकने कहते हैं जो जिसे खलत कहते हैं ना।
1: हाँ जी,
0: जैसे साबुन से आप हाथ धो और
1: चिकना हो जाता है।
0: चिकना
1: हाँ
0: कहा जाता है,
1: तो उसमें हम हाथ रगड़ते हैं तो फिसलते हैं, तो जैसे खंबा पाल भी कई ऐसे एकदम साफ सुथरे और चिकने होते हैं।
0: ऐसा बात है, तो अभी तो अब संदेश में और क्या संदेश रखने वाले हैं।
1: हाँ जी, कई मेंढक तो बार बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। तो अब जो भी मेंढक उत्साहित थे, कोशिश कर रहे थे, वो भी यह सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास करना छोड़ दिया।
0: यानी कि जो मोती फातसी रहा, मोती फातसी भी और कमती होने लगा।
1: हाँ जी, लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और आखिरकार वह खंबे के ऊपर पहुंच गया।
0: तो ये बात है कि प्रयास करने से बहुत, क्योंकि बहुत जैसे कि विषय जैसे संदेश है कि विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत मेहनत करने पर।
1: हाँ जी,
0: यानी कि अपना, और कभी हम लोग हर बार ये ऐसा होता है कि जो एक बार नहीं हुआ तो दूसरा बार कोशिश करते, दूसरा बार नहीं हुआ तो हम जल्दी से ये कह देते हैं कि दिस इज मिट्स फॉर मी एंड लात हैथ मार शैतान। तो दोस्तों, अभी तो ये मेंढक के माध्यम से है ये संदेश जो बबली जी हम सब के लिए रख रहे हैं। क्यों ना बबली जी एक और गीत के ओर, और जिसमें दोस्ती जरूर होना चाहिए।
1: हाँ जी,
0: क्योंकि आज सभी गीतों में दोस्ती का कुछ ना कुछ संदेश है।
1: जरूर,
0: और संदेश क्या है बाद में बताया जाएगा क्या संदेश है। हम लगा देते हैं, वो रख देते, वही गीत एक नया फिल्म से निकाला गया।
1: हाँ जी।

0: ये सुंदर गीत जो फिल्म आर आर आर से निकाला गया दोस्तों, और एक नया फिल्म है, बड़ा सुंदर रूप से ये फिल्म में और ये गीत को रखा गया है। बबली जी, अब जैसे कि संदेश में आपने संदेश रख दिया कि प्रयास, बार बार प्रयास करने करने से और जाकर के छोटा मेंढक वो, और जैसे कि आपने कह रहे थे कि चिकनी सा और
1: चिकना सा खंभा था
0: उस पर चढ़ गया।
1: हाँ, चढ़ गया,
0: तो यानी कि विजय प्राप्त कर लिया।
1: हाँ जी, कोशिश उसने की और कोशिश में कामयाब हुआ,
0: कोशिश से कामयाब हुआ। तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि हमें अपना कोशिश से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश करते रहे उससे हम अपना कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से बबली जी संदेश तो कुछ अभी और बाकी है ना?
1: हाँ जी, थोड़ा सा और बाकी है,
0: तो सुना दीजिए हमारे सभी सुनने वाले को और हमें भी, यानी कि ये संदेश सुनने में ये बड़ा अजीब सा कि मेंढक के माध्यम से ये और संदेश को बनाया गया।
1: हाँ जी,
0: मेंढक जो कहते हैं मेघा केकर नहीं दला,
1: हाँ जी
0: केकर को,
1: हाँ जी, और इस प्रतियोगिता का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया, कैसे तुमने सबको पीछे छोड़कर जीत प्राप्त करी। तभी पीछे से किसी ने बोला, अरे उससे क्या पूछते हो, यह तो बहरा है, आपको समझ आया वो कैसे जीता। जी हाँ, उसके आसपास जितने भी टांग खींचने वाले थे, टांग खींचने का मतलब कि जो कहते थे कि ये नहीं जीत पाएंगे, इनकी कोशिशें बेकार है,
0: यानी कि सभी जो यश देमोती फेर करते थे।
1: हाँ जी,
0: और ये मेंढक जो बिल्कुल नहीं सुना।
1: ना, क्यों नहीं सुना, क्योंकि वो बहरा था, कानों से उसे सुनाई नहीं देता था, इसीलिए उनकी आवाज उसको नहीं सुनाई दी, जिससे वो नहीं सोच पाया और वह अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस कर पाया और जीत गया।
0: तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि हम किस में लगे हुए हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो लोग हमें सुझाव देने लगते हैं, कोई सुझाव देने लगते हैं, कोई इसी प्रकार से और डेमोटिव फेयर करने लगते कि ये ना हो पाएगा तुमसे। तो वो मेंढक के माध्यम से जो उसका ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने मेहनत करके और जा करके अपना लक्ष्य जो विजय था और जा करके प्राप्त किए। पर बबली जी संदेशों में संदेश और क्या है
1: ना, संदेश तो हो गया, अब इससे हमें शिक्षा भी मिलती है। वही जो आपने अभी बोला वो भी सही बात कही आपने, कि हमारे अंदर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत होती है और हम शुरुआत भी करते हैं, लेकिन अपने आसपास के ज्ञान चंदों के कारण और अपने माहौल के कारण हम अपना काम या तो शुरू नहीं करते या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं।
0: ऐसा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, कि ऐसा हर बार होता है कि लोग ज़्यादा तादाद में ऐसा हमारे विजय, क्योंकि एक एक एक बार एक सत्संग में हमने ये इस बात को भी सुने थे।
1: हाँ जी,
0: कि जहाँ सच्चाई होता है वहाँ धर्म होता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ पर और जा करके आगे में जा करके विजय को प्राप्त करते हैं।
1: हाँ जी,
0: तो इस प्रकार से जहाँ मेहनत है और ये संदेश के माध्यम से और जो औरों को ना सुने अब मेहनत करते रहे, तो हमारे विजय का लक्ष्य होता है। तो वो जा करके
1: कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लोग तो हमेशा उल्टी बात ही ज्यादा करते हैं। कोई 100 में से कोई 20% होंगे जो कहेंगे हाँ कि ये बात सही है, ऐसे तो करो।
0: मेरे ख्याल से आपने कुछ ज्यादा ही कह दिए पर दोस्तों इन बातों पे ध्यान देना चाहिए और ये संदेशों में संदेश जो छोटा छोटा हमारे संत मुनियों के लिखे हुए, तो हम उस पे थोड़ा से ध्यान देते हैं। बबली जी, आज जो सभी गीतों में यही आता है बार बार कि फ्रेंडशिप,
1: हाँ जी,
0: दोस्ती दोस्ताना, तो हर बार यही आता है, क्यों ना एक और उसी प्रकार के गीत सुनते हैं।
1: हाँ जी, जरूर।

0: दोस्तों, ये सुंदर गीत हम सब चलाए और दोस्ती के नाम पे। और अभी कार्यक्रम जो आगे बढ़ेगा, जिसका और आज विषय है कि जिस दिन से आप जिस यानी कि आप जैसे कि रविवार, बुधवार और शनिवार, कोई भी दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उस दिन से और जुड़े हुए क्या क्या है आपका, और उसके अंतर्गत में अभी संदेश रखा जाएगा। पर उस ओर बढ़ने से पहले कॉमर्शियल्स और न्यूज़ उसके ओर बढ़ना है, तो पहले न्यूज़ और कमर्शियल्स, और फिर उसके बाद में हम सब फिर आपके साथ ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो जाएंगे। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और जरूर लाइव फन डन हाग न्यूटन स्ट्रैट 25 से, और ये कार्यक्रम को यहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। दोस्तों, आज का विषय के ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं। और बबली जी, आज का विषय में खास करके जो हमारे हफ्ता में कितने दिन, 8 दिन होता है कि 7 दिन होते कि 6 दिन?
1: 7 दिन।
0: और ये 7 दिनों के अंदर अंदर में हम सभी का जन्म हुआ,
1: 7 दिन है, तभी उसको एक सप्ताह कहते हैं।
0: एक सप्ताह कहते हैं,
1: हाँ जी। और महीने में 4 सप्ताह होते हैं।
0: महीने में 4 सप्ताह, तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि ये जो जिस दिवस का आपका जन्म हुआ ना,
1: हाँ जी,
0: तो आप विषय रखने वाले हैं कि जो दिन जिसका जन्म हुआ उससे क्या जुड़ा हुआ है, क्या उसका स्वभाव जुड़ा हुआ है उसमें, और हमारे संतों द्वारा जो लिखा जाता है, पंडित जी ने और खास करके ये तेईमा को रखे थे, तो हम सभी सुनने वालों के लिए अभी रखने वाले हैं ये कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है,
1: हाँ जी, कि उस दिन से उस दिन आपका स्वभाव कैसा है और आपको क्या चीज मिलेगी और उसका उपाय भी है, आपको क्या करना चाहिए,
0: तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए खोज करके रखा गया है,
1: हाँ,
0: और अगर इससे आप सहमत नहीं हो तो ये हमारा बात नहीं है, पर ये बात हो जाता है हमारे संत मुनियों ने जितना चीज हम सब के लिए खोज खोज कर रखे हुए, तो उसमें जब विश्वास रखेंगे तो संदेश जरूर निकलेगा। तो बबली जी, क्यों ना अभी पे आज जो हमारे सभी गीतों मिले हुए दोस्ती से,
1: हाँ जी,
0: तो क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: हाँ जी, जरूर।

0: फिल्म सौदागर से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और जिसमें बबली जी ये फिल्म जो कुछ साल पहले बनाया गया है जिसमें और एक नया एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया था ना।
1: हाँ जी, ये फिल्म सौदागर जो डायरेक्टर सुभाष घई जी ने बनाई थी।
0: सुभाष घई जी ने?
1: हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई, हीरो, विधाता, कर्ज, सौदागर, कर्मा, बहुत अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने।
0: यानी कि ढेर सारी उनका जरूर उनका फिल्म बड़ा हिट फिल्म होते।
1: हाँ जी, सुभाष घई जी की सब फिल्में ज्यादातर हिट हुई हैं।
0: और खास करके ये फिल्म में जब बनाई तो राजकुमार,
1: हाँ जी, राजकुमार और दिलीप कुमार जी,
0: तो दोनों काफी एज के हो गए थे।
1: हाँ जी, इन्होंने दादा की भूमिका निभाई इस फिल्म में।
0: दादा की भूमिका निभाई इस फिल्म में, और खास करके ये फिल्म बनाने के लिए भी बहुत, मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि जो डायरेक्टर था बहुत परेशानी उसके ये लोग दिए।
1: हाँ जी, क्योंकि ये दोनों अपने जमाने के अरे इतने फेमस मशहूर अदाकार, और अगर एक डेट देता तो दूसरा ना देता, तो बड़ी मुश्किल से सुभाष घई जी ने ये फिल्म कंप्लीट की।
0: उसके बाद में फिल्म बनाना ही बंद कर दिया?
1: हाँ, बहुत सालों से उनकी कोई फिल्म आई भी नहीं है।
0: तो ये बात हो जाता, पर ये एक फिल्म बना था और खूब चला था।
1: हाँ जी,
0: जो मनीषा जो आप कह रहे हैं,
1: हाँ जी, नए लड़का लड़की इंट्रोड्यूस किए थे सुभाष घई जी ने, मनीषा कोहिराला और विवेक मुस्कान।
0: तो मनीषा जो कि एक परिवार से था जो पॉलिटिक्स में,
1: हाँ जी, इनके दादाजी शायद पॉलिटिक में थे
0: और ये आकर के फिल्मों में काम किए।
1: हाँ जी, नेपाल की हैं, नेपाल, हाँ जी, नेपाली।
0: तो दोस्तों कुछ ना कुछ छोटा मोटा संदेश जो हमारे पास होते हैं तो हम कोशिश करते हैं आपके लिए जरूर रखने के लिए, पर बबली जी ये है आज का संदेश, जो जिस दिन जैसे कि जिस दिवस का जन्म हुआ है आज का, जो हमारे इतने ढेर सारे और गीतों जो हम सब लेकर आए हैं, जो हर बार दोस्ती फ्रेंडशिप पे जाता है, तो क्यों ना हम पहले गीत के ओर बढ़ते फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।

0: दोस्तों ये सुंदर सा गीत जो हम सब चलाए और गीत चलाते चलाते बस कार्यक्रम में हमारे मास्टर जी उपस्थित हो गए हैं। तो मास्टर जी ये गीत आज जो चल रहा है सिर्फ दोस्ती के लिए, क्यों ऐसा है कि ये सिर्फ दोस्ती का गीत आज रखे गए हैं? पर अभी आज का जो संदेश है, आज का जो संदेश है कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ है, जिसमें पंडित गंगाराम जी ने ये संदेश को हम सब के लिए भी खोज करके रखे, तो क्यों ना हम सभी सुनने वालों को ये संदेश को सुनाते हैं कि उस दिन से जुड़ा हुआ क्या क्या बात हो जाते हैं, क्या हम उससे किस प्रकार से हमारा भला उसमें क्या हो सकता है। तो राजेंद्र जी पहले तो आप अपना मस्तदार इंट्रो कर कीजिए।
1: फॉर्म हिंदुस्तान रेडियो के श्रोताओं को सबको नमस्कार। और आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कुछ कारणवश कुछ काम रहा इसकी वजह से, और सब लोग हमको हर वीरवार को सुनते थे और आगे भी सुनते रहेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। और जो कार्यक्रम है आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि किस बार को, जैसे 7 बार होते सोमवार मंगल बुध वीर शुक्र शनि रवि, तो कौन से बार को जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसा रहता है, उसके भाग्य में क्या होता है, और 7 बार होते तो 7 बार में किसी न किसी बार को तो एक व्यक्ति पैदा होता है। उसी उपलक्ष में ये कार्यक्रम जो है सब लोगों को, जिसका जो बार का जन्म रहा उसको वो बार सुने और अपने ऊपर देखे कि वो इस प्रकार का व्यक्ति है कि नहीं। तो शुरू करते हैं।
0: तो इसमें उस यानी कि उस पे ध्यान देना है कि जो आप अपने आप में उसमें कुछ पहचान सकते हैं या नहीं, लोग इस बात को सुन के और जरूर उस पे ध्यान देना।
1: हाँ, व्यक्ति के गुण, और हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उसी के अनुसार वो व्यक्ति को सब लोग उन्हीं गुणों से जाना जाता है।
0: राजेंद्र जी यहाँ ये बात हो जाता है कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से। तो ये बात हो जाता है कि जहाँ ज्ञान है और ज्ञान को प्रयोग करे तो कुछ न कुछ संदेश उसमें से निकलेगा ना, ये जो आप अभी हम सब के लिए रखने वाले हैं।
1: जी, तो ये सब ज्ञान की बात है, इसमें से संदेश तो निकलना ही है। बात करते हैं सबसे पहले रविवार की। रविवार से बारों का प्रारंभ होता है। लोग सोमवार से प्रारंभ इसलिए करते हैं क्योंकि रविवार को छुट्टी होता है और सोमवार को ड्यूटी होता है, तो अधिकतर लोग ड्यूटी करते हैं या कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस को भी रविवार को बंद रखते हैं। मैंने देखा है कि वेस्टर्न कंट्री में तो 2 दिन बंद रहता है, सैटरडे संडे, और जो फ्राइडे है फ्राइडाक उसमें भी आधा दिन काम करते हैं, तो कुछ 5 दिन पूरा काम किया, 2 दिन छुट्टी हुआ।
0: राजेंद्र जी आज से कुछ 25 साल पहले होता था ना?
1: जी।
0: तो हॉलैंड में जैसे हम लोग यहाँ ये प्रोग्राम बनता है हॉलैंड देश से ना,
1: जी,
0: तो यहाँ भी ऐसा होता था कि रविवार को दुकानें आदि बंद रखा जाता था, पर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हफ्ता में 7 दिन अब खुलने लगा।
1: हाँ,
0: बहुत कम है जहाँ पर कि है कि वो बंद रखते हैं,
1: क्योंकि जो ऑफिस होते हैं वो तो बंद रहते हैं,
0: ऑफिस आदि वो तो जरूर बंद,
1: वो तो बंद रहते हैं, लेकिन जो दुकान है लोगों को उसी दिन सैटरडे संडे को टाइम लगता है दुकान में जाने का, इसलिए वो लोग उस दिन दुकान खोलते हैं, ये कारण है। और कुछ लोग जो पहले बंद रखते थे उन्होंने भी धीरे धीरे देखा कि लोगों को टाइम शॉप में आने का तो इस दिन रहता है, इस दिन, इसलिए उस दिन खोलते हैं। और किसी और दिन को मैंने देखा है कि कोई सोमवार को बंद करता है, कोई मंगल को करता है, एक दिन तो बंद जरूर करते हैं, और जो 7 दिन काम करते हैं तो उनके लिए अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन 1-2 दिन हफ्ते में रेस्ट होना जरूरी,
0: आराम करना चाहिए,
1: आराम करना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन हर वही आदमी थोड़ी रोज रहता, कोई दूसरा आदमी उस दिन रहता होगा, इसलिए आराम वो करता है, दुकान आराम नहीं करती, व्यक्ति आराम करता है,
0: व्यक्ति आराम करता
1: जी। तो बात करते हैं रविवार के जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। रविवार को जन्म लेने वाले लोगों को भाग्य का साथ मिलता है, यानी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है कर्म, एक होता है भाग्य। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि काम करते नहीं हो फिर भी उनको सब कुछ मिल जाता है, क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में, तो भाग्य होना भी बहुत जरूरी है।
0: भाग्य,
1: भाग्य, तो जैसे हमारे मामा जी पंडित जी, वो तो भाग्य के बारे में बहुत लंबा लेक्चर बता सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में यहाँ पे समझा थोड़ा सा बताएंगे लोगों को कि भाग्य, जो भाग्य की रेखाएं हैं वो भी कर्म से ही बनती है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भाग्य उसी अनुसार, भाग्य पहले लिख जाता है लेकिन व्यक्ति का कर्मों के अनुसार भी भाग्य बदलता है। इसलिए भाग्य के, खाली भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना है, कर्म भी करना है। तो इनकी आयु भी अधिक रहती है और कम बोलना पसंद करते हैं ये लोग। कला और शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, साथ ही इनकी रुचि धर्म में भी रहती है। घर परिवार के सदस्यों को खुश रखने का प्रयास करते हैं, यानी इस जो रविवार को पैदा होते हैं लोग, वो इस प्रकार के लोग होते हैं कि सब चीज शिक्षा के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में, घर परिवार को खुश रखने के क्षेत्र में, और उपाय क्या है, रविवार को क्या करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, सुबह सुबह जब स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और थोड़ा सा जल में अगर हरिद्रा या चंदन या हल्दी डालते हैं वैसे, और नहीं तो केसर भी डाल सकते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के लिए, और तिलक केसर का लगे तो बहुत अच्छा व्यक्ति को, सुबह सुबह
0: केसर का तिलक,
1: केसर का तिलक और सूर्य को हल्दी डाल के जल चढ़ाना चाहिए। सोमवार को जन्म लेने वाले लोगों के बारे में बताते हैं कि सोमवार को जन्म लेने वाले लोग क्या करते हैं, कैसे होते हैं। जो लोग सोमवार को जन्म लेते हैं वो व्यक्ति हंसमुख और मीठा बोलने वाले होते हैं, सुख हो या दुख हमेशा सामान्य रहते हैं।
0: तो मामा जी के मेरे ख्याल से सोमवार का जन्म हुआ।
1: हाँ, मामा जी सोमवार को पैदा हुए थे। ज्ञानी कलाकार और बहादुर होते हैं, यानी बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं ये लोग। कफ संबंधी रोगों से परेशान रहते हैं, कफ, यू नो, बात पित्त कफ होता है ना
0: जी,
1: तो जो कफ
0: निकलते हैं,
1: हाँ, उस रोग से परेशान रहते हैं। बीमारियों के कारण कमजोरी बनी रहती है, इन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है। हंसमुख है, मीठे बोलने वाले हैं, सुख दुख को समान रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कफ की बीमारी हर समय रहती है, और जीवन में सुख सुविधाएं तो होती है लेकिन बीमार भी रहते हैं, तो बीमार न रहे तो सुख सुविधा का आनंद नहीं उठाया जा सकता पूर्ण रूप से।
0: तो राजेंद्र जी, ऐसा बात है
1: जी
0: कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है,
1: हाँ।
0: लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर वही आज का जो विषय है दोस्ती, जिसे जितना गीत है सब दोस्ती के ऊपर चल रहा है। तो अभी यहाँ व्हाट्सएप ब्रेक आ गया कि मैं एक बैन वंस दा खबर, तो ये हम लोगों ने गलत कह दी
1: क्या
0: कि
2: मामा जी
0: ने कह दिया कि एक बैन वंस दा खबर, ये तो हमें भी पता था ना, पर फिर भी रेडियो बनाते हैं तो कुछ रख दिया गया था। क्यों ना दोस्ती के माध्यम से एक सुंदर सा गीत और चला देते हैं।
1: दोस्ती के माध्यम से जो गीत है, ये यार सुन यार तेरी, ये यार सुन यारी तेरी, तो ये बोल है गीत के।
0: और ये फिल्म, एक फिल्म जिसमें शशि कपूर जी और अमिताभ बच्चन ने काम किया, राजेंद्र जी, और
1: जी।
0: देखते हैं, सुनते हैं संदेश क्या है इस गीत का।
1: जी जरूर जरूर,
0: क्योंकि सभी सुनने वालों ये जरूर बता दूं कि अभी तो हम सब सिर्फ रविवार और सोमवार के ओर बढ़े ना,
1: अभी तो पांच
0: बाकी है,
1: तो सुनते हैं गीत, इसके बाद शुरू करेंगे।
0: और राजेंद्र जी, यहाँ भी लिख दिया गया है कि एक बर्नित अप, एक बोले कि हम बोट में उनका जन्म हुआ मामा जी का।
1: हाँ, एक बार
0: ये
1: बता
0: तो बताना चाहिए था।
1: कोई नहीं, अगर बोट में जन्म हुआ लेकिन कौन से बार को हुआ, ये चीज हमें चाहे पता करे पहले।
0: हाँ, तो वो भी हो गया, चला देते ये गीत दोस्ती का।
1: दोस्ती का

0: चल तू चला।
1: मैं?
0: अरे चला। अरे मैं हूं ना तेरे साथ।
1: अमित
0: क्लच दबा।

0: जो गाना था अरे यार सुन यारी तेरी, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने बड़े ही सुंदर इसमें फिल्म बनाई और लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था मंगलवार की बात, और मंगलवार को जन्म लेने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है वे उग्र स्वभाव के होते हैं, यानी
1: उग्र बोले तो राजेंद्र जी, उग्र बोले तो
0: उग्र स्वभाव यानी गुस्सैल होते हैं,
1: ओ खड़ूस थोड़ा,
0: हाँ थोड़ा सा। इसी कारण इनका अपने आसपास रहने वाले कई लोगों से बात विवाद होता रहता है, यानी लड़ाई झगड़ा भी
1: हो जाता है
0: वालों से, हाँ हो जाता है।
1: तो ये
0: इन्हें खून और त्वचा से संबंधित रोग भी हो सकते हैं।
1: ऐसा?
0: हाँ, त्वचा मतलब
1: हाइट,
0: चमड़ी और खून मतलब ब्लड, ये रोग भी हो सकते हैं इनको। और इनके जीवन में परेशानी आती जाती रहती है, इनके जो जीवन है परेशानी आती और जाती है, लेकिन उनको उपाय क्या करना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर और बना हुआ पान चढ़ाएं हनुमान जी को।
1: जी
0: कुछ कह रहे थे आप?
1: नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी तो कार्यक्रम में हम सब तो मंगलवार तक पहुंचे हैं, और मंगलवार तक पहुंचे हैं तो जैसे कि अब कितने लोग हैं ना, कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नवरात्रि से शुरू होता है ना
0: जी,

0: तो अब जैसे कि हम लोग का हिंदू कैलेंडर इस समय हो गया है 2079 नेखनत शैफंता, हमारे जो जैसे कि हमारे मामा जी जैसे भाई हुए ना, तो उनका जन्म मिलेनियम जो त्वेई दशंत हुआ था, तो यहाँ भौलान में मिलेनियम मनाया गया था, तो उसका जन्म जो आज से जो जैसे कि नेखंती जिसका जन्म हुआ 1943, तो इन 1943 में जो हमारे ईश्वरी गणित होता है ना, जो यानी कि जैसे हम कैलेंडर जो देखते हैं आजकल जो त्वेई दशंत तक चल रहा है, तो वो जैसे कि 1943 नेखंती द्रियम फेर तक में जिनका जन्म हुआ है, तो वो हमारे विक्रम संवत्सर जो विक्रम
1: आदित्य था,
0: तो 2000 मिलेनियम उस समय से था, तो आज हो गया है 2079 तो इसी प्रकार से दोस्तों ये बात हो जाता है कि हमारे जो गणित है, हमारे जो हिंदू गणित है विक्रम संवत्सर, तो कितने साल आगे है क्रिश्चियन कैलेंडर से।
1: हाँ, उसको हिंदी में बोलते हैं 2079।
0: ऐसा
1: 2079 मतलब 20 बार 100 और 79 मतलब 8 और 9 और 89।
0: तो दोस्तों हम आगे कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं, और कार्यक्रम में अभी हम सब छलांग लगाने वाले हैं राजेंद्र जी बुधवार की ओर।
1: बुधवार की ओर छलांग लगाने वाले हैं, और बुधवार को हमारे मामा जी का भी जन्म हुआ है।
0: जी मामा जी का
1: जन्म। तो मामा जी कान लगा के थोड़ा सुने कि बुधवार के जन्म किस प्रकार से होने वाले, जन्म जो बुधवार को जिनका जन्म होता है वो किस प्रकार के लोग होते हैं।
0: नहीं राजेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ जैसे कि लग रहा है कि लोग जो बुधवार का जन्म हुआ है तो वो रेडियो बिल्कुल कान के पास लगा लिया, वो उसका जरूरत नहीं, रेडियो में एक बटन होता है ना, तो उसे राइट के ओर जब आप घुमाएंगे तो जोर अपने हो जाएगा।
1: हाँ, तो उसको जोर से नहीं बल्कि ध्यान से सुनना चाहिए।
0: ध्यान से सुनना चाहिए जरूर।
1: तो जैसे कि हमारे मामा जी का जन्म बुधवार को ही हुआ था और बोट में जन्म हुआ था, तो इसलिए मामा जी सबसे विशाल इस दुनिया में कुछ अलग ही प्रकार के आदमी हैं। उन्होंने क्या नहीं इस 32 देशों में मूर्ति दान करी, मूर्ति की स्थापना करी, और बुधवार के जन्म लेने वाले लोगों का अलग ही कुछ महत्व होता है। तो बुधवार के दिन जन्म लेने वाले लोग धर्म कर्म में ध्यान लगाने वाले होते हैं, ये बुद्धिमान और मीठा बोलने वाले होते हैं, माता पिता से विशेष प्रेम रखते हैं, इन्हें शरीर की अपेक्षा दिमाग से संबंधित कामों में अधिक लाभ मिलता है। यानी दिमाग से अगर काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, शरीर से काम करेंगे तो कम मिलेगा। दो प्रकार से काम किया जाता है, कुछ लोग तो देखो, कुछ लोग तो मजदूरी दिन भर करते हैं तो उनको मिलता है 100 यूरो, और कुछ दिमाग से काम करते हैं तो उनको मिलता है 300 यूरो।
0: तो दिमाग और जो दो दो हाथ दो दो पांव से जो मजदूर होता है उसमें अंतर हो जाता है,
1: उसमें अंतर हो जाता है। इसलिए दिमाग से काम करना बुधवार के दिन जन्म ले वाले ज्यादा कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी,
1: इन्हें मूर्ख बनाना भी आसान काम नहीं, कोई इनको मूर्ख
0: नहीं बना सकता।
1: नहीं नहीं नहीं, लेकिन अगर इनका उपाय क्या है, क्या और अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, गणेश जी को 11 दुर्बा की गांठ हर बुधवार को इनको चढ़ा देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए
0: गणेश जी का।
1: गणेश जी को
0: तो बुधवार को और जन्म लेने वाले को गणेश जी का और बहुत विशेष दिवस होते हैं। राजेंद्र जी, बात हो जाता है कि सूरीनाम देश से श्रीमान फेलिक्स यंकी प्रसाद सिंह जी ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और बाबा महादेव जी जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो उन्हें भी नमस्कार करते हूँ कि जो आप ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं बृहस्पतिवार की ओर। बृहस्पतिवार जो जिसे हम दोंदरदाख से जानते हैं राजेंद्र जी,
1: जी
0: तो दोंदरदाख के जन्म लेने वाले को और क्या क्या और किस प्रकार से संदेश है, ये तो बस हमारे मास्टर जी राजेंद्र जी ही आपको सुना सकेंगे। दोस्तों
1: जो दोंदरदाख को जन्म लिए है उन लोगों के बारे में, जिन लोगों का जन्म दोंदरदाख को हुआ है यानी गुरुवार को हुआ है, गुरुवार मतलब बिफे, वो बुद्धिमान और साहसी होते हैं। ये लोग किसी भी मुश्किल समय का सामना बड़ी ही समझदारी के साथ करते हैं। इन लोगों के मित्र अच्छी संगत वाले होते हैं, मित्रों की ओर से सदैव प्रसन्न रहते हैं। इन लोगों को भाग्य का साथ भी मिलता है। और इनका उपाय क्या है? गुरुवार को चने की दाल बेसन के लड्डू का भोग शिवजी को लगाना चाहिए। ये इन लोगों के लिए उपाय भी है।
0: इसका सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि जो अगर संदेश में ये है कि चने का दाल ना,
1: हाँ, चने,
0: चने बोलते हैं कौन सी, गुगरी ना, यहाँ हम लोग बोलते हैं गुगरी
2: नहीं, चना दूसरा है और चने की दाल दूसरी है, चने से ही चने की दाल बनती है।
1: अच्छा, जो गुगरी होती है उसका छिलका उतार दो और उसका दो टुकड़ा कर दो तो चने की दाल हो जाती है पीली।
0: ऐसा बात है,
1: ऐसा बात
0: है। ये तो मुझे पता ही नहीं था।
1: हाँ,
0: तो चलो आगे एक छोटा सा संदेश,
1: छोटा सा एक नगमा फिर संदेश
0: चला देते हैं, पर दोस्ती के बारे में होना चाहिए राजेंद्र।
1: जरूर, वही होगा।

0: किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार। जब किसी की मुस्कुराहट होती है तो निसार तो हो ही जाता है, तो इस प्रकार से मुस्कुराहट होनी चाहिए कि निसार हो जाए। हम बात कर रहे थे अपने कार्यक्रम की कि किस बार को जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है, तो बात पहुंच गई है शुक्रवार की। शुक्रवार को जन्म लेने वाले लोग, यानी जिस जो व्यक्ति शुक्रवार को जन्म लेता है, वो हंसमुख और बुद्धिमान होते हैं, अपनी बातचीत से दूसरे को प्रभावित करते हैं, सहनशीलता के कारण कठिन समय का सामना भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते हैं। कला के क्षेत्र में ये लोग खास मुकाम हासिल करते हैं, और मेरा भी जन्म शुक्रवार को ही हुआ है। उपाय है कि हर शुक्रवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना चाहिए। तो शुक्रवार के व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, आपने देखा ही है, व्यक्ति भी देखा है और समझा भी है कि किस प्रकार के होते हैं। बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को जन्म लेने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। जिन लोगों का जन्म शनिवार को हुआ है, वो एक कृषि, व्यापार या तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी यानी जो नए नए,
1: हाँ, टेक्निकल
0: हाँ
1: जी,
0: उसमें अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। इन्हें छोटी आयु में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि सबको हो, किसी किसी को करना पड़ सकता है सामना छोटी आयु में परेशानियों का। इन लोगों को मित्रता में सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी जिससे दोस्ती करते हैं वो थोड़ा सावधान रहें। माता पिता भाई बहनों की ओर से सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, इनको माँ बाप का और भाई बहनों का सुख भी नहीं प्राप्त हो पाता है। उपाय है इनके लिए, हर शनिवार को शनिदेव के नाम पर तेल का दान करें तो इन प्रकार की मुसीबतों से वो बच सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, ये बात हमारी 7 दिनों की हुई, किस बार को कैसे लोग रहे, सबने सुना होगा। अब जो व्यक्ति जिस बार को जन्म लिया, वो व्यक्ति मनन करे कि वो कैसा है, इसके अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है और है तो तार करें यहाँ पे रेडियो में और बताएं कि कैसे हैं। अब हमारी जो सुई घड़ी की है और हमारा जो गीत है सूरीनाम हमारा प्यारा देश, तो सूरीनाम हमारा प्यारा देश जो है गाना, वो बहुत ही समय बताता है कि हमारा समय जो है केवल 10 मिनट रह गया है, गाना बताता है। तो घड़ी नहीं चाहे देखे, सीधा गाना सुने और समय पता लगा सके।
1: जरूर राजेंद्र जी, क्योंकि कार्यक्रम जो सूरीनाम देश से श्रीमान फेलिक्स यंकी प्रसाद सिंह जी भी सुन रहे हैं, तो और हमारे दूसरे स्टूडियो में मैं देख रहा हूँ दूसरा कोलेखा भी तैयार हो चुके हैं और हाथ में कॉफी लेकर के और देख रहे हैं हमारे और इशारा कर रहे हैं। और जो ये बात हो जाता है कि हम वो गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर अपना आखिरी गीत की ओर छलांग लगा देंगे। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम में जो आज हम सब रखे गए और ये सुंदर सुंदर संदेश जिसमें हमारे भाई राजेंद्र जी और जा करके, क्योंकि राजेंद्र जी अभी यहाँ भी संदेश आया है कि शनिवार के दिन जो बाबा महादेव और का जन्म भी हुआ है, तो उन्होंने अपने ओर से भी व्हाट्सएप पर डायरेक्ट लगा दिए हैं कि हमारा जन्म भी हुआ है और जा करके शनिवार के दिन, तो उनके ओर से भी हम सब को अच्छा लगता है कि आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम गीत की ओर बढ़ेंगे, किस सूरीनाम हमारा प्यारा देश।
0: जरूर

0: सूरीनाम हमारा प्यारा देश तुझ पे मरने से इनकार नहीं। सूरीनाम जो बहुत सारे लोग यहाँ पे सूरीनाम के हैं और सबका प्यारा देश सूरीनाम है, और मैं भी चाह रहा हूँ कि सूरीनाम में एक बार जरूर जाऊँ। संजय जी कहते हैं कि सूरीनाम हमारा प्यारा देश, तो कितना प्यारा देश है ये देखना चाहिए ना।
1: राजेंद्र जी जरूर लिफोर्नो आपको जाना है, क्वाटा जाना है, सरमक्का जाना है, निकेरी जाना है, ये सब जगह तो जरूर जाना ही जाना है आपको।
0: हाँ।
1: और कब ये कब होगा ये नहीं पता है, पर
0: होगा जरूर,
1: जरूर होगा, जरूर होगा। और अगले गीत के ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं राजेंद्र जी, तो हाँ। गीत का बोल जो आ जाता है आप ही उसका इंट्रोडिशेयर कीजिए।
0: इंट्रोडिशेयर ये है कि लागी छूटे ना अब तो सनम, मोहम्मद रफी जी ने और लता मंगेशकर जी ने काली टोपी लाल रुमाल 1959 यानी 1959 में ये गाना और ये फिल्म भी बनी थी, तो चला देते हैं।

0: लागी छूटे ना अब तो सनम, लेकिन बबली जी अब आप इजाजत लेने वाले हैं।
1: हाँ जी, वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: बबली जी ने कहा कि वक्त से बढ़कर कोई गुरु नहीं हुआ और विद्या यानी शिक्षा देने से वाला से बढ़कर कोई गुरु नहीं हुआ, तो इस वक्त और गुरु दोनों ही बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको हर समय चाहे संजो के रखना चाहिए।

फिर भी दिल के करीब हूँ। तो जैसे मैं अभी यहाँ हूँ लेकिन रेडियो भारत में भी सुनाई दे रहा है, और अगर मैं भारत में हूँ तो रेडियो यहाँ से वहाँ भी सुनाई देगा। तो दूर है लेकिन दिल के करीब है। दूर आजकल के ज़माने में, इस समय में इंटरनेट का जब से ज़माना आया है, फ़ोन का ज़माना आया, तो कोई दूर कोई कहीं नहीं है। दूर है लेकिन दिल के करीब है। कहीं से बैठ के भी व्यक्ति कहीं बातचीत कर सकता है, वीडियो से देख सकता है। तो इसीलिए सब दूर है लेकिन दिल के करीब ही रहेंगे। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम जो कार्यक्रम चलाते हैं आगे भी चलाते रहेंगे और सब लोग सुनते रहेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए और बबली आसरा जी, हमारे पैनल के पीछे भाई ये राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। ये जरूर कहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो बस यही है संदेश। आशा ये रखता हूं कि कुछ ना कुछ संदेश आपको प्राप्त हुआ होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।